0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वर रंजनी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक

0: कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द CEOs एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरेक्शन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन नेशनल स्पेस डे यस्टरडे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो हाइलाइटेड इंडियाज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन लॉन्चिंग स्पेस वेंचर्स। During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The Ministry of Tribal Affairs will organize a 3-day national conclave on tribal languages and museums from today till Wednesday in Mysuru, Karnataka. The conclave will bring together a national dialogue on documentation, preservation and revitalization of tribal languages. The event will strengthen tribal museums and tribal freedom fighter museums across the country. The national conclave advances the Prime Minister's roadmap for a Viksit Bharat 2047, under which reviving India's traditional knowledge systems and ensuring no community is left behind remain key pillars of inclusive national development. The conclave will be inaugurated by Union Minister of State for Tribal Affairs, Durga Das Uike. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. In cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 300 for 5 against hosts Sri Lanka in the second and final test in Colombo today. Earlier, Dhruv Jarrell and Saransh Jain remained unbeaten when stumps were drawn yesterday evening. Devdutt Padikkal, continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls, while skipper Shubman Gill also scored a half century. For Sri Lanka, Asitha Fernando took 3 wickets. Union Home Minister Amit Shah met the Divyang Men's Cricket Team of India in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Shah said that the team has returned from its tour of England for the India-England Men's Mixed Disability T20 International Series 2026. Mr. Shah said the efforts and determination of the team to win honours for the nation inspire the youth of India. He wished the team all the best for its future endeavours. And in chess, India's 19-year-old Grandmaster Pranesh M. emerged as the champion in the prestigious Kanizsa Open 2026 in Hungary, securing the Group A title with a superb performance. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे राकेश कुमार झा की लिखी हुई वार्ता महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
2: महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु मानव जीवन में सुख और दुख का विश्लेषण है। उनके विचारों ने जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे सुख क्या है और दुख का कारण क्या है को गहराई से समझने में हमारी सहायता की है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन उनका दृष्टिकोण यह था कि दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव रखा। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें सबसे पहला सत्य है दुख का अस्तित्व। उनका कहना था कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अलगाव और इच्छाओं की पूर्ति न होना, यही सब जीवन के दुख के आधार हैं। उन्होंने कहा कि दुख के बिना जीवन की वास्तविकता को समझ पाना कठिन है, क्योंकि दुख ही वह मार्ग है जो हमें आत्म जागृति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में दुखों के कारणों की बात की। उनका मानना था कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा अर्थात इच्छा है। यह तृष्णा केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं का भी हिस्सा है। हम जीवन में अस्थायित्व और नश्वरता के बीच संतुलन नहीं बना पाते, शायद इसीलिए हम दुख का अनुभव भी करते हैं। महात्मा बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य में दुख से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है और इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का समर्पण और मन की पूर्ण शांति। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि इस मुक्ति को पाने के लिए आंतरिक जागरूकता और ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को शुद्ध भी कर सकते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अर्थात दुख से मुक्ति का मार्ग का सिद्धांत दिया, जिनमें उन्होंने कई सारे आर्य सत्य बताए हैं। यह मार्ग हमारे लिए जीवन में संतुलन और सद्गुणों को लाने का साधन है। इनके 8 तत्व हैं। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि अर्थात सही दृष्टिकोण हो। किसी भी चीज के प्रति आपका जो नजरिया हो वो काफी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प सही इरादा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो इरादा हो, जो उसके सोच हो, वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी आपकी जो वाणी हो ओजस्वी हो, मधुर हो। सम्यक कर्म, आपका जो कर्म हो, जो कार्य हो, वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन हो, यानी कि व्यक्ति जो अपनी आजीविका ले वो भी काफी अच्छा हो। सम्यक प्रयास, यानी कि सही प्रयास, व्यक्तियों के द्वारा सही प्रयास भी किया जाना चाहिए, सही दिशा में अपने कार्य को अग्रसरित करना चाहिए। सम्यक स्मृति, इसके माध्यम से हम सही ध्यान करते हैं। और अंतिम है सम्यक समाधि, सही ध्यान की अवस्था। सही ध्यान की अवस्था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप सही ध्यान की अवस्था में रहेंगे तो भी आप दुखों के सागर से दूर रहेंगे। इन 8 मार्गों का पालन करके हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन में अस्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह मार्ग केवल आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका भी है, जो हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 27।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा, मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रिजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 300 for 5 against host Sri Lanka in the second and final test in Colombo today. Earlier, Dhruv Jurel and Saransh Jain remained unbeaten when stumps were drawn yesterday evening. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 7:10 हुए हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संगीतिका में विशाखा बसु के गीत। आपके साथ हारमोनियम पर हैं जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद, सरोद पर हैं दानिश असलम और तबले पर संगत दे रहे हैं पशुपति नाथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में विशाखा बसु के गाए गीत। आपके साथ सरोद पर थे दानिश असलम, सितार पर थे अकील अहमद, हारमोनियम पर थे जाकिर धौलपुरी और तबले पर संगत दे रहे थे पशुपतिनाथ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। DRM 810 किलोहर्ट्ज पर 7:30 हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

श्रोताओं, कुछ सुबह बस सुबह होती है और कुछ सुबह ऐसी होती हैं जो खिड़की से आती रोशनी के साथ मन के किसी कोने में भी उजाला कर जाती हैं। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही हो, जहां हवा में ताजगी हो, दिल में कोई प्यारी सी उम्मीद हो और होठों पर अनायास ही कोई गीत उतर आए। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ बड़ी खुशियों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी छुपी होती है। जैसे किसी अपने की आवाज, चाय की पहली चुस्की, किसी पुराने गीत की धुन और इस ख्याल के साथ कि आज का दिन शायद कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो आइए इस सुबह को सिर्फ गुजरने ना दें, इसे थोड़ा सुने, थोड़ा समझें, कुछ नया जाने, कुछ अच्छा सोचें और बीच बीच में खूबसूरत गीतों को अपना हम सफर बनाते चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत एक ऐसे ही गीत से जो सुबह की ताजगी को सीधे दिल तक ले जाए।

और गीत के बाद बात होगी एक छोटी सी चीज की जो देखने में बहुत मामूली है लेकिन अगर आदत बन जाए तो जिंदगी का अंदाज बदल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस गीत के लिए।

0: तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये गीत आपको बिल्कुल बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम सिर्फ मौसम की बात नहीं करेंगे, आज चाय के प्याले और सूरज के किरणों की बात तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आज बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जो हमारी पूरी जिंदगी का रंग बदल सकती हैं। मसलन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटी सी आदत से शुरू होते हैं? जैसे रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, किसी अपने को बिना किसी काम के फोन कर लेना, सुबह उठकर कुछ देर मोबाइल से दूर रहना, या फिर हर दिन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तैयार करना। ये बातें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जिंदगी भी तो इन्हीं मामूली दिनों से बनती है। इसलिए आज का पहला ख्याल, बड़ा बनने की जल्दी मत कीजिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और इसी खूबसूरत सोच के साथ, क्यों ना सुबह की शुरुआत एक ऐसे गीत से हो जिसमें दिल भी है और उम्मीद भी।
1: गमा गमा गमा गमा गमा गमा गमा गमा गमा गमा

दोस्तों की तो की इस खूबसूरत रवानी के साथ एक और छोटी सी बात। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। किसी के पास 24 घंटे और किसी के पास भी 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि उन्हें सिर्फ खर्च करता है और कोई उन्हें सही जगह लगाता है। इसलिए आज का एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। दिन शुरू होने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिसे करके रात को लगे कि आज का दिन बेकार नहीं गया। जवाब बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी का अधूरा काम पूरा करना भी हो सकता है, किसी से दिल की बात कह देना भी हो सकता है, कुछ नया सीखना भी, या फिर बस अपने लिए आधा घंटा निकाल लेना भी। क्योंकि प्रोडक्टिव दिन का मतलब हमेशा बहुत काम करना नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है सही काम करना। और अब इसी ख्याल को थोड़ा संगीत दे देते हैं।

दोस्तों कहते हैं किसी इंसान की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं होती बल्कि उसके व्यवहार में भी होती है, और शायद इसीलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अच्छे लगने लगते हैं। उनके पास कोई खास अंदाज नहीं होता, बस वे सामने वाले को महसूस कराते हैं कि तुम्हारी बात मायने रखती है। हम सबके पास किसी को खुश करने का एक

बहुत आसान तरीका है, उसे ध्यान से सुनना। आज जब भी कोई आपसे बात करे, एक पल के लिए अपना फोन किनारे रखिएगा और उसकी आंखों की तरफ देखिएगा और पूरी बात सुनिएगा। हो सकता है आपके पास उसकी समस्या का समाधान ना हो, लेकिन आपका ध्यान से सुन लेना उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। रिश्तों की दुनिया में कई बार समाधान से ज्यादा जरूरी होता है साथ। तो आज किसी एक इंसान को थोड़ा बेहतर महसूस करा के देखिए, शायद आपका एक अच्छा

दोस्तों, और अब जरा ज्ञान की दुनिया में भी एक छोटी सी सैर कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग के लिए नई चीजें सीखना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि दिमाग को सक्रिय बनाए रखने का भी एक अच्छा तरीका है। इसलिए उम्र चाहे कोई भी हो, नई भाषा सीखना, कोई वाद्य यंत्र सीखना, कोई नई किताब पढ़ना या कोई नई तकनीक समझना, ये सब हमारे दिमाग को चुनौती देते हैं। और शायद यही वजह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आज कुछ नया सीखिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, किसी ऐसे विषय पर पढ़िए जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, वो हमेशा परीक्षा में काम आए ये जरूरी नहीं। कभी कभी वह बातचीत में काम आता है, कभी किसी मुश्किल फैसले में, और कभी बस यूं ही दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने में। और वैसे भी जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब पता है, शायद उसी दिन सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब इस विचार के बाद एक और खूबसूरत नगमा, ये तो बनता ही है।

दोस्तों मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। बस एक छोटी सी बात कि हर पल अपने साथ एक नया ख्याल लेकर जीते रहिए, बस जरूरत है उसे पकड़ लेने की ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों के साथ, कुछ नई बातों के साथ और शायद आपके दिन को थोड़ा और खूबसूरत बनाने वाली एक नई वजह के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने हिस्से की जिंदगी पूरे दिल से जीते रहिए। नमस्कार दोस्तों, सुनते रहिए ये गीत।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत

0: और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की, भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग।

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निज़ाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वज़ीर दाखला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशीकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर परनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे के स्टार्टअप पर जोर दिया है कि वो अपनी कोशिशों में इस्तेक्लाल को बरकरार रखें और खलाई शोबे का एक मजबूत इको निज़ाम तश्कील दें, जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखता हो। जनाब मोदी ने यह बात हाल ही में 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs और बानी अफराद के साथ बातचीत के दौरान कही। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने खलाई तहकीक के निजी शोबे पर जोर दिया कि वो जिद्दत तराजी की एक आलमी शनाख्त कायम करे, ताकि दुनिया भर के लोगों को ये महसूस हो कि अगर वो खलाई शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना चाहिए।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि लागत के लिहाज से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और यहाँ खतरा मोल लेने की मजबूत सलाहियत रखने वाले बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन दोनों खूबियों का इम्तिजाज भारत को आलमी सतह पर खलाई शोबे में तेजी से एक नुमाया मुल्क के तौर पर खुद को कायम करने की सलाहियत फराहम करता है।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दो रोजा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में होगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के 850 से ज्यादा अफसरान मौजूदा मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजों पर भी गौर खोज किया जाएगा। इस सालाना कलीदी नौयत की कॉन्फ्रेंस से दाखिली सलामती, सरहदी इंतजाम और उभरते हुए खतरा से मुतालिक इंटेलिजेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस क्यादत के दरमियान तालमेल कायम किया जा सकेगा। 2016 में DGP और IGP कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी और पुलिस सरबराहान को हिदायत दी थी कि वह हर साल NSSC का इनेकाद करें, जिसका मकसद ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी के अहम कौमी चैलेंजों का हल तलाश किया जा सके। मुतालिका माहरीन के इश्तराक से ज़मीनी सतह पर काम करने वाले जदीद सतह के अफसरान के ज़बरदस्त तजर्बे को बरूए कार लाया जा सके। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वज़ीर आज़म डेनिस मोंत्रो के साथ तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन IRIGC टेक से मुतालिक 27वीं भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। जनाब एस जयशंकर रूस के अपने हम मनसब सरगई लावरोव के साथ भी मीटिंग करेंगे और इलाकाई व बैन अक्वामी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोजा सरकारी

0: पर कल मास्को पहुंचे थे। वह रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मंत्रोव की दावत पर रूस का दौरा कर रहे हैं। रूस और भारत के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान वक्त की कसौटी पर खरी उतरने वाली शराकत दारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस कलीदी शराकत दारी से मुतालिक ऐलामिये पर दस्तखत के बाद से सियासी, सिक्योरिटी, दिफा, तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकावत और आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत तकरीबन सभी शोबों में ताउन की बढ़ती हुई सतहों के साथ भारत रूस ताल्लुकात ने एक जदीद और मयारी शक्ल इख्तियार कर लिया है। कलीदी शराकत दारी के तहत सियासी और सरकारी दोनों सतह पर बहुत से इदारा जाती और मैकेनिकी मुजाकरात होते रहे हैं ताकि मुस्तकिल तौर पर मुजाकरात को यकीनी बनाया जा सके और ताउन की सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली से यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 18वीं ब्रिक्स तालीमी मुजाकरात कल लखनऊ में शुरू हो गए। भारत की ब्रिक्स सदारत के हिस्से के तौर पर ये तालीमी मुजाकरात मंगल तक जारी रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
0: तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तहकीक और इत्तला के निजाम RIS और लखनऊ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फोरम के कन्वीनर्स हैं। लचक, इख्तिरा और पायदारी को कायम करने के मौजू के तहत ये फोरम ब्रिक्स मुल्कों के माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, माहिरीन और पॉलिसी साजों को यकजा कर सकेगा ताकि अहम आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा सके और ताउन को मुस्तहकम करने के लिए अमली पॉलिसी से मुतालिक तौर तरीकों पर भी बहस मुबाहसा किया जा सकेगा। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन आज आंध्र प्रदेश के इलूरू जिले में वाकई गांव मनसुनुरु का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया मनसुनुरु में भारत के पहले गैर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा आला तोसी मकई के हाइब्रिड बीज का इफ्तिताह करेंगे। वो किसानों की हौसला अफजाई करेंगे और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद और दीगर शुरका से खिताब भी करेंगे। बिहार सरकार ने रियासत के इम्तिहान के निज़ाम में जामे इस्लाहात के लिए 5 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। ये कमेटी 3 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात रियासती हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी पेपर लीक, पेपर की नकल, इम्तिहानी मराकज पर बदउनवानी, जवाबी कापियों में छेड़छाड़ और नतायज में गैर मजाज मुदाखलत को रोकने के लिए इकदामात की सिफारिश करेगी। ये कमेटी इम्तिहान के निजाम अवकात, सवाल नामे की हिफाजत, जवाबी कापियों की जांच और नतायज के ऐलान के अमल को मजीद शफाफ और मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल करने पर भी तवज्जो मरकूज करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र और जुनूबी कर्नाटक में कहीं कहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, मगरबी मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरक के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। शुमाली खलीज बंगाल और मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के मुलहक्का साहली इलाकों के ऊपर बनने वाला हवा के दबाव का हल्का शुमाल मगरब की जानी बढ़ रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इसके गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए शुमाली उड़ीसा की जानिब बढ़ने का इम्कान है। इसके नतीजे में आज झारग्राम और पुरुलिया जिलों में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मशरकी मिदनापुर और जुनूबी 24 परगना जिलों में गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की पेशगोई की गई है। माहीगीरों को आज समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले मजाज मुल्कों के जहाज़ों को अब तेहरान को सर्विस फीस अदा करना होगी। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये फीस बहरी माहौलियाती और लॉजिस्टिक शिकों का इहाता करेगी। सरकारी नशरे के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि अदायगी का तरीक़ेकार नर्म माली शर्तों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने बताया कि आबनाए हुरमुज बंद है और उस वक्त तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के अपने वादों को पूरा नहीं करता। और ईरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर देते हुए कि अब नए हुर्मुज अमरीका का नया

0: इलाका है, इस अहम आबी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल का दावा दोहराया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से इस माह की 27वीं तारीख तक जापान के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो टोक्यो, नागोया और ओकासा जाएंगे। जापान जाने वाला भारत का ये सबसे बड़ा कारोबारी वफद होगा। इस वफद में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, साफ तवानाई, माली खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप्स, स्टील और ऑटोमेटिव शोबों के 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदे शामिल होंगे। आज पवित्र सावन महीने के आखिरी सोमवार के मौके पर झारखंड में बड़े पैमाने पर मजहबी तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंद बड़े शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, जहां वो बोलबम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा नदी का पानी लेकर जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने खसूस इंतजाम किए हैं, जिनमें ड्रोन के जरिए निगरानी, AI कैमरों और एक डिजिटल हेल्पलाइन का इंतजाम शामिल है। दुमका के बाबा बसुकीनाथ मंदिर में भी सावन के मेले के आखिरी सोमवार के दिन वसी सिक्योरिटी और भीड़ पर काबू पाने के इंतजाम किए गए हैं। रांची में अकीदतमंद दरमियानी शब से तारीखी पहाड़ी मंदिर का रुख कर रहे हैं। गिरिडीह के झारखंड धाम और रियासत भर के दिगर शिव मंदिरों में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जल अभिषेक को पुरअमन और महफूज तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। रांची से महफिश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: तिब्बी तहकीक के भारतीय कौंसिल ICMR ने वजाहत की है कि H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, की किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कौंसिल ने यकीन दिलाया है कि मौजूदा वैक्सीन अभी मौसर है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस साल 2025 से गर्दिश में है। ICMR के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। कबायली उमूर की वजारत कर्नाटक के मैसूरू में आज से बुध के रोज तक कबायली जुबानों और म्यूजियम से मुतालिक एक 3 रोजा कौमी कॉन्क्लेव का एहतमाम करेगी। ये कॉन्क्लेव कबायली जुबान की हिफाजत और महफूज रखने के साथ साथ उनके दस्तावेजी सबूत बरकरार रखने से मुतालिक कौमी मुजाकरात को यकजा करेगी। शतरंज में भारत के 19 साल ग्रैंड मास्टर परनेश एम हंगरी के नाग कांजिसा शहर में पुरवकार कांजिसा ओपन 2026 में चैंपियन के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के नतीजे में ग्रुप ए का खिताब हासिल किया है। परनेश ने सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में जर्मनी के वेदिम पेत्रोविस्की को शिकस्त दी। हंगरी में भारत के सफारतखाने ने परनेश की शानदार कामयाबी पर उनकी सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई स्टार्टअप्स के बानियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सफाई अव्वल पर शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि भारत का खला से मुतालिक शोबा नुमाया तौर पर वसी हुआ है और ये सेक्टर जामे इको निज़ाम तश्कील देने का अहल है। रोजनामा प्रताप ने भारत में अमरीका के सफीर सर्गियो गौर के इस बयान को नुमाया किया कि भारत अमरीका आज़ाद तजारती माहिदा FTA हतमी मरहले में, भारत हमारे लिए इंतहाई अहम मुल्क है। इसी अखबार की एक और खबर है, तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल 200 अरकान पर मुश्तमिल तजारती वफद के साथ जापान जाएंगे। ये दो दौरा तिजारत और सनत, मैनुफैक्चरिंग और सेहत खिदमात के लिहाज से इंतहाई अहम होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंगी जहाज़ों, बहरी कश्तियों और उससे मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निज़ाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज मॉस्को में तजारत, मीशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर परनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन, राग है अलहिया बिलावल। आपके साथ हारमोनियम पर हैं कौशिक मित्र और तबले पर संगत दे रहे हैं मदन लाल ससौदिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के कार्यक्रम में पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन। राग था अलहैया बिलावल। तबले पर आपके साथ थे मदन लाल ससौदिया और हारमोनियम पर थे कौशिक मित्र। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसे ने कहा है कि मुश्किलां राह रोकण लई नहीं सगू हौसला वधाउण लई आउंदियां ने। आओ जानदे हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसीं सुणोगे वार्ता जिस दा विशा होवेगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सांझीवालता दा संदेश। वार्ताकार होणगे रणजीत कौर। इस तों बाद शब्द भी सरवण करांगे, पर सब तो पहला कुछ गल्लां कर लैने आ। सत्कार मनुखी जीवन दा अहम गुण है। जदों असी दूजां दा सत्कार करदे हां तां असी उहनां दी मर्जी भावनावां ते हक्कां नूं मानता दिंदे हां। सत्कार नाल ही समाज विच प्यार एकता ते शांति बनी रहिंदी है। दूजां दा सत्कार करना एक चंगे इंसान होण दी निशानी है। घर विच वड्डियां दा, स्कूल विच अध्यापकां दा, राह विच अणजाण लोकां दा ते हर उस व्यक्ति दा आदर करना चाहीदा है जिस नाल असी मिलदे हां। छोटे होण जां वड्डे होण, गरीब होण जां अमीर होण, सब नाल बराबरी नाल पेश आउणा ही सच्चा सत्कार है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार दा सिद्धांत दे के सानू सिखाया है कि सारी सृष्टि एक परमात्मा दी रचना है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया है, मानस की जात सबे एक पहचानबो, यानी सारी मनुखी जाति नू इको जही पछाणो। इस तरह हर एक नाल बराबरी वाला सत्कार करना गुरमत दा मूल सिद्धांत है। सत्कार नाल रिश्ते मजबूत हुंदे ने। समाज विच जे लोग एक दूजे दा सत्कार करन तां नफरत ते हिंसा खत्म हो जावे। बच्चियां नू निक्की उमर तो ही ये सिखाउणा चाहीदा है तां जो वड्डे हो के चंगे नागरिक बनन। आओ असी सारे एक दूजे दा सत्कार करिए ते खुशहाल ते शांतिपूर्ण समाज बनाइए। ते आओ हुण सुणदे हां वार्ता जिस दा विशा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सांझीवालता दा संदेश। वार्ताकार ने रणजीत कौर।
1: सारी मनुखता बराबर है। बराबरी कुदरत दा मुढला असूल है। यह एक रब्बी सिद्धांत है। सबे सांझीवाल सदायन, तू किसे न किसे बाहरा जियो। गुरबाणी विच सांझीवालता दा मतलब समूची मनुखता लई बराबरी, प्यार अते एकता दा सुनेहा दित्ता गया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज इलाही बाणी सिर्फ एक मजहब या जात पात तक सीमित नहीं है, सगों यह सारे संसार नूं एक परमात्मा दी संतान मनदे हन। गुरबाणी दी विचारधारा विच जात पात, रंग भेद, उच्चे नीवे लई कोई थां नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बन आई। गुरबाणी सानू सिखांदी है एक सारे मनुखां दी जोत इको एक है। सारे मनुख एक धरती ते पैदा होए ने, ओ गुरु दी जोत चो आए ने। गुरबाणी दा मुढला संदेश सांझीवालता ते सरबत दा भला है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सानू जिंदगी जीन और जीवन जांच बारे सोच प्रदान करदी है, जिहड़ी सानू कट्टरता, अंध विश्वासां ते भेदभाव दे बंधनां नू खत्म करदी है अते जातां धर्मां ते नां ते मनुख मनुख दे विच होई दुश्मनी दी निंदा करदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आदर्श जातिवाद, समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अते आर्थिक शोषण तों मुक्त होण दी हामी भरदे हन। इह सुनेहा संपूर्ण मनुखी जात ते सृष्टि दे कल्याण लई सांझा उपदेश है। सांझीवालता दे सिद्धांत दे जरिए गुरु ग्रंथ साहिब एक अजिहे समाज दी सोच रखदा है जिथे शोषण, नफरत ते अहंकार तो दूर सारे लोकी शांति अते प्यार नाल रह सकन। गुरबाणी सानू रल मिल के रहण दा उपदेश दिंदी है। गुरु नानक देव जी दा सिद्धांत सी, नाम जपो, किरत करो, वंड छको, यानी अपनी मेहनत दी कमाई विचों लोड़वंदा नू वंड के खाना सांझीवालता दा प्रतीक है। फिर तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने जो संगत ते पंगत दी रीत चलाई कि सारे अमीर गरीब इको पंगत विच बैठ के लंगर छकनगे, एदे नाल सब दी बराबरी शो हुंदी है अते यह उत्तम मिसाल है सब तो वड्डी सांझीवालता दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सिख गुरुआं दे नाल नाल वख वख जातां, धर्मां ते खेतरां नाल संबंधित भगतां जिवें भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, भगत अन्ना जी, भगत सूरदास जी दी बाणी शामिल है। सांझीवालता दा इस तो वड्डा उदाहरण कित्थे मिलेगा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा विशाल सागर बनाया जिस विच उत्तर दखन, पूर्व पश्चिम अते अलग अलग दिशावां तो ईश्वर दी आराधना करदियां नदियां आ समाईयां। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बाणी दे रूप मौजूद संत नामदेव जी, संत परमानंद जी महाराष्ट्र दे सन, ਅਤੇ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਸੰਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੱਖਣ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ

नर अपनो जन्म गवावे। भाई दर्शन सिंह निर्मल ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। आओ अगला शब्द सरवण करदे हां भाई सुरिंदर सिंह जोधपुरी ते साथियां दी आवाज विच।

आओ सजना, हो देखा दर्शन तेरा राम। भाई सुरिंदर सिंह जोधपुरी ते साथियां दी आवाज़ विच हुणी तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ जांदे जांदे सरवण करदे हां भाई रविंदर सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच ए शब्द।

औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरध संभाले। भाई रविंदर सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग

0: की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्य रात्रि 2:30 बजे खुल गया। भगवान महाकाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया और फिर पवित्र राख से सुशोभित किया गया। वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, एक कुशल वक्ता और एक निपुण प्रशासक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली ने प्रभावी संवाद के माध्यम से आम जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनीजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोमांचक 9वें दौर के बाद प्रणेश ने मध्य यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी ओपन टूर्नामेंटों में से एक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. External Affairs Minister S. Jaishankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation, IRIGC-TEC, with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov in Moscow today. He will also meet his Russian counterpart Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. India is projected to have 10.8 crore affluent consumers by 2036, surpassing China's 10.3 crore, according to the latest report by Nielsen IQ, NIQ and World Data Lab. The report defines affluent consumers as people spending more than $90 a day. India is estimated to have about 2.6 crore affluent consumers in 2026 and is projected to add 8.2 crore over the next decade. Indian Grandmaster Pranesh M. has emerged victorious at the prestigious Kanizsa Open 2026 in Nagy Kanizsa, Hungary. The Embassy of India in Hungary congratulated Pranesh on his brilliant victory. The embassy said in a social media post, after a thrilling ninth round, Pranesh secured the top spot in one of Central Europe's most competitive open tournaments. The embassy said that they are incredibly proud to see Indian talent shining so brightly on the global stage. The Madhya Pradesh government has started an initiative to involve central institutions in the state's development. The aim is to make Madhya Pradesh prosperous by 2047. A conclave on contribution of centrally funded institutions for Samridh Madhya Pradesh 2047 will be held in Bhopal today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will inaugurate the conclave at 11 a.m. The main focus will be the One Institute, One Promise initiative. Bihar government has issued notification for the formation of a five-member special committee to bring comprehensive reforms in the state's examination system. The committee will be headed by a retired Supreme Court judge or a serving or retired High Court judge. The committee will recommend measures to prevent question paper leaks, cheating, malpractice at examination centers, tampering with answer sheets and unauthorized interference in results. The committee will submit its recommendations to the state government within 3 months. Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission Chairperson Ebrahim Rezai said that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to a state broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आपकी पसंद।

बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम जिसमें कि हम शामिल करते हैं, आपके मैसेजेस बिल्कुल मेल पढ़ते हैं और हम आपसे जुड़ते हैं और आप भी हमसे जुड़ते हैं, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो दोस्तों बिल्कुल कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है, प्यारा सा गीत भी हम सुन चुके हैं और हम चाहेंगे कि जो नए श्रोता है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको हम अपना ईमेल आईडी बता दें। हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो बिल्कुल मैसेजेस का हमें वेट है, एक बार फिर मेल आईडी बता देते हैं iprradio.delhi@gmail.com। तो बिल्कुल अपने मैसेजेस हमें ज़रूर भेजिए, बहुत सारे मैसेजेस हमें आ भी चुके हैं, बिल्कुल हम उन्हें लेने वाले हैं क्योंकि उनके बिना तो कार्यक्रम अधूरा है। पर दोस्तों मैं अभी जैसे कि बिल्कुल कार्यक्रम का आगाज़ हुआ सोच रही थी कि मौसम बदल रहा है, कभी कभी यूँ कहें कि सावन तो है ही है, बारिश आ ही रही है पर बीच में धूप हो जाती है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है। और मौसम बदलना जो है ना, मौसम का बदलना एक प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत है ना हिस्सा है, कहें कि उसकी जो तरीका है हम लोगों को कई कई चीज़ें दिखाने का बहुत ही अच्छा है। कभी कभी चिलचिलाती धूप तो कभी ठंडी हवाएं होती हैं, कभी बारिश की फुहारें और कभी बसंत की रंग बिरंगी छटा। हर मौसम अपने साथ कुछ ना कुछ खास लेकर आता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है? ठंड गर्मी, जो कि गर्मी आते ही हम ठंडे पेय पीते हैं और हमें आम याद आने लगता है जो फ्रूट्स होते हैं, और फिर साथ में आइसक्रीम खाने का भी एक शौक होता है गर्मियों में। सर्दियों में भी लोग खा लेते हैं पर गर्मियों में एक अपना ही क्रेज़ होता है, और सर्दियों में गरम गरम चाय, धूप और रज़ाई का अपना ही आनंद है। बारिश हो तो मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदें देखने में बहुत मज़ा आता है, पकौड़ों की भी याद आती है खाने में। वहीं बसंत का मौसम हो तो बिल्कुल सब जगह फूल खिले खिले से, न गर्मी न सर्दी, बहुत अच्छा सा लगता है। घूमने जाने का भी एक बहुत अच्छा मौसम होता है। तो क्या कहते, मैं तो ये कहूँगी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वो मौसम, उसकी ऐसी क्या वजह है कि जो आपको अच्छा लगता है वो मौसम, क्योंकि हर मौसम का एक अपना लुत्फ है। कभी कभी कोई कहता है कि मेरे ही अपने घर में ही, अपने ही आप घर में ढूंढोगे तो किसी को सर्दी अच्छी

देखते हैं, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, कोई कहते हैं जी सर्दी तो बहुत गंदी होती है, कुछ काम नहीं होता, और कई लोग कहते हैं गर्मी बहुत गंदी होती है, बाहर भी नहीं निकला जाता, और कई बार कोई कहता है ये वाला मौसम नहीं मुझे ठीक लगता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है बसंत की है। तो कुछ ना कुछ मौसम में कोई कोई मौसम हर किसी को अपना अच्छा लगता है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और आखिर क्यों अच्छा लगता है वो मौसम, कुछ तो वजह होगी ना, ऐसे ही तो बिन वजह कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वैसे तो सारे मौसमों का अपना ही लुत्फ है, फिर भी हमें बताइए कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। और एक प्यारा सा गीत आप सुनिएगा और उसके बाद पूरे आपके मैसेजेस की ओर हम रुख करेंगे।

सावन तो अब जाने को भी हो गया है, और बहुत ही प्यारा गीत मौसम के लिए बहुत ही खुशनुमा सा लगता है हमेशा जब भी सुनो, और हमारे श्रोताओं की पसंद है भी लाजवाब। तो इस गीत को सुनना चाहा था कांडर कपड़ा से अनिल बोरांडे, उषा बोरांडे, अनुश्री बोरांडे जी ने, और साथ में इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना भी इनके साथ हैं। और अगला जो मैसेज है वो ले लेते हैं। यह है काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रमांडे, भारतीय रमांडे जी का, और ये मैसेज हमें आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद का। और अगला जो मैसेज है वो हमें आया है लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, परमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, ये लिख रहे हैं किसी भी गीत में शामिल करें। तो दोस्त हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे गीतों की फरमाइश की है, बिल्कुल आपका नाम तो शामिल हो गया। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। यह है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी का पिंगा वाला चौक, गौरैया जालंधर से, और हमारे साथ जुड़े हैं जिला नांदेड़ जताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल जी। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफा की बावड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं खुदा बख्श खलीफा, राम देवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल जी। और ये संदेश हमें आया है बड़िंग खेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। और दादरी गेट भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा जी। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें ये मैसेज भेजा है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू ने। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो दोस्त, हमने पूछा था आपको कौन सा मौसम पसंद है, क्योंकि हर एक मौसम की अपनी खासियत होती है, और अगर वो मौसम आपको पसंद है ये भी साथ में पूछा था कि तो क्यों पसंद है। तो उम्मीद है कि हमारे श्रोता हमें ज़रूर मैसेज करके बताएंगे आखिर उनको वो ख़ास मौसम जो उन्हें पसंद है वो क्यों पसंद है। चलिए मैसेजेस की ओर रुख करते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ये हमें जो संदेश आया है ये बठिंडा रोड मंडी डबाबली से है, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तान्या नारंग का। और हमारे साथ जुड़े हैं महरारा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हमारे साथ जुड़े हैं ज़ुबैर अली खान और सबिया अंजुमन खान, और ये लिखते हैं कि इन्हें किसी भी गीत में शामिल कीजिए। तो दोस्त, ऐसी बात नहीं है, आपकी पसंद का गीत भी आप भेज सकते हैं। बिल्कुल प्यारे से गीत हमारे श्रोताओं के वो आप फिर सुनिए। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू का। और अगला जो संदेश हमें मिला है ये है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही का और मेहराज जहाँ इनके साथ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ये संदेश हमें आया है। और अगला जो मैसेज हमें मिला है ये है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष्टि का। और हमारे साथ जुड़े हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी वोट। और ये आया है मैं संदेश जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और इनके साथ कालका से जुड़े हैं हमारे साथ शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी। और अगला जो संदेश हमें आया है वो है पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का। और ये है हमारे साथ जुड़े टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा। ये लिखते हैं कि तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल गीत बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारे ही श्रोताओं की पसंद है। और अगला जो संदेश है वो आया है लिवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी का। इन्होंने हमारे संदेश का भी जवाब दिया है, लिख रहे हैं कि इन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुक्रिया दोस्त, और लिख रहे हैं हर मौसम अपने आप में बहुत खूब होता है, हर मौसम का एक बड़ा ही आनंद होता है, लेकिन हमें ठंड के मौसम, जो ठंड का मौसम है, इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इन दिनों कई प्रकार की सब्जी मिलती है और जायका भी लाजवाब होता है ठंड के मौसम में, ज़्यादातर सेहत भी अच्छी रहती है और खाने का आनंद आता है। बहुत सही बात कही गई दोस्त, हरी सब्जी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है, और जो हम खाते हैं तो हमें पच भी जाता है शायद जल्दी से इसलिए, और तो खाने का मज़ा भी आता है, रजाई में बैठ के आराम से गर्मा गर्म खाना खाओ। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से, सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी का। और ददरंगी से हमारे साथ जुड़े हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा। ये लिख रहे हैं कि हमें कार्यक्रम पसंद आ रहा और हमारा मेल शामिल करें या ना करें, हम सुने बिना नहीं रह सकते। तो दोस्त, आपका मैसेज भी शामिल किया, क्योंकि इसके बिना तो कार्यक्रम अधूरा है ना। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। यह आया है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक का। ये लिखते हैं, दीदी जी मुझे सर्दी का मौसम बहुत ही खूबसूरत लगता है। भाई सर्दी का मौसम अक्सर कई लोगों को अच्छा लगता है, पर कुछ लोग हैं जिन्हें गर्मी का मौसम भी अच्छा लगता है। और मैंने सुना है, मेरे ही घर में भी है जिन्हें गर्मी का मौसम भी अच्छा लगता है, कह रहे कि सर्दी में ज़्यादा ठंड लगती है। पर हाँ, सर्दी का मौसम वाकई सुहाना होता है, कि घूमने भी जाना हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि ठंड नहीं लगती, दिन में आराम से घूमा जा सकता है जब धूप आती है तो। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है मुहावा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत का। और हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राविया शेख, शेख रहीम मुन्ना जी। चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा समय, और जब किसी का इंतज़ार हो और बहुत ही अच्छी खबर आने वाली हो या कोई आपके पसंद का व्यक्ति मिलने वाला हो तो वो समय वाकई अच्छा लगता है। चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो, फिर भी मौसम की भी एक अपनी बात होती है, प्रकृति की भी तो कोई बात होती है। हमने आपसे पूछा था कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें जवाब भी भेजे हैं, तो चलिए संदेश और भी ले लेते हैं, उसके बिना तो जो हमारा कार्यक्रम है आपकी पसंद वो अधूरा सा है। तो ये संदेश हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का, इन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, तो शुक्रिया दोस्त। अगला जो संदेश हमें आया है वो है उत्तम नगर दिल्ली से, हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी। और अगला संदेश हमें आया है, बहुत सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं, रोज़ वगैरह इसमें बहुत सजा के ये संदेश हमें भेजा है, थाना रोड बक्सर से जियोत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता ने। और अगला संदेश हम ले लेते हैं, यह है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले का, और इनके साथ हैं पूना वाले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। और इन्होंने लिखा है कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा और बहुत ही प्यारे गीत की भी फरमाइश भेजी है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, यह है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी का। और हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी। अगला संदेश हमें आया है मालवा रेडियो श्रोता संघ राम हिंगड़ी से, जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़ और युवराज सिंह का। और हमारे साथ ये अगला जो संदेश है ये है आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। और निवासा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे, आरती लोखंडे, प्रसाद लोखंडे जी। साई की सिर शिंडी से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे और मानसी मालोदे। और ये हमारे साथ जुड़े हैं विष्णु मस्किन, रीतिका आरोही वाणी, मिस्किन परिवार ने भी की ओर से भी ये संदेश है, दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। और अगला जो

हमें संदेश आया है वो आया है, जीजा माता कॉलोनी जालाना शहर से सागर माटोले रेणुका और लक्ष्मी जी का। और ये हमें संदेश आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। और हमारे साथ ये जुड़े हैं शिवा घोष, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली जी। ये पश्चिम बंगाल सिंहभूम चाईबासा झारखंड से जुड़े हैं, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। अगला जो संदेश हमें आया है कालेमला कोपरगांव से रामचंद्र रावकर, अनु रावकर, रोहित रावकर, रेणुका रावकर का। और आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत घरौंदा फिल्म का, और वाकई जब भी सुनती हूँ ना और मन झूम जाता है, और पुरानी यादें जो कहें, हमने भी फिल्म देखी हुई है तो पूरी फिल्म ही याद आ जाती है, और वाकई बहुत ही लाजवाब पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे भी बढ़ते हैं और लेते हैं अगले संदेश। ये संदेश आया है हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी का। और अगला जो हमें संदेश आया है वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी जी का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो जी, और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हैं। ये लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपको, हमको तो बसंत ऋतु बहुत पसंद है क्योंकि हर तरफ नए रंग बिरंगे फूल पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, मौसम भी बहुत सुहाना होता है, वाकई बहुत सुंदर होता है। और अगर कहीं आप कैंपस कॉलेज के साइड में चले जाओ या किसी पार्क में चले जाओ तो मन खिल उठता है, और आपको वो फूल भी दिखते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं धनौरी तहली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी, और अगला जो संदेश है ये आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा पटेल का। ये लिखते हैं, हमें तो सर्दी का मौसम बहुत पसंद आता है क्योंकि चाय पकौड़े का लुत्फ अलग से और सुनहरी धूप का भी आनंद लेकर हम रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्त। और ये है संदेश हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हमारे साथ जुड़े हैं अरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। ये लिखते हैं, हमें सर्दी का मौसम पसंद आता है, इस मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग जो खाने को मिलता है अच्छी तरह से, मज़ा कुछ और ही है इस मौसम में, तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। वाकई में सर्दी का मौसम का भी एक अपना लुत्फ है और अक्सर सर्दी का मौसम सभी को पसंद आता है। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुन मंजरी के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे अर्चना सिंह का गायन। आपने सुना आज राग तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है स्टूडियो की घड़ी में। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे आप।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नेता निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने

0: बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today urged Japanese companies to expand their operations in India and create success stories similar to Suzuki, and said the country would like to see 1,580 Suzukis emerge from the Japanese firms operating in India. Addressing a roundtable meeting with the Japan-India Business Consultative Committee of the Japan Chamber of Commerce and Industry and the Embassy of India, Goyal said India's young workforce, expanding economy and long-term growth ambitions offer significant opportunities for Japanese businesses. Goyal said India and Japan should use the 75th anniversary of diplomatic relations to deepen business collaboration and shape their economic partnership for the coming decade. External Affairs Minister S. Jaishankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov in Moscow today. He will also meet his Russian counterpart Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. Vice President C.P. Radhakrishnan arrived at Musunuru in Elluru district of Andhra Pradesh, where he was received by Governor S. Abdul Nazir and Chief Minister N. Chandrababu Naidu. The Vice President will shortly unveil India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed at the Gourmet Popcornica facility. The initiative aims to make agriculture more profitable by adding value to farm produce through processing, branding and better market access. The Vice President will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders at the program. The Bihar government has issued notification for the formation of a 5-member special committee to bring comprehensive reforms in the state's examination system. The committee will be headed by a retired Supreme Court judge or a serving or retired High Court judge. The committee will recommend measures to prevent question paper leaks, cheating, malpractice at examination centres, tampering with answer sheets, and unauthorised interference in results. The committee will submit its recommendations to the state government within 3 months. The Madhya Pradesh government has started an initiative to involve central institutions in the state's development. The aim is to make Madhya Pradesh prosperous by 2047. A conclave on contribution of centrally funded institutions for Samridh Madhya Pradesh at 2047 will be held in Bhopal today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will inaugurate the conclave at 11 a.m. The main focus will be the One Institute, One Promise initiative. Iran has said vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson, Ibrahim Rezai, stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. Benchmark domestic equity indices paired their early gains and were trading in the negative territory in the forenoon session today. The Sensex dropped 204 points to 77,337, while the Nifty fell by 67 points to 24,185 when reports last came in. Indian Grandmaster Pranesh M. has emerged victorious at the prestigious Kanitsa Open 2026 in Nagy Kanitsa, Hungary. The Embassy of India in Hungary congratulated Pranesh on his brilliant victory. The embassy said in a social media post after a thrilling ninth round, Pranesh secured the top spot in one of the Central Europe's most competitive open tournaments. And with that, we end this news bulletin.

घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 KHz पर। श्रोताओं, आज सावन का सोमवार है जो इस आध्यात्मिक यात्रा का विशेष पड़ाव माना जाता है। और सावन का महीना जो है वो केवल पूजा पाठ का महीना नहीं होता। हम अपने आराध्य, अपने शिव को ध्याते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनसे खूब सारी प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान शिव सुनते भी हैं। और जो ये महीना होता है, जो सावन का महीना, ये हमें प्रकृति के करीब आने का संदेश भी देता है। बारिश में धुली धरती, हरी भरी वनस्पति और ठंडी फुहारे हमें प्रकृति के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है इस महीने में कि

धरती की हर एक क्षय में जीवन है, उसमें सुंदरता है। और इस पूरे महीने सभी ने श्रद्धा भक्ति भाव से उस ईश्वर को ध्याया जो सर्वे सर्वा हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो अनंत हैं। तो इस मंगल कामना के साथ कि आप हर दिन ऐसे ही खुद को साधेंगे और स्वयं को उस ईश्वर को समर्पित करेंगे जो इस सृष्टि का, इस धरती का कल्याण कर रहे हैं।

संगीत सम्राट तानसेन। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी कमल बारोत और महेंद्र कपूर की। तो कार्यक्रम को श्रोताओं आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि आपके घर की छोटी छोटी परंपराएं, जैसा कि हर घर में मतलब संस्कार परंपराएं होती हैं, तो आज आपको उन परंपराओं को के बारे में बताना है जो आपके घर में निभाई जाती हैं, जो एक अच्छा संदेश देती है। जी हाँ, ऐसी छोटी छोटी कौन सी परंपराएं हैं जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसका आप निर्वाह कर रहे हैं सालों दर साल, और जो एक अच्छा संदेश देती है। तो आपको अपने प्रश्न का जवाब देना है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आप अपने जवाब हमें जल्द से जल्द भेजिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, आज महिलाएं सशक्त हैं, उन्होंने वो मुकाम हासिल कर दिखाया है जिसकी वो हकदार हैं, और महिलाओं ने साबित भी कर दिया है कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं। आज की महिला केवल घर की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, विज्ञान, कला और नेतृत्व, हर क्षेत्र में आज महिला अपनी पहचान बना रही है, या यूं कहें कि बना चुकी है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं है, वे कमाकर परिवार को

आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं और उच्च शिक्षा के कारण महिलाएं अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और करियर को लेकर भी सजग हुई हैं। घर के बजट से लेकर बच्चों के भविष्य तक हर बड़े फैसले में महिलाओं की राय अब महत्वपूर्ण है। आज पुरुष भी घर के कामों और बच्चों की परवरिश में हाथ बटाने लगे हैं और माता पिता दोनों के कामकाजी होने से बच्चे अधिक आत्मनिर्भर और व्यवहारिक भी बन रहे हैं। तो डबल इनकम के कारण परिवारों का रहन सहन और बच्चों को मिलने वाली शिक्षा का स्तर भी आज सुधर गया है। अब परिवार में फैसले लेने से लेकर आर्थिक जिम्मेदारियों तक पति पत्नी के बीच साझेदारी और सहयोग को अधिक महत्व भी दिया जा रहा है। लेकिन बदलती भूमिका के साथ जिम्मेदारियां भी तो बड़ी हैं, इसलिए जरूरी है कि परिवार महिला से केवल अपेक्षाएं ना रखे बल्कि उसके समय, सपनों और निर्णयों का भी सम्मान करे। साथ ही साथ घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियां केवल महिला की नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य की साझी जिम्मेदारी बनती है। जब बेटा, बेटी, पति, पत्नी और अन्य सदस्य मिलकर घर संभालते हैं ना, तो परिवार में सहयोग और अपनापन बढ़ता है। वो कहते हैं ना, जब महिला आगे बढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए बदलती महिला को समझना, उसका साथ देना, उसकी उपलब्धियों को सम्मान देना एक मजबूत और खुशहाल परिवार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी चिराग। और श्रोताओं, जैसा कि हमने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का एक जवाब हमारे पास आ गया है। जवाब दे रहे हैं नवीन भाटिया जी। वो कहते हैं कि सुबह उठकर नहाकर पूजा पाठ करके ही नाश्ता करते हैं, उनके घर में सभी बगैर नहाए चाय तक भी नहीं पीते हैं वो लोग। तो देखिए कितनी अच्छी आदत है ना, कि होता क्या है कि अगर आप जल्दी उठते हैं, सुबह सब काम समय पर कर लेते हैं, तो एक अच्छा जो समय प्रबंधन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसे आलस बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अगर आप नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, समय पर नाश्ता कर लेते हैं, समय पर सब काम कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव काम करने का समय मिलता है। तो बिल्कुल सही कहा नवीन जी आपने। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी सकारात्मक कोशिश की। आज फास्ट फैशन इंडस्ट्री कपड़ों के उत्पादन और विपणन का एक ऐसा मॉडल है जिसमें रनवे और सोशल मीडिया के नए ट्रेंड्स को बहुत कम कीमत और तेज गति से तैयार करके बाजारों में बेचा जाता है। इसमें कपड़ों की गुणवत्ता और टिकाऊपन कम होता है ताकि उपभोक्ता उन्हें जल्दी बदल कर नए कपड़े खरीदें, और ऐसा हम सभी कर भी रहे हैं। और ये कपड़े होता क्या है कि आज लैंडफिल्स का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पहाड़ बन गए हैं, उसमें ये कपड़ा भी कहीं ना कहीं अपना जो है ना एक रोल निभा रहा है, तो जिसकी वजह से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इनमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान निकालना जरूरी था ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा सके। और अर्पण केंद्र इस दिशा में दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक सकारात्मक और एक अनूठी संयुक्त पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने और अप्रयुक्त यानी अनयूज कपड़ों को रिसाइकल और अपसाइकल करना है, ताकि कपड़ा जो है वो जो वेस्ट निकलेगा, टेक्सटाइल वेस्ट निकलेगा, उसको कम किया जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इस योजना के तहत दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर विशेष कलेक्शन कियोस्क बॉक्स लगाए गए हैं। ये केंद्र रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं और जमा किए गए कपड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। अच्छे और पहनने योग्य कपड़ों को जरूरतमंदों को दिया जाएगा और या फिर उन्हें अपसाइकिल किया जाएगा ताकि उन्हें रीयूज किया जा सके, और पूरी तरह से खराब हो चुके कपड़ों को नए धागे, फाइबर या अन्य उपयोगी उत्पादों में रिसाइकिल कर दिया जाएगा। और जब आप ये कपड़े दान करने जाएं, देने जाएं, तो वहां लगे QR कोड को स्कैन करके अपनी जानकारी वहां पर आप दर्ज कर सकते हैं, और कपड़ा जमा होने के बाद आपको तुरंत एक डिजिटल डोनेशन सर्टिफिकेट यानी कि एक ई रसीद मिल जाएगी। इस योजना के तहत कपड़ों की छटनी और रिसाइकल का काम महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS और NGOs को सौंपा गया है, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। तो पहले चरण के तहत दिल्ली के 10 प्रमुख स्टेशनों पर ये अर्पण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 5 स्टेशनों पर ये सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिसमें है पंजाबी बाग वेस्ट, शालीमार बाग, मयूर विहार फेज 1, शाहदरा, रोहिणी वेस्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, मालवीय नगर, हौज खास, द्वारका, मोहन स्टेट, लाजपत नगर। तो यदि आपके पास भी ऐसे पुराने कपड़े हैं जो अलमारी में बेकार पड़े हैं, तो उन्हें आप नजदीकी अर्पण केंद्र पर जाकर दान कर सकते हैं और दिल्ली को स्वच्छ और हरा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, वाकई एक सकारात्मक कोशिश पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आप भी इस ड्राइव का हिस्सा बनकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

मेरा साया, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब हमें आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक ही जवाब आए हैं। और हम अपने श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी अपने जो इस प्रश्न का जवाब है वो शीघ्र अतिशीघ्र भेजें। और मेरे पास एक जवाब है सिमी जी का, जो कि बुराड़ी दिल्ली से लिख रही हैं। वो कहती हैं कि त्योहारों के इस मौसम में अंतर्गत वो रक्षाबंधन पर उनके परिवार में चने की दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा है, क्योंकि चने की दाल को शुभ शगुन के रूप में माना जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि जो पुरानी जो परंपराएं हैं और आज के लोग उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी जो यादें होती हैं वो एक लेगेसी की तरह होती हैं। अगर हम अपने परिवार में इस तरीके की परंपराएं, जो संस्कृति होती है, उसको निर्वाह करते हैं, उसका पालन करते हैं, और देखिए खुद को भी तो अच्छा लगता है ना। तो हमारा आज का प्रश्न भी यही था कि आपके घर की छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, जो एक अच्छा संदेश देती हैं, या आपको वो उसकी क्या खास बात अच्छी लगती है उस परंपरा की, तो आपको हमें लिख भेजना है fmgoldga@gmail.com पर। तो अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आज सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया जो है वो अभिव्यक्ति का एक आसान माध्यम बन गया। जैसा हम सभी जानते हैं, आज हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और दिन भर में ना जाने कितनी पोस्ट, वीडियो और संदेश हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। हम उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं या फिर उस पर टिप्पणी करते हैं। और कई बार तो हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे उस पोस्ट को आगे साझा भी कर देते हैं, यानी कि शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर एक क्लिक भी हमारी जिम्मेदारी है? किसी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना, अफवाहों को आगे ना बढ़ाना, और किसी की जो निजी तस्वीर है या जानकारी बिना अनुमति साझा नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी ये बातें हमें डिजिटल नागरिक होने का संदेश देती है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है, तभी हम जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन पाएंगे। और किसी बात या विचार को लेकर असहमति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा संदेश आता है जिस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, है ना, उसमें हम सहमत नहीं होते, लेकिन असहमति को आप अपमान में ना बदलें। आपकी जो भाषा है, अगर आप उस पोस्ट पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में वो मर्यादा बना कर रखें, है ना। और क्योंकि आप जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे वही आपके व्यक्तित्व की पहचान कराएगा। और एक और जरूरी बात ये कि हर वायरल वीडियो का संदेश सच हो ये जरूरी नहीं होता। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय स्रोत से उसकी पुष्टि जरूर करें। तो भाई, अगली बार जब आपकी उंगली शेयर बटन पर जाए ना, तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या ये जानकारी सही है, क्या इसे साझा करना जरूरी है, और क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। याद रखिए, सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज पर प्रभाव डालने की ताकत भी तो है। तो क्यों ना हम सिर्फ अच्छे सोशल मीडिया यूजर ही नहीं बल्कि जिम्मेदार डिजिटल नागरिक भी बने। तो भाई, अगली बार सोच समझ कर पोस्ट करें और उसको अच्छे से जांच कर ही शेयर करें, और सम्मान के साथ ही संवाद करें।

सांझ और सवेरा। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। श्रोताओं, आज बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हम सभी देते हैं। जी हाँ, बात करते हैं गुस्से की। हम सभी गुस्सा करते हैं। हर छोटी बात पर गुस्सा आना इस बात का संकेत है कि हमारा मानसिक या शारीरिक धैर्य कम हो रहा है। तो क्या कारण है कि हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं? हम हर छोटी बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि तुरंत हम उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। तनाव, थकान, मानसिक दबाव और चिंता, नींद की कमी हमें चिड़चिड़ा बना देती है और हम असहज महसूस करते हैं और हर छोटी बात पर हमारी प्रतिक्रिया उग्र होती है। तो कैसे एक बेहतर प्रबंधन के जरिए हम शांत और सहज बने रह सकते हैं? तो करना क्या है कि गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देना होता क्या है कि अक्सर स्थिति को और मुश्किल बना देता है। तो जब गुस्सा आए तो सबसे पहले रुकें और तुरंत जवाब ना दें, क्योंकि कुछ पल का विराम हमें सोचने का मौका देता है। गहरी और धीमी सांस लें, आराम से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इससे मन को शांत होने का अवसर मिलता है और अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए बदल लें। संभव हो तो शांत जगह पर जाएं और थोड़ा पानी पिएं या कुछ मिनट टहल लें। उससे पूछें कि मुझे वास्तव में गुस्सा किस बात पर आ रहा है, क्योंकि कई बार गुस्से के पीछे थकान, निराशा या किसी बात का दुख भी हो सकता है। और जब बात करनी हो तो आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना व्यक्त करें। श्रोताओं, याद रखिए, गुस्सा गलत भावना नहीं है। असली बात यह है कि हम उसे कैसे संभालते हैं, उसे कैसे व्यक्त करते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए ना, तो रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए और फिर बोलिए, क्योंकि कुछ पल का संयम रिश्तों में बहुत बड़ी कड़वाहट आने से रोक सकता है। तो एक सही प्रबंधन के जरिए स्वयं को, अपने रिश्तों को गुस्से के दंश से बचाइए।

और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी आया सावन झूमके। और श्रोताओं, हमारे पास एक और मेल आ गया है, वो है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का। आप शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सूर्योदय होने से पहले उठ जाना, हमेशा सफाई से रहना, सादा रहना और साफ रहना, यानी कि एकदम सादा से मतलब शायद कि एकदम जड़ों से जुड़कर रहना और संतोषी बने रहना और ज़रूरत की चीज़ लेना, बड़ों का सम्मान करना, ये संस्कार हमें अपने बड़ों से मिले हैं। और ये कह रहे हैं कि जो संस्कार हमें अपने बड़ों से मिल रहे हैं, हम उन्हें अपने बच्चों में भी आगे दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी इसका पालन जो है वो करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि जो हमारे माता पिता के संस्कार हैं उसको हम सहेज कर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, वो भी उन संस्कारों को सहेजेगा। और श्रोताओं, अब बात करते हैं बारिश की। जैसा कि अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश का जो मौसम होता है ना, अपने आप में बड़ा मनोहारी मौसम होता है। जब रिमझिम हर तरफ होती है और धरती का जो आंगन है वो खुशबू से भर देती है बारिश, मिट्टी की खुशबू और हरियाली हम चारों ओर देखते हैं, तो साथ ही साथ होता क्या है कि जीवन को जो ये बारिश होती है ना, एक नई ऊर्जा देती है। जहाँ बारिश ये जीवन लेकर आती है, वहीं बारिश के बाद अचानक बढ़ने वाली उमस हमारे स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर डालती है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बारिश हुई तो मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन अगर अगले दिन या दो दिन तक बारिश नहीं होती तो ह्यूमिडिटी का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो हवा में नमी बढ़ने लगती है और शरीर का जो सबसे मुख्य कूलिंग सिस्टम है, यानी कि पसीने का जो वाष्पीकरण है, वो रुक जाता है। इसके कारण पसीना जो है वो त्वचा पर ही जमा रहता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। उमस हमारे शरीर और स्वास्थ्य को कई तरीके से प्रभावित करती है। डिहाइड्रेशन हो सकती है, तापमान कम होने पर भी उमस के कारण शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना बहता है। अधिक नमी के कारण शरीर को गर्मी बाहर निकालने में परेशानी होती है, जिससे सुस्ती और बेचैनी महसूस हो सकती है। और जब पसीना ज़्यादा आता है लेकिन नमी के कारण वो जल्दी नहीं सूखता तो शरीर चिपचिपा और असहज महसूस करता है। लगातार नमी और पसीने से त्वचा पर घमोरियां, खुजली या जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, और फंगल संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है इस मौसम में, क्योंकि नम वातावरण में जो फंगस है, वो फफूंद जो है वो आसानी से पनप सकता है, खास करके पैरों में, त्वचा के सिलवटों में और लंबे समय तक गीले रहने वाले हिस्सों में। अधिक नमी कुछ लोगों में सांस लेने में असहजता बढ़ा सकती है, विशेषकर जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी संवेदनशीलता है। तो बचाव के आसान उपायों की बात करें तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए, क्योंकि पसीना खूब निकल रहा होता है शरीर से तो पानी की कमी हो सकती है, तो आपको पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। त्वचा को सूखा रखना है, गीले कपड़े अगर हो गए हैं, चाहे वो पसीने से हो गए हैं या आप बाहर से आए हैं गीले हैं, तो आप उन कपड़ों को तुरंत बदल डालें और घर को जो है वो हवादार वातावरण बनाए रखें घर में, यानी कि खिड़की दरवाजे या जो आपका वायर मैश वाला विंडो है उसको लगा लें, ग्लास विंडो को आप खोल लें। तो बारिश का मौसम श्रोताओं भले ही राहत लेकर आता है, लेकिन उसके बाद की जो उमस है ना, उसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो शरीर को ठंडा, त्वचा को सूखा और आसपास के वातावरण को हवादार रखकर आप उमस में होने वाली इस कई परेशानियों से बचें।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बेताब। और श्रोताओं, मौसम बारिश का है, और मौसम जो ये वाला होता है ना, ये बीमार कर देने वाला होता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि वायरल बुखार की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो अगर आपको घर में या किसी को वायरल बुखार है या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जुकाम है, खांसी है, तो समस्या गंभीर होने पर आप उसे नज़रअंदाज ना करें, चिकित्सक के पास तुरंत जाएं। और घर से बाहर निकल रहे हैं तो आज के समय में, इस समय में मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि ये संक्रमण के खतरे को रोकेगा। और साथ ही साथ दूसरों से हाथ मिलाने को, अभी संपर्क जो है वो उसको अवॉइड करें। और दूसरों के करीब बैठकर, मतलब अगर आप बैठते हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का, जैसे आपने मास्क लगाया या कहीं पर भी आप तो ऐसे सतहों को छू रहे हैं, तो आप उसको सैनिटाइज करें या हाथ अच्छे से धोएं। बस ये जो छोटे छोटे जो बचाव हैं कि मच्छरों से बचना है, पानी नहीं जमा होने देना, या बुखार चढ़ रहा है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दिखानी है कि डॉक्टर के पास जाना है या दवाई लेनी है, तो आप इस वायरल बुखार जैसी समस्याओं से बच सकते हैं।

आज़ाद में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, और घड़ी ने इशारा कर दिया है मेरे चलने का। तो फिर किसी और दिन इसी समय पर मुलाकात होगी फिर से कार्यक्रम घर आंगन में। तो मुझे यानी कि प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सदस्यता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में

विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमीं पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप अगर इस गाने से पहचान गए हैं तो बता दें आपको कि दोस्त नाम छोटा है लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। ये फिल्म हमें बताती है कि सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो केवल खुशियों में साथ दे, बल्कि वो होता है जो गलत रास्ते पर चल रहे इंसान को भी संभालने की कोशिश करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1974 में आई फिल्म दोस्त की, जिसमें मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी। फिल्म के नायक हैं मानव, जिनकी भूमिका में है धर्मेंद्र। मानव एक अनाथ युवक है जिसका पालन पोषण फादर फ्रांसिस ने किया। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो अपने पुराने घर लौटता है तो उसे अपने पिता का, जो भी उसको पाल रहे होते संरक्षक का, निधन के बारे में पता चलता है। और उसके बाद मानव अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए मुंबई की ओर बढ़ता है। यही उसकी जिंदगी में आता है गोपी चंद शर्मा, यानी गोपी, जिसका चरित्र निभाया है शत्रुघ्न सिन्हा ने। गोपी का जो भूमिका है वो मानव से बिल्कुल अलग है। वो परिस्थितियों से संघर्ष करते करते गलत रास्तों पर चल पड़ा है। दोनों की पहली मुलाकात दोस्ताना माहौल में नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे मानव को गोपी के भीतर छिपा एक इंसान दिखाई देता है, एक अच्छा इंसान दिखाई देता है। यहीं से फिल्म का सबसे खूबसूरत जो पड़ाव है वो सामने आता है कि क्या एक सच्चा दोस्त किसी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। मानव गोपी को पहले वो केवल अपना दोस्त नहीं मानता, बल्कि उसे बेहतर जिंदगी की ओर ले जाने की कोशिश करता है और चाहता है कि गोपी अपराध और बेईमानी से दूर होकर ईमानदारी से जिंदगी जिए। मानव उसे काम दिलाने में मदद करता है और दोनों के बीच ऐसे ऐसे करके गहरी दोस्ती बन जाती है। दूसरी ओर मानव की मुलाकात होती है काजल, यानी काजू से, जिसकी भूमिका है हेमा मालिनी द्वारा निभाई गई। दोनों के बीच प्रेम पनपता है। काजल के पिता की भूमिका में थे रहमान, लेकिन कहानी केवल प्रेम दोस्ती की सरल नहीं कहानी, बल्कि ये ऐसी कहानी है जहां हालात बदलते हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं और फिर मानव की जिंदगी से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कहानी को और ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर ला खड़ा कर देती है। धर्मेंद्र को आमतौर पर हमने उनकी एक्शन फिल्म्स में ज़्यादा देखा है, रोमांटिक छवि के लिए याद किया है, लेकिन दोस्त में जो उनका किरदार है वो बहुत ही संवेदनशील है।

0: और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी, और आज बात हो रही है 1974 में रिलीज हुई फिल्म दोस्त के बारे में, जिसमें मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी थे। तो बात करते हैं धर्मेंद्र की भूमिका की। तो हमने बात की कि जहां हमने उनको सिर्फ एक्शन में देखा है या फिर रोमांस में देखा है, यहां पर एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल किरदार हमें धर्मेंद्र जी का देखने को मिला। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ज़्यादातर नेगेटिव या फिर तीखे किरदारों में अपनी पहचान उस दौर में बना चुके थे, लेकिन दोस्त में उनका जो चरित्र है वो केवल एक अपराधी या फिर एक गलत इंसान का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो कि परिस्थितियों की वजह से उसका शिकार होकर उसने अच्छाई, उसकी जो है ना वो दब गई, इस तरह का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा का है। तो जब इस फिल्म को हम देखते हैं तो उनके बुरे किरदार से भी हमें प्यार हो जाता है।

फिल्म में असित सेन, अनवर हुसैन, अभी भट्टाचार्य, रहमान, कन्हैयालाल कुमारी, नाज, मास्टर बंटी जैसे कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक छोटी सी अतिथि भूमिका है और ये भूमिका अनक्रेडिटेड रही फिल्म के निर्माण से जुड़ी। ये एक ऐसी जानकारी है, बताते हैं कि निर्देशक दुलाल गुहा ने एक इस अतिथि फॉर्मेट के लिए, एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट की थी और अमिताभ बच्चन जी मान गए थे, जहां पर उन्होंने इस कैमियो के लिए फीस नहीं ली थी। और ये इस फिल्म को और भी ज़्यादा खास बना देती है, क्योंकि उस समय पर अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और हर कोई उनको, हर दर्शक उनको देखना चाहता था। और अगर छोटी सी ही भूमिका में सही, लेकिन अमिताभ बच्चन का उस फिल्म में आना उस फिल्म को और भी ज़्यादा खास बना देता है।

श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। तो इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीतों की संख्या भले ही कम है, लेकिन जो गीत बने वो बेहद प्रभावशाली बने। और इनमें सबसे लोकप्रिय गीत जो था वो है गाड़ी बुला रही है, जिसे महान गायक किशोर कुमार ने गाया। ये केवल ट्रेन पर फिल्माया गया एक साधारण सा गीत नहीं है, इसकी भावना जिंदगी को एक सफर के रूप में देखने की है। रेलगाड़ी यहाँ जीवन की यात्रा का प्रतीक बन जाता है। रास्ते में मिलने वाले लोग, पिछड़ते रिश्ते और आगे बढ़ता जीवन, इन भावनाओं को इस गीत में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। और इस गीत को हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम के एकदम अंत में। इस गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ गीतकार और किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक की श्रेणियों में नामांकित भी किया गया था। और अब फटाफट से नजर डाल लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे मेल्स पर कि वो इस फिल्म के बारे में या आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहला संदेश जो हमारे पास आया है वो जलालाबाद वेस्ट से है, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निमित आहूजा का। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया जालंधर से जुड़ रहे हैं। और हीरामणि वर्मा, दितरंगी भाटापारा से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज फिल्म दोस्त की फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारी और बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र छीपा जी जुड़ रहे हैं, लिखते हैं आज आप चर्चा कर रहे हैं अपने दौर की बेहतरीन फिल्म 1974 की फिल्म दोस्त, जिसमें अभिनय किया धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रविंद्र कपूर ने। गीतकार आनंद बख्शी के लिखे हुए गीतों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और उन गीतों को आवाज दी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आप इस फिल्म के बारे में बेहतरीन बातें, रोचक किस्से, कहानी और नगमे सुनवा रहे हैं। हम भी प्रोग्राम से जुड़े हैं और आनंद उठा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रही हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। अगला संदेश है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता। गांव लोहागढ़ ठकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह और अविराज जुड़ रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडस से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। और लिखते हैं शानदार प्रस्तुति आदरणीय दीदी जी, एक ही फिल्म प्रोग्राम में सुपरहिट फिल्म दोस्त का सदाबहार गीत हम सुन रहे हैं। इशाक मोहम्मद भी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से। खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर। और अगला संदेश हमारे पास आया है नलेश्वर नगर से पी एस नोहावकर, निर्मला विशाल और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहर्रेकर। और ये लिखते हैं बहुत ही प्रस्तुतिकरण के साथ बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनने को मिले और साथ में उम्दा जानकारी भी इस कार्यक्रम में हमें मिल रही है। सुदर्शन मुखिया, अनीता मुखी, शांति नगर सोनीपत से जुड़ रहे हैं और लिखते हैं आदरणीय विजेता चतुर्वेदी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं जिससे मैं आज आप बात कर रहे हैं फिल्म दोस्त की। जो बिल्कुल हमारे श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। इंदिरानगर भवरपुर से चंपा देवागन, राधेश्याम देवागन और जगदीश देवागन जुड़ रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश, कपिल, संगीत, संगीता लिपि और दीपाली जुड़ रहे हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और लिखते हैं सावन मंथ के लास्ट मंडे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आपको भी शुभकामनाएं। और ये श्रोता हमारे जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। तो देखिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने संदेश भेजे हैं अपने इस कार्यक्रम में, और सिर्फ कार्यक्रम को सुनते नहीं हैं बल्कि अपने प्रतिक्रियाएं भी इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करवाते हैं अपने मेल्स के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म के बारे में और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
इस फिल्म की जो शूटिंग हुई है वो ज़्यादातर जो कुछ हिस्सा है वो पहाड़ों का दिखाया गया है, तो ऐसा माना जाता है। हालांकि इसको पूरी तरह से नहीं कहा जाता, कुछ पहाड़ी एरिया में जहाँ पर धर्मेंद्र जी के गांव का जो सीन दिखाया गया है वो उन जगह का दिखाया गया है जो एक पहाड़ी एरिया है, और फिर उसके बाद मुंबई के ही स्टूडियोज़ की शूटिंग की गई है। और उस दौर में इस फिल्म को बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को इस फिल्म में जो इमोशंस डाले गए हैं वो लोगों के दिलों को ज़रूर छू के गए। और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की मजबूत दोस्ती को भी दिखाया गया है, और शत्रुघ्न सिन्हा को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला था। और इस तरह से जो 1974 की ये ऐसी फिल्म है जो दोस्ती को केवल एक मनोरंजन के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि दोस्ती के मायने सिर्फ ये नहीं है कि मिले और काम हो गया, दोस्ती के मायने ये है कि जहाँ हम दोस्त को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये एक और गीत।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 75% आलमी तजारत का अहाता करने की खातिर मजीद 8 से 9 मुल्कों के ग्रुपों के साथ आज़ाद तजारती माहदों पर बातचीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने JPSC इम्तहानात में बेजाबतगियों के सिलसिले में CBI तहकीकात से मुतालिक एक उज़रदारी मरकज को नोटिस जारी किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में नवी कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में तजारत, इकतसादी उमूर, साइंसी, तकनीकी और सकाफती इश्तराक पर भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में कोलंबो में पहली इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पोजीशन मजबूत है, देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन बनाए। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत मुख्तलिफ मुल्कों से कम 8-9 मजीद ग्रुपों और दिगर मुल्कों के साथ बातचीत कर रहा है, जिनकी मजमुई GDP 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि मुल्क के आज़ाद तजारती समझौतों के तहत तकरीबन 75% आलमी तजारत का अहाता किया जाएगा, जिससे भारत को आलमी तजारत में एक भरोसेमंद साथी का मकाम हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत के पास वसी घरेलू मार्केट है और इसने गुज़श्ता 4 बरस में 9 आज़ाद तजारती समझौतों पर दस्तखत करके अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने ये बात भारत और जापान के कारोबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग और मसनूई जहानत जैसे शोबों में भारत में सरमाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इकतसादी ताल्लुकात से भारत और जापान के दरमियान मतवाजिन तजारत कायम होनी चाहिए। जनाब गोयल जापान में 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों के एक बड़े वफ्द की क्यादत कर रहे हैं, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद फरोग दिया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और झारखंड हुकूमत को एक उज़रदारी पर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें झारखंड मुश्तरका सिविल सर्विसेज इब्तदाई इम्तहानात में मुबैना गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल के सिलसिले में CBI की जानिब से एक गैर जानबदाराना और मुकर्रर मुद्दत में तहकीकात की बात कही गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकजी सरकार, झारखंड हुकूमत, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और दिगर से जवाब तलब किया है। इस दरख्वास्त में तहकीकात को रियासत से CBI को सौंपे जाने की बात कही गई है, ताकि सरकारी अहलकारों और इम्तहानात से मुतालिक एजेंसियों के मामले में बगैर भेदभाव के तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके।

0: कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड पर होगी। मुल्क भर से मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्स के 8,050 से ज्यादा अफसरान इस कॉन्फ्रेंस में असरी मामलात और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। ये सालाना कलीदी फोरम दाखिली सलामती, सरहद के बंदोबस्त और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में खुफिया एजेंसी, नीम फौजी दस्तों और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाता है। 2016 में DGP IGP कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी और पुलिस के सरबराहान को हिदायत दी थी कि वो हर बरस NSSC का इनेकाद करें ताकि मुख्तलिफ माहरीन के साथ इश्तराक में ज़मीनी सतह पर खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान के वसी तर तजुर्बे को बरवेकार लाते हुए कौमी सलामती के अहम चैलेंजों का हल तलाश किया जा सके। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ब्रिक्स शेरपा और वजारत खारजा के इकतसादी तालुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स की सदारत इंसानियत पहले के उसूलों पर मबनी लोगों पर मरकूज नज़रिए से रहनुमाई हासिल करती है। लखनऊ में 18वीं ब्रिक्स एकेडमिक फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब दलेला ने कहा कि भारत ने अपनी ब्रिक्स की सदारत के दौरान इस्तेहकाम, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने बताया कि मुल्क के तकरीबन 30 शहरों में 400 से ज़्यादा मीटिंग्स का अहतमाम किया गया है। उन्होंने इसे ब्रिक्स के एजेंडे को आगे बढ़ाने की सिमत एक इज्तिमाई कोशिश करार दिया। जनाब दलेला ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मार्केट्स और तरक्की पजीर मुल्कों के दरमियान इश्तराक के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। 18वीं ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का अहतमाम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने लखनऊ में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तहकीक और इतलाती निज़ाम और लखनऊ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किया है। इस फोरम का इनेकाद भारत की ब्रिक्स सदारत के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मंतरूफ के साथ तजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन IR IGC TEC से मुतालिक 27वीं भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। जनाब एस जयशंकर रूस के अपने हमनसब सेर्गी लवरोफ के साथ भी मीटिंग करेंगे और इलाकाई बैन अक्वामी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। खुराक को डब्बा बंद करने के सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि PMFME स्कीम से अब तक 2 लाख से ज़्यादा खुराक को डब्बा बंद करने से मुतालिक बहुत छोटे इदारों को फ़ायदा हुआ है। आज नई दिल्ली में PMFME के अंकलेव से खिताब करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि कुल मुस्तफिदीन में से तकरीबन 80% पहले सिलसिले के इंटरप्रेन्योर हैं और इनमें से 44% खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में इस स्कीम का आगाज़ हुआ था और इसने 10 लाख बराह रास्त रोज़गार फराहम किए।
2: PMFME की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
1: दो रोज़ा PMFME कॉन्क्लेव में इंटरप्रेन्योर माहरीन और मुतल्लिका फरीक शिरकत कर रहे हैं ताकि खुराक को डब्बा बंद करने के शोबे में इख्तरा मालूमात के तबादले और तरक्की को फ़रोग दिया जा सके। सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 400 से ज़्यादा शुरका इसमें शिरकत कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लखनऊ जोनल ऑफिस ने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। तलाशी की यह कार्रवाई काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम के कानून के तहत की गई। टेस्ट क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में दूसरे दिन पहली इनिंग्स में भारत की पोजीशन मजबूत है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने शानदार 117 रन बनाए। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 63 और शुभमन गिल ने 50 रन स्कोर किए। भारत ने कल के दिन खेल के खिताम पर 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था और भारत को 1-0 की सबकत हासिल है। ये मैच जीतकर भारतीय टीम क्लीन स्वीप करना चाहेगी जबकि श्रीलंका सीरीज को बराबर करना चाहेगा। भारत को इस मैच में कामयाबी हासिल करना जरूरी है ताकि आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की फाइनल दौड़ में वो चौथे मकाम पर पहुँच सके। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सरफहरिस्त है जबकि जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर हैं।

0: form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: We have about 80 companies.
3: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
4: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता

0: की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
1: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: PMFME की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स

0: की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई निश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24

0: 21,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड। श्रोताओं, आप सब जानते हैं ये जो वक्त है, ये वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज इस सफर में आपकी हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, वे हमारी यादों में बड़े होते हैं। सचिन पिलगांवकर, जी हाँ, हमारे आज के कलाकार एक ऐसे ही कलाकार हैं। कैमरे से उनका रिश्ता है ना, वो तब शुरू हुआ जब वे महज 4-5 साल के थे। 1962 की मराठी फिल्म हाँ माझा मार्ग एकला से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और लगभग 65 फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। फिर एक दिन वही बच्चा बड़ा हुआ और गीत गाता चल का श्याम, बालिका वधु का अमल, अखियों के झरोखों से का अरुण और नदिया के पार का चंदन, ये बनकर हमारे घरों का हिस्सा बन गया। और इस सफर की शुरुआत करते हैं हम उस गीत से जिसमें सचिन की मासूमियत, रोमांस और उस दौर की सादगी तीनों एक साथ ही दिखाई देते हैं। तो बताइए ये कौन सी फिल्म का गाना है और आपको सचिन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप उनके किस किरदार को आज भी याद करते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम का पहला गीत।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या

फिल्म बालिका वधू और आवाज अमित कुमार की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। और आप ये जो हमारे कलाकार हैं इनको आज सुन रहे हैं, इनके बारे में सुन रहे हैं। तो हमारे कलाकार कौन है? जी हाँ, कलाकार हैं सचिन पिलगांवकर। बालिका वधू के अमल से नदिया के पार के चंदन तक आते आते सचिन की स्क्रीन इमेज बदलती चली गई। गीत गाता चल में श्याम और नदिया के पार में चंदन, दोनों किरदारों में ना एक सहज देसीपन और अपनापन था, है ना। और यही वह दौर था जब सचिन किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि अपने घर के लड़की की तरह लगते थे। नदिया के पार का संगीत और उसकी मिट्टी की खुशबू आज भी वैसे ही ताजा है, है ना। और आपको इस फिल्म के सभी गाने आज भी याद होंगे, इसका हमें यकीन है। तो इस फिल्म से आइए सुनते हैं ये गाना जिसमें गुंजा के साथ चंदन बड़ा भला सा लगा था।

जी हाँ, ये बटुहिया तो जा रहा है प्रेम की दिशा में लेकर अपनी इस गाड़ी को। और हमारे साथ देखिए आप जुड़े हैं, कौन है? देवशंकर तामुरिया जी, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और इनका पोता मास्टर अल कबीर। और ये सब हमारे साथ जुड़े हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डूंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से। श्रोता आप सुन रहे हैं फिल्म नदिया के पार का ये गाना, जिसमें सचिन के साथ थी गुंजा। गुंजा कौन थी आप मुझे बताइएगा। और हम लोग सुन रहे हैं इस गीत को जिसे गाया है यहाँ पर हेमलता के साथ जसवीर सिंह ने। तो आप हमें बताइएगा कि ये कौन, आपको इस फिल्म का कौन सा दृश्य सबसे ज़्यादा पसंद है और आप इसके बारे में अपने मन में कितनी कितनी बातें लेकर के चलते हैं। देखिए हमारे साथ ना जुड़े हैं जी, कौन है? धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। और ये कह रहे हैं कि आज आप मशहूर फिल्म अभिनेता सचिन के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, रोचक किस्से और नगमे सुनवा रहे हैं। तो इन्हें ये गाना बहुत पसंद आया, गीत गाता चल के, गीत भी हमें बहुत पसंद है, ये हम ये लिख रहे हैं तो हमें पता है, तो वो भी गाना हमारी इस लिस्ट में शुमार है। तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बने रहिए। और आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप हमारे साथ ना 3 बजे से भी जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे बीते दौर की यानी गोल्डन एरा की बेहतरीन कव्वालियाँ। मौजूद रहूँगी मैं आपके साथ। अभी आप सुन रहे हैं नदिया के पार का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलाकार सचिन की। और अभी हमने सुना फिल्म नदिया के पार का ये गीत। नदिया के पार ना एक ऐसी फिल्म थी जिसने आज भी लोगों के मन में एक अलग ही जगह बनाई हुई है। नदिया के पार के बाद एक और फिल्म थी सचिन की, जिसका नाम है अखियों के झरोखों से। इसमें सचिन बने थे अरुण और रंजिता बनी थी लेली। ये प्रेम कहानी सिर्फ मिलन की कहानी नहीं थी, इसमें प्रेम, बीमारी, बिछोह और स्मृति सब कुछ था। शायद इसीलिए अरुण का किरदार आज भी हमें याद रह जाता है। सचिन की उस मासूम रोमांटिक छवि को इस फिल्म ने जैसे मुकम्मल कर दिया था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अखियों की झरोखों फिल्म की बात करें और इस फिल्म का गीत आपको ना सुनाएं। लेकिन ना, इसका मैं एक गीत आपको जो सुनाने जा रही हूं वो इस किस्म का गीत है जो बहुत अच्छा लगता है। और सच में इसमें एक इंतजार है, एक बेकरारी है। और इस तरह के गीत को सुनकर लगता है कि सच में हम कहीं पे

शैलेंद्र सिंह और हेमलता की आवाज़ में आप सुन रहे हैं अखियों के झरोखों, इस फिल्म से ये गीत। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। ये हैं जी, ये हैं कौन है, गोविंद गोवर्धन बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और आशीष राजा। और ये हमारे संग ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे संग रेगुलर कनेक्ट है और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से हैं और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, कपिल गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, और ये इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। ये है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, जानकर हमें अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं, देखिए स्वर्ण सिंह है, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संग बने रहिए। आपके लिए गाने और भी हैं, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सचिन की, तो हम अगर सचिन जी के बारे में बात करते हैं तो आपने एक फिल्म आपको अच्छे से याद होगी। जी मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ आप बताइए मुझे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी कलाकार को सिर्फ उसकी छवि में कैद कर लेना ठीक नहीं होता और उसके साथ में एक नाइंसाफी होती है। सचिन के भीतर अभिनेता के साथ एक बेहद अच्छा कॉमिक सेंस भी था। आगे चलकर उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और मराठी सिनेमा को नवरी मिले नवरायला, अशी ही बनवा बनवी, आमच्या सारखे आमहिच और नवरा माझा नवसाचा जैसे यादगार फिल्में दी। अशी ही बनवा बनवी में उन्होंने सुधीर और उसकी महिला छद्म पहचान सुधा वाला बेहद लोकप्रिय हास्य किरदार भी निभाया था। अब क्या है कि अब जरा सा गंभीर अरुण जो आंखियों के झरोखों में था, वहां से अब हम आपको ले चलते हैं सचिन के बेहद शरारती अंदाज की तरफ, जो है सत्ते पे सत्ता का सनी। गाइए सुनते हैं ये गीत।

तुम सत्ते पे सत्ता में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ आरडी बर्मन, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और गुलशन को। और देखिए, हमने ये गाना आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इसमें सचिन का वो मजाहिया अंदाज आपको जरूर याद होगा जो उन्होंने हम सभी के दिल में एक अलग ही छाप छोड़ी थी। सनी बहुत प्यारा सा बेटा, बहुत प्यारा सा भाई। और आपको अगर याद हो तो हम इनकी बात कर रहे हैं सचिन की, तो अगर इनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की कहानी ही यहाँ पर आपको हम नहीं बता रहे हैं, उनकी निजी जिंदगी भी सिनेमा से ही होकर गुजरती है। नवरी मिले नवरायला के दौरान उन्होंने अभिनेत्री सुप्रिया सबनिस को निर्देशित किया था। दोनों ने 1985 में शादी की और आगे चलकर सचिन सुप्रिया की जोड़ी मराठी सिनेमा और टेलीविजन की लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हुई। उनकी बेटी श्रेया पिलगांवकर भी इसी अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ एक पीढ़ी नहीं तीन पीढ़ियों तक अभिनय का रिश्ता दिखाई देता है। और देखिए, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, गायक और टेलीविजन कलाकार सचिन ने उनके माध्यम बदलते रहे मगर उनके काम करने की ऊर्जा नहीं बदली। और आपको पता है, हाल में ना वे शफक नाम से गजलें लिखने के लिए भी चर्चा में रहे हैं। जी हाँ, वो गजलें भी लिख रहे हैं। तो शायद सचिन पिलगांवकर के लिए इससे बेहतरीन विदाई नहीं हो सकती कि हम उस गीत की तरफ लौटें जिसमें उनकी पूरी शुरुआती पहचान जैसे एक ही पंक्ति में समा जाती है, यानी चलते रहना, गाते रहना और अपनी धुन बनाए रखना।

श्रोता आप सुन रहे हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चलकर ये गीत। बस हमारी जो घड़ी है वो इशारा नहीं कर रही है कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो बस आपको बता दूं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, और इन्हें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इन्हें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, और इन्हें इनकी मतलब सचिन जी की नद्या के पार सबसे अच्छी फिल्म लगी है। फिर हमारे साथ हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से है नारायण इंग्लिश, सोपान तैड़े, आशीष मुरहेकर, और हमारे साथ प्रकाश वर्मा जी हैं, और ये हैं शुक्रिया भाई, आप मुझे दीदी बोलकर बुला रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से। फिर हमारे साथ हैं देखिए धर्मेंद्र शिपा जी लिखते हैं कि इन्हें अभिनेता सचिन के बारे में रोचक किस्से और नगमे आप सुनवा रहे हैं, प्रोग्राम का आप आनंद उठा रहे हैं, शुक्रिया, उठाते रहिए प्रोग्राम के आनंद। इसके बाद भी हम आपको लेकर आ रहे हैं कव्वालियाँ मैथिली मेलोडीज में, तो आप अब इस कार्यक्रम से

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये हुए पूरे 18 सेकंड। आइए, आपका स्वागत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज में, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर सिर्फ गीतों, गजलों और नगमों का ही नहीं बल्कि यादगार फिल्मी कव्वालियों का भी दौर रहा है। कव्वाली मूल रूप से ना सूफी परंपरा से जुड़ी एक ऐसी गायन शैली है जिसमें सुर, शब्द, ताली और सामूहिक गायन मिलकर एक अनोखी महफिल सजाते हैं। समय के साथ फिल्मकारों और संगीतकारों ने इस विधा को बड़े पर्दे पर उतारा और फिल्मी कव्वालियों ने श्रोताओं के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली। देखिए, फिल्मी कव्वालियों को लोकप्रिय बनाने में नौशाद, रोशन, रवि, ओपी नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे संगीतकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अगर किसी एक नाम को किसी फिल्मी कव्वाली का बादशाह कहा जाए तो वो है रोशन साहब, है ना। और रोशन साहब की जो फिल्म है वो उनकी कव्वालियों से जानी जाती हैं। और अगर हम कव्वाली की बात कर रहे हैं तो बरसात की रात की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए सुनते हैं हमारे मैटिनी मेलोडीज की पहली कव्वाली।

देखिए पूरी कव्वाली बहुत बड़ी है और इसका जो दूसरा भाग जो है ना वो भी मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये रोशन साहब की बहुत मुकम्मल एक धुन है, एक ऐसी कव्वाली है ये जो आज भी हम सभी अगर बात करें कव्वालियों की तो सबसे पहले हमारे जहन में जो कव्वाली आती है वो शायद यही होती है बरसात की रात की। इस कव्वाली में जो स्वर था वो आप सुन रहे थे मन्ना डे के साथ आशा भोसले, फिर इसमें सुधा मल्होत्रा भी है, मोहम्मद रफ़ी भी है, खैर वो आगे के भाग में है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन अब अगर हम रोशन साहब की बात कर रहे हैं और फिल्म दिल ही तो है कि कव्वाली आपके साथ ना साझा करूं ऐसा कैसे होगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि फिल्मी कव्वालियों की जो सबसे बड़ी खूबी रही है ना वो इसमें सिर्फ इनकी रूहानियत ही नहीं बल्कि शरारत, नजाकत और नुकझुक का रंग भी इन कव्वालियों में हमें देखने को मिला है। जैसे आगे आपको सुनाऊंगी एक और एक मेरे महबूब फिल्म का है, और इस तरह की जो एक कव्वालियों में होता है कि दिलकश पेशकश होती है, किसी महफिल में सजी मोहब्बत की तकरार होती है, और ना इन गीतों में सुरों के साथ अदाओं का भी अपना एक जादू रहता है ना, मानेंगे ना। और यही वजह है कि बरसों बाद भी कव्वालियाँ सुनते ही पुरानी दौर की महफिलें आंखों के सामने ताज़ा हो जाती हैं। तो बस हम बात कर रहे हैं रोशन साहब की, तो ये गाना ये कव्वाली आपको ना सुनाऊँ ऐसे कैसे होगा, सुनिए और लुत्फ लीजिए उस दौर की मशहूर कव्वालियों का।

जी हाँ, ये जो फिल्म आप सुन रहे थे कव्वाली, ये फिल्म दिल ही तो है, इस फिल्म से थी। आशा भोसले के साथ कोरस था, और आपने देखा होगा कव्वाली मतलब तालियां, और क्या खूब रोशन साहब का म्यूजिक इस कव्वाली में। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कव्वाली की जिसके बारे में बस कुछ नहीं कहूँगी, बस आपको सुनवाऊंगी। लेकिन ना, आपको इतना बता दें, कव्वालियाँ सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होती हैं, बल्कि ये ना एक हिंदुस्तानी संगीत की गंगा जमुनी तहजीब को भी बहुत खूबसूरती से संजोती हैं। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मुबारक बेगम और सुमिल कल्याणपुर जैसी आवाज़ों ने इन्हें एक जीवंत महफिल का रूप दिया है। सवाल जवाब का अंदाज होता है कव्वालियों में, तालियों की थाप और शब्दों की मिठास, ये ना एक अलग ही माहौल पैदा करती है, एक अलग ही रूहानियत उस पूरे माहौल में घुल जाती है। तो हम इस कव्वालियों के दौर में आपको लिए चल रहे हैं। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। जी हाँ, इस फिल्म की एक कव्वाली सुना रही हूँ आपको, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, और बस आप बने रहिए और इस कव्वाली का आनंद उठाइए।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये कव्वाली जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। हमारे साथ हमारे बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं। ये हैं डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से लिखते हैं कि नमस्कार। भारतीय फिल्मों में 60 और 70 के दशक में फिल्म में कव्वाली का चलन था और कव्वालियाँ का भी को भी फिट फिल्म को सफल बनाने में अहम भूमिका होती थी। अच्छा, आप लिख रहे हैं कि कव्वालियों की भी फिल्म को सफल बनाने में अहम भूमिका होती थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हमारे साथ जुड़ी हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, और इन्हें कव्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है, बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया तुलसी मस्किन जी। फिर सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मस्किन दादा जी और ये हमें लिख रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, और आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखिए, ये होता है कि आफ्टरनून मेलोडी में शुरुआत क्लासिक कव्वाली जो हमने की थी, ना तो कारवा की तलाश है, ये इन्हें बहुत अच्छी लगी। तो हमारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम बात कर रहे हैं कव्वालियों की। अब देखिए, कव्वालियों में बात हम कर रहे हैं एक ऐसी कव्वाली की। अब जो अगली मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो जो कव्वाली है वो है फिल्म मेरे महबूब की। अब मेरे महबूब की जो कव्वाली है, मेरे महबूब का आपको पता होगा संगीतकार नौशाद थे, और इस फिल्म का जो आपके साथ मैं कव्वाली यहाँ पर बांटने जा रही हूँ उसे गाया है जी हाँ आशा भोसले ने। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक किसी भी फिल्म में शानदार कव्वाली का होना लगभग परंपरा माना जाता था। और ना, ये प्रेम की महफिल हो या दोस्तों की नोकझोंक हो या फिर सुफियाना रंग हो, हर अवसर के लिए संगीतकारों ने ऐसी कव्वालियाँ रची हैं जो समय के साथ और भी कीमती होती चली गईं। शायद यही वजह है कि बीते दौर की फिल्मी कव्वालियाँ आज भी महज गीत नहीं बल्कि यादों की एक महफिल बनकर हमारे साथ चलती हैं। अब ये जो मेरे महबूब का जो कव्वाली आपके सामने रखने जा रही हूँ, आपको खूबसूरत सी साधना याद होगी, साथ में अपनी सहेलियों के वो ये कव्वाली गा रही है, और इसमें बस उनके महबूब में क्या क्या खूबियां हैं वो हम भी यहाँ पर एक बारी और सुन लेते हैं। तो सुनते हैं मेरे महबूब की ये कव्वाली।

आप सुन रहे थे मेरे महबूब फिल्म से ये कव्वाली, और अब चलते चलते आपको बरसात की रात की वो कव्वाली सुनाना जरूर चाहूंगी जिसके बारे में हम आपसे शुरुआत में बात कर रहे थे। इसमें स्वर है मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश और साथ हैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा। तो ये कव्वाली अपने आप में एक कल्ट कव्वाली है, और कव्वालियों की अगर हम बात करें और इस कव्वाली को ना सुनाई जाए तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और देखिए, इसको लिखा था साहिर साहब ने, तो सुनते हैं ये कव्वाली।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडी, और इस कार्यक्रम को आपने सुना मेरे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। और आइए अब हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, हम आज लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रूबरू, जहां हम अदब, फिक्र और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। आज हम आपके रूबरू करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने उर्दू अदब, तहकीक, अफसाना निगारी, शायरी और फरहंग नवीसी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा। डॉक्टर साहिबा ने अपनी तख्लीकात के जरिए उर्दू शायरी और नसर को नई जहतें अता की हैं। उनकी तहरीरों में न सिर्फ फिक्री गहराई और जमालियाती नज़ाकत है, बल्कि असरी मसाइल और इंसानी जज्बात की भरपूर अक्कासी भी मिलती है। ये हमारी खुशबख्ती है कि आपने हमारी दावत कबूल की। हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया, आदाब।
1: और आइए अब उनकी ज़िंदगी के सफ़र को हम जानते हैं, उनसे सवाल करें। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा का ताल्लुक आगरे के एक मुक्तदर सैयद सूफ़ी और अदबी खानवादे से है। उनके जद अमजद असगर अकबर आबादी सूफ़ी शायर थे, जबकि उनके ताया अल्लामा मैकश अकबर आबादी तसव्वुफ़ और इकबाल शनासी के हवाले से मारूफ हैं। वालिद सैयद अहमद अली शाह जाफरी आला अफसर होने के साथ साथ अरबी व फारसी के आलिम और शायर थे, और वालदा नजमा जाफरी साहिब दीवान शायरा थीं। यकीनन इस अदबी माहौल ने बचपन ही से नईमा पाशा को अदब की तरफ मायल किया। तो डॉक्टर साहिबा, आप अपने ख़ानदान के मुतालिक कुछ हमारे सामईन को बताना चाहेंगी?
2: जी, मैं अपने ख़ानदान के बारे में, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम उर्दू वाले हैं।
1: जी,
2: शुरू से ही हमारे ख़ानदान में उर्दू का, ये समझिए तकरीबन 6 पुश्तों से माहौल और रिवायत चली आ रही है। मीर अनीस ने कहा था कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में
1: जी।
2: और मैं अपने लिए इजाफा करूंगी कि मैं 6ठी पुश्त में हूँ अल्लामा असगर अकबर आबादी की, जो कि मीर और नज़ीर के हम असर शायर थे
1: जी।
2: सूफी बुजुर्ग थे और उनकी शायरी जो है वो पूरी सरतापा तसव्वुफ़ के रंग में है
1: जी।
2: उसके बाद उनकी तमाम जो भी मेरे परदादा वगैरह जो हुए सब शायर हुए, उन्होंने फारसी में भी कहा, उर्दू में भी कहा।
1: बिल्कुल।
2: ये ताया साहब जो मैकश अकबर आबादी, वो तो इंडो पाक के मशहूर शायर रहे हैं। मेरे वालिद हालांकि सिविल सर्विस में थे, IAS ऑफिसर थे और राजस्थान कार्डर थे, इसलिए अकबर आबाद ने मेरा दादा रहना नहीं हुआ। मेरी पैदाइश और परवरिश और इब्तदाई तालीम सब राजस्थान के गुलाबी शहर राजधानी जयपुर में हुई।
1: बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि आपकी पैदाइश जयपुर में हुई, इब्तदाई तालीम जो है कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू और अंग्रेज़ी में मास्टर किया
2: जी।
1: बाद हज़ार जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपने दिल्ली में 30 साल तक एक कोचिंग सेंटर चलाया है
2: जी।
1: जहां तलबा खुसूसन तालिबात को ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए तैयार किया। ये खिदमत आपकी समाजी वाबस्तगी और इल्मी जज्बे की अक्कास है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बाज़ाब्ता किसी यूनिवर्सिटी या किसी दीगर जो शोबजात होते हैं उसमें अपनी खिदमत न देकर कोचिंग का इंतखाब क्यों और कैसे किया?
2: देखिए, उसमें उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है, शादी के बाद खवातीन के लिए घर की जिम्मेदारी सबसे पहली होती है, अव्वल अपने खानदान को देखना, और माँ बनने के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी औलाद की तालीम और तरबियत। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज देना जो है वो बच्चों की तालीम के लिए काफी नहीं है
1: जी।
2: ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत भी जो है वो सिर्फ माँ की गोदी होती है, जैसा कि कहते हैं कि पहली दरसगाह माँ की गोद होती
1: है।
2: मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं बाज़ाब्ता नौकरी करती, जबकि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जामिया मिल्लिया में लेक्चरशिप ऑफर की गई थी। उस वक्त जो हेड थे उनमान चिश्ती साहब, जब मेरी PhD पूरी हुई, लेकिन मैंने इसीलिए कि बच्चे छोटे थे, और आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि मुलाजमत फिर मुलाजमत होती है, उसमें अपना बस नहीं चलता। मैं अपने घर और बच्चों को वो वक्त नहीं दे पाती
1: जी,
2: कि जो उनका हक था।
1: बिल्कुल।
2: और इसीलिए मैंने, पहली बात तो ये कि मुलाजमत नहीं चाही, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रही।
1: नहीं, बिल्कुल, आप तो कामयाब रही। आपकी शादी कब हुई थी? यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद या दौरान तालीम ही आपकी शादी हुई जिसकी वजह से ये सोच बनी जी?
2: मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से एमए किया
1: जी,
2: और ये वो जमाना था जो शोबे उर्दू का अलीगढ़ में सुनहरा दौर था, क्योंकि आले मसरूर साहब, खुर्शीदुलस्लाम साहब, खलील रहमान आजमी साहब, शहरयार साहब, काजी अब्दुल सत्तार साहब, मतलब कहाँ तक गिनाऊं, मोइन हसन जज्वी साहब, ये सब हमारे उस्ताद थे। उसके बाद फौरन ही मैंने पीएचडी के लिए मतलब रजिस्टर अपने आप को करवा लिया था। मैं खुर्शीदुलस्लाम साहब के अंडर में नज़ीर अगर आबादी की फरहंग पे काम मैंने शुरू किया, लेकिन इत्तेफाक, खुशकिस्मती जो भी कहें, 6-7 महीने में ही शादी हो गई। और उसके बाद शादी के बाद मैं अलीगढ़ नहीं रही। अगर मैं अलीगढ़ ही रहती तो शायद मैं वहीं पे अपना काम पूरा करती
1: जी।
2: मेरे शौहर उस वक्त ईपीआई एक इंजीनियरिंग कंपनी है
1: जी,
2: जिसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, और उनका उस वक्त तकर्रुर जो है वो गुजरात के एक छोटे से शहर तलाला में था, तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ा। मतलब हवाई जहाज का रिवाज नहीं था, ऐसा नहीं है
1: जी,
2: लेकिन इस्तेमाल में नहीं था। तो 2 दिन 2 रातें लगती थी वहां तक पहुंचने में। तो जाहिर है कि फिर मैं अलीगढ़ से तो जारी नहीं रख सकती थी। 1 साल तक मैं वहीं रही, जो बिल्कुल आदम जात
1: पता
2: नहीं था, सिवाय शेरों वगैरह के। और उसके बाद फिर खैर फिर और जगह मैं आसाम वगैरह में कुछ अरसे में रही, और यहाँ पे मैंने शादी के बाद मैंने अंग्रेजी में एमए किया। और ये बात मैं एक तस्दीक कर दूं कि अंग्रेजी का एमए मैंने क्योंकि फासलाती निज़ाम से किया था, इसलिए अलीगढ़ से नहीं बल्कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया। और पीएचडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की, क्योंकि वो दिल्ली ज़ाहिर है के में था। तो ये 2 तालीमें। उसके बाद मैंने नेट भी क्लियर किया, और वो भी ज़ाहिर शादी के बाद ही किया, और जो कुछ और डिप्लोमा वगैरह किए एक सहाफत वगैरह में। तो बाकी की तालीम जो है एमए के बाद की
1: जी,
2: वो सब शादी के बाद हुई।
1: सब शादी के बाद हुई। तो ये जहाँ शादी करके आप गईं, वहाँ पे जाहिर सी बात आप बता रही हैं कि शादी के बाद आपने पीएचडी भी की, नेट भी किया और दीगर सर्टिफिकेट के कोर्सेज भी किए, तो वहाँ का माहौल था और आप जहाँ गई थी वहाँ का माहौल क्या था? दोनों में कोई फ़र्क था?
2: बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं जिस ख़ानदान से आ रही थी वहाँ कायदे से सब कॉन्वेंट के पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उर्दू के आशिक थे, और उर्दू उनकी उड़ना बिछोना थी। जहाँ ब्याह की आई वहाँ उर्दू से ना बनत थे सब।
1: तो
2: सबसे बड़ा फर्क आप समझ लीजिए यही है।
1: तो फिर वहाँ जाकर आपने उर्दू सिखाई?
2: नहीं, ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि सीखे सिखाए लोग मुश्किल से सीखते हैं
1: जी। नहीं, जैसा आपने बताया ना कि माँ की गोद में ही सारी परवरिश होती है, तो जब आप अज़दवाजी जिंदगी में आ गई तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी हुए, तो उनके साथ कैसा रवैया रहा?
2: नहीं, बच्चों को मैंने, हालांकि बच्चे भी मेरे कॉन्वेंट में ही पढ़े हैं यहीं पे दिल्ली में ही, लेकिन मैंने शुरू से ही उनको उर्दू से नाबलद नहीं रखा, और उसके बाद इतना कम से कम पढ़ा दिया कि वो उर्दू पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग कुछ एक आध जो हैं वो लिख भी लेते हैं
1: जी। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, जैसे मुझे पता लगा कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, ये शर्फ मुझे मिलेगा, तो उसमें मैंने देखा कि आपने तालीम के दौरान ही, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रही थी उस ज़माने में, बहुत से एजाजात हासिल किए, तो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें।
2: असल में मैंने अफसाना निगारी बड़े बचपन से शुरू कर दी थी, और अगर आप कहें इसको मुबालगा ना समझे तो 8 साल की उम्र में मेरी पहली कहानी राजस्थान पत्रिका में हिंदी में छपी थी, क्योंकि उस वक्त तक उर्दू नहीं आती थी कि लिखना शुरू कर दिया था 7 साल में, लेकिन शायद जो हुई वो 8 साल। उसके बाद खैर फिर उर्दू सीखी, और ख़ासतौर पे सीखी क्योंकि आपको मालूम है कि स्कूलों में और ख़ासतौर पे कॉन्वेंट में उर्दू का नहीं होता, लेकिन घर का माहौल भी था और मेरी ख्वाहिश भी थी, और कुछ मुसन्निफ़ीन को पढ़ने का शौक़ भी था, जैसे इब्ने सफ़ी। ये कहते हुए मैं शर्माऊंगी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने सफ़ी ने कि नावलों ने, जासूस नावलों ने मुझे उर्दू के लिए जितना आमादा किया शायद किसी और ने ना किया हो।
1: इब्ने सफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो उसका इमरान तो अपनी तरफ खींचता ही खींचता है,
2: इमरान फरीदी भी, हमीद भी, सभी उसकी।
1: बिल्कुल, तो ये सारे किरदार जो हैं अपने आप में अभी भी लगता है कि हमारे आसपास ही वो किरदार हैं और हमारे आसपास ही जिंदगी जी रहे हैं।
2: खास तौर पर उनमें खास बात यह कि उन्होंने जो अपने दौर से, मेरा ख्याल है 70 साल आगे के माहौल को

0: क्योंकि जो रोबोट वगैरह जो आज बन रहे हैं उनका जिक्र आपको उनके नॉवेलों में मिलेगा।
1: तो सबसे पहले आपने शेर कब कहा था?
0: शेर कहा था 4 साल की उम्र में।
1: 4 साल की उम्र में कौन सा शेर कहा था, क्या याद है अभी आपको?
0: जी वो मुझे याद है, वो सुनाने का है नहीं क्योंकि जाहिर है आप समझ सकते हैं कि 4 साल की उम्र में
1: 4 साल की उम्र का शेर है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे।
0: हुआ ये कि मेरी जो मुझसे बड़ी वाली बहन थी वो उससे 14 साल बड़ी थी
1: जी।
0: तो जब थोड़ा होश संभाला तो जैसे मुसलमान घरानों में होता है कि कुरान से शुरुआत होती है
1: जी,
0: तो मेरी वालदा ने उन बड़ी बहन को ये जिम्मेदारी दी कि इसको सिपारा वगैरह पढ़ाना तुम करो
1: जी।
0: लेकिन उनका ये था कि उनकी अपनी मशगूलियात थी, अपनी दिलचस्पियां थी, उनकी अपनी तालीम थी, या फिर वो भी नावलों वगैरह की शौकीन थी। तो जब भी मैं सिपारा लेके जाती तो वो कहती नहीं अपनी अभी नहीं बाद में पढ़ाएंगे। तो कई दिन बाद मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि लाओ सिपारा लाओ मुझे सुनाओ तुमने क्या सीखा
1: जी।
0: जब मैं लेके गई तो पता चला कि कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं था।
0: तो उन्होंने थोड़ा सा खशमगी निगाहों से देखे कहा ये क्या। मैंने फिलबदी कहा कि मैं आपा कहती थी अपनी बड़ी बहन को, आपा मुझे पढ़ाती नहीं, पढ़ना मुझे आता नहीं, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, पढ़ना मुझे आएगा नहीं।
1: मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, पढ़ना मुझे आएगा नहीं, क्या बात है।
0: तो एक तरह से तो मेरी वालदा ने कहा कि जरासीम अभी से मौजूद है।
1: जरासीम अभी से मौजूद है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अलीगढ़ में जब आप थी तो पढ़ने के दौरान जो है आपको बहुत से एजाजात मिले हैं, जिसमें से मैं अभी एक तस्वीर देख रहा था जो हमारी वज़ीर आज़म आजानी इंदिरा गांधी के साथ थी, तो उसके बारे में बताएंगी कुछ?
0: ये 1975 का ज़माना था कि जब पहली दफ़ा यौम ख़वातीन मनाया जाना तय हुआ
1: जी।
0: और उस साल अखबारों में इश्तहार निकला कि मज़मून निगारी का मुकाबला होगा उर्दू अंग्रेज़ी हिंदी तीनों में और पूरे हिंदुस्तान में, और उसका मौजू होगा कि हिंदुस्तान की आइंदा 10 साल तरक्की में ख्वातीन का क्या रोल होगा
1: जी।
0: तो उस वक्त मैं कुछ 17 साल की थी, ये 19 साल तक की उम्र के त्यार के लिए था। तो मैंने उसमें मजमून लिखा, फिर उस जमाने में खलील रहमान आजमी साहब हेड थे, थोड़े दिन के लिए हो गए थे, तो उनसे जाके वो अटेस्ट करवाना था, फिर मैंने भेज दिया था और भेजने के बाद भूल गई। लेकिन फिर 76 की शायद मार्च में गालिबन इनके पास मेरे पास खत आया कि मुझे पहला इनाम मिल गया।
1: अरे बहुत मुबारक हो। दोबारा से बहुत बहुत मुबारक हो।
0: तो फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया
1: जी।
0: और ये जो तस्वीर आपने देखी है ये इंदिरा गांधी की क़यामगाह की थी जहाँ उन्होंने हम लोगों को बुलाया था।
1: पहला अफसाना 14 साल की उम्र में रिसाला खातून मशरिक में शाया हुआ, अगर मैं सही हूँ तो
0: जी, बिल्कुल।
1: उसके बाद आपने आपके अफसाने नॉवल और अफसांचे हिंदू पाक के रसाले जरायद में मुसलसल शाये होते रहे हैं। आपने अफसाना नॉवल अदब अतफाल तनकीद व तहकीक मजहबियात और फरहंग नवेसी में बेशबाह काम किया है आपने, और मुझे जहाँ तक याद है कि आप का पी एच डी का मकाला भी फरहंग पे ही है
0: जी,
1: उसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
0: जी, नज़ीर अकबर आबादी की फरहंग पे है
1: जी।
0: और ये मौजू मुझे खुर्शीद इस्लाम साहब ने दिया था, और वो इसलिए दिया था क्योंकि मेरा ताल्लुक आगरे से है
1: जी,
0: और दूसरे मेरे ताया साहब जो थे मैकश अकबर आबादी, उनको लुगाते नज़ीर का महरम कहा जाता है।
1: क्या बात है।
0: तो उनका ये ख्याल था कि वैसे तो मैकश साहब नहीं लिख रहे हैं लेकिन इनके जरिए शायद निकलवाया जा सकता है।
1: जा सकता है बिल्कुल।
0: तो इसलिए मिला मुझे, और क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत जल्दी शादी हो गई, बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 12 साल बाद जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, उसके बाद जब मैंने दोबारा जामिया से जब रजिस्ट्रेशन करवाया तो उस वक्त तक इस मौजू पे किसी ने काम नहीं किया था
1: जी।
0: तो मुझे खुशकिस्मती से वो मौजू दोबारा मिल गया।
1: क्या बात। आपके जो अफसाने हैं उनके 5 मजमूए शाये हो चुके हैं, 6ठा मजमूआ आपके बस शायद ज़ेरे इशात है।
0: नहीं, अब तो शाया हो गया।
1: हो गई है वो। तो बच्चों की कहानियों का एक मजमूआ भी जल्द मंजर आम पर आने वाला था आपका, शायद आ गया है। एक जखीम तहजीबी फरहंग हाल ही में आपकी शाया हुई है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा
0: अगर आपके पास वक्त हो। मैं थोड़ा सा तफसील में जाऊँ।
1: बिल्कुल।
0: मैंने जैसे कि आपने खुद भी कहा कि मैंने कोचिंग सेंटर अपने घर पे ही चलाया
1: जी।
0: और उसमें स्कूली बच्चों को भी मैं पढ़ाती थी, लेकिन असली मेरा जो कहना चाहिए कि एक मकसद या कि जो एक गोल था वो ये था कि मैंने महसूस किया कि जाकिर नगर में मैं रहती थी कि लड़कियों की तालीम की तरफ वहाँ पे लोगों को तवज्जो नहीं थी आमतौर पर, क्योंकि लोगों को जैसे कि ख्याल है उनको ये होता है कि भाई इसको पढ़ा के क्या करना है, इसे तो शादी होके जाना है और यहाँ भी रोटी पका रही है। बल्कि हमारी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि जी ये कुछ पढ़ लेगी तो क्या रोटी गोल हो जाएगी। तो ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आप समझ सकते हैं कि उनका माइंड सेट या उनका मतलब जहनी
1: कैसा था।
0: तो इसके लिए मैंने फिर घर घर जाके उनको अम्माओं को वालदाओं को उनको राजी किया कि वो मेरे पास भेजें और मैं प्राइवेट इम्तहान दिलवा दूंगी। तो मैं जामिया से फॉर्म भरवा देती हूँ, उनका टेंथ से होता है जामिया में
1: जी।
0: उससे पहले वो खैर स्कूल नहीं हुई, मैं उनकी सातवें आठवें तक की तो पढ़ी लेती थी,
1: पढ़ी लेती थी।
0: उसके बाद मैं टेंथ उनको करवाती थी, फिर एक साल छोड़ के ट्वेल्थ, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 35 साल में मेरा ख्याल है मैंने हजारों लड़कियों को इस काबिल किया कि आज मन में से बहुत सी ऐसी हैं कि जो साहिब रोजगार हैं और अपना हेल्प कर रही हैं।
1: क्या बात।
0: लेकिन इससे एक महसूस ये हुआ कि इसके बावजूद
1: जी
0: उर्दू से किसी को दिलचस्पी नहीं। जो लड़कियां बहुत सी पहले अपना स्कूलिंग बिहार या उत्तर प्रदेश से करके आई होती हैं उनका तो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का होता है
1: जी,
0: और अंग्रेजी वैसे ही उनकी बहुत कमजोर होती है। तो खैर, लेकिन अंग्रेजी से मेरा कोई ये मेरा कोई जज्बा नहीं था, सच्ची बात बताती हूँ आपको
1: जी।
0: लेकिन उर्दू से मेरे जज्बाती जो लगाव था, मैं चाहती थी कि मैं अपनी जबान, तो मैंने उनको फिर पढ़ाना शुरू किया
1: जी।
0: जामिया में फर्स्ट ईयर में, बीए के फर्स्ट ईयर में एक एलिमेंट्री उर्दू का पर्चा होता है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें उस पर्चे में ये होता है कि वो अल्फाज जोड़ के लिखना, अलग करके लिखना, पांच फलों के नाम, पांच फूलों के नाम, लड़कियां उसमें फेल हो जाती थी। तो इसलिए मैंने उर्दू पे उस सबक से हटके, निसाब से हटके एक क्लब कायम किया जिसका नाम था परवास, और हम शनिचर इतवार को, क्योंकि मैं पढ़ाती नहीं थी तो उसमें उनको बुलाती थी और उनको उर्दू की तरफ रागिब करती थी, उन्हें सुनाती थी कुछ कहानियां वगैरह, और उनसे कहती थी कि तुम भी लिखो।
1: बिल्कुल।
0: और धीरे धीरे ये हुआ कि वाकई वो लिखने लगी, वो शायरी भी करने लगी। लेकिन इससे मुझे बहुत सी, एक तो यह कि बहुत सी तहजीबों का पता चला कि जिससे, क्योंकि हमने अपनी एक खास तहजीब जी थी
1: जी जी।
0: मैं बिल्कुल सदाकत से कहूं कि जो कुछ असर डाला वो उसी ने डाला,
1: उसी ने डाला।
0: वो माहौल ये था कि आज के ज़माने में उसकी उसकी मतलब तसव्वुर भी मुहाल होगा
1: जी,
0: कि हमारे जो खेल हुआ करते थे वो बड़े अदबी होते थे, कि हम सब लोग जब छुट्टियों में जब सब खानदान जमा होता था तो तमसीली मुशायरे हो रहे हैं
1: जी,
0: बैतबाजी की महफिलें सज रही हैं, तालीमी ताश खेले जा रहे हैं। तो हमारी दिलचस्पियां ये थी, मोबाइल नहीं था,
1: जाहिर सी बात है,
0: टीवी तो था, टीवी नहीं था, मोबाइल का तो दूरी चलिए बात ही बात की है।
1: तालीमी ताश जो है एक अपने आप में
0: बहुत बड़ी, उस मतलब आपका जो जिसे कि हम लफ्जियात कहते हैं या वोकैबुलरी जो कहते हैं, वो उससे इतना ज्यादा मतलब डेवलप होती है कि हमें नए नए लफ्ज बताने आते हैं, दिमाग में जोर लगाना पड़ता था कि इससे क्या बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इन लफ्जों की उलट फेर से क्या नया लफ्ज बन सकता है, तो ये दिलचस्पियां थी, तो वो उसी का असर है
1: जी। आपने नसर और नज्म दोनों में अपनी शिनाख्त कायम की है, तो हमारे सामईन को आप ये बताएं कि अदब किस तरह समाज की तश्कील करता है, शायरी किस तरह दिलों को जोड़ती है, और एक अदीबा के तौर पर उनका तख्लीकी सफर किन तजुर्बात और मुशाहदात से इबारत है।
0: देखिए, अदब तो बहुत, सबसे ज्यादा जो अदब की खसूसियत है वो जोड़ने की है, क्योंकि जो भी कुछ लोग पढ़ते हैं तो वो अपने बारे में नहीं पढ़ते हैं और लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह वो समाज से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उनको ये पता चलता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है, मतलब कुएं का मेंढक जो एक घर में है शख्स, वो उस वक्त तक उससे वाकिफ नहीं होगा, या तो वो खुद निकल के मतलब इस ऐसे प्रोफेशन में हो कि जहाँ वो घूम घूम के, जैसे सहाफी हैं इसमें चखता है, कोई लीजिए आप उनके अफसाने पढ़ेंगे तो आपको एक खास माहौल का पता चलेगा जो आपको आज नहीं मिलेगा। जैसे चौथी का जोड़ा, जो उनका सबसे ज्यादा मशहूर नॉवेल है, उसकी पहली लाइन पढ़िए कि सैदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी।
1: जाजम बिछी थी।
0: अब इसमें सैदरी, चौका, जाजम, ये तीन ऐसे लफ्ज हैं जिससे आज के लोग वाकिफ नहीं। तो ये अदब ही है कि जो हमें ये बताता है कि हमारी तहजीब क्या थी, किस तरह से रहन सहन था, फिर मसाइल जो उसमें, मैं एक ही अफसाने को फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप चौथी के जोड़े की बात ही लें, तो वो जो था कि गरीब बेवा औरत जिसके दो जवान लड़कियां हैं और रिश्ता नहीं मिलता, और रिश्ता ना मिलने की दो वजूहत हैं, एक वजह तो यह है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहेज दे सके और अच्छा बर अपने बेटियों को दे सके, दूसरी वजह यह भी है कि उसी जमाने में हाल ही में कुछ ऐसा भी माहौल हुआ था पार्टीशन वगैरह में कि ज्यादातर जो है वो लड़के नापैद हो गए थे, चले गए थे उधर उधर, तो ये सारे हालात आपको इस एक अफसाने में मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सामईन को अगर दो चार अशार अगर आप सुना दें हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे सामने इनको भी अच्छा लगेगा। जी इरशाद,
0: छोटी सी है
1: जी
0: नज़्म।

0: फितरत की गोद में, जब फिक्र के बादल छाए हों,
1: जब फिक्र के बादल छाए हों,
0: जब फिक्र के बादल छाए हों और अंदेशों का मेला हो, जब खौफ के साए गहरे हों और नफरत जहर उगलती हो, रूमान की ठंडी छाँव में कुछ प्यार के पल जीकर देखो।
1: क्या बात है, रूमान के
0: फितरत की मुशफिक गोदी में कुछ पल अमृत पीकर देखो।
1: क्या बात है,
0: फितरत हमको सिखलाती है हर रात के बाद सवेरा है, एक रोशन सूरज निकलेगा माना कि आज अंधेरा है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, माना कि आज अंधेरा है। गुफ्तगू का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके नज़दीक अफसाना निगारी और फरहंग नवेसी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा?
0: देखिए, अफसाना निगारी जो है वो वदियत होती, जितने भी तख्लीकी अदब हैं
1: जी,
0: चाहे वो शायरी हो चाहे वो अफसाना निगारी हो, मतलब जो अफसानवी अदब जिसे आप कहें
1: जी जी,
0: और शायरी, ये तख्लीकी अमल है।
1: बिल्कुल,
0: और तख्लीकी अमल अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आप वो कोशिश से नहीं कर सकते। फारसी में एक वो है कि ई सआदत पर जोर बाजू नीस्त, मतलब अपने जोर बाजू से ये सआदत नहीं मिलती, ये अल्लाह की तरफ से वदियत होती है। मैं अपनी बात लेती हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं होता कि कोई अफसाना लिखूं। मैं एक दिन सुबह उठती हूँ और उसके बाद अपनी जरूरियात से फारिग होने के बाद अचानक मुझे एक आइडिया आने लगता है, और जो आइडिया आता है वो मैं अल्फाज
1: आपके पास आ जाते,
0: साथ आता है और मैं उसे लिख लेता हूँ।
1: क्या बात है,
0: सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि लुगत निगारी या फरंग निगारी जो है वो कोशिश से,
1: वो कोशिश
0: तलाश से
1: जी,
0: इरादे से की,
1: इरादे से की जाती है, जबकि अफसाना
0: निगारी
1: इरादे से नहीं की जाती है। बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि डॉक्टर नईमा पाशा की 25 किताबें शाया हो चुकी हैं, उनमें अफसानवी मजमूए, फरहंगे तनकीदी और तहकीकी कुतुब, खुद नविश्त नावल, मजहबियात और अदब अतफाल वगैरह शामिल हैं। आपकी खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ अदबी इदारों और जामियात ने आपको एजाजात से नवाजा भी है। आपकी शिनाख्त एक मुहब उर्दू मुहक्किक और फिक्शन निगार के तौर पर भी मुस्तहकम है। मौजूदा दौर में एक नई सिन्फ एक और आई है जिसे हम अफसानचा कहते हैं, और अफसानचा भी आपने तहरीर किया है, वो भी मेरी नज़रों से गुजरा है। तो अगर कोई अफसानचा आपके पास मौजूद है, अगर वो हमें और हमारे सामईन को आपकी आवाज़ में सुनने को मिल जाए तो आपकी इनायत होगी। जी इरशाद।
0: तो ये अफसानचा है, इसका नाम है साहिरा।
1: साहिरा,
0: ब्रिटिश एयरवेज का तैयारा अपनी मुतायन बुलंदी पर पहुँच कर सुबुक रवि से परवाज भरने लगा, तो सह नशिस्ती सीट पर बैठे हुए तीनों गैर मुल्कियों ने अपने अखबार तह किए और उस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। गुफ्तगू का चरखा चल पड़ा। उनका ताल्लुक यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से था, लेकिन मंजिल एक ही थी, कसीर सकाफती और कसीर लिसानी मुल्क हिंदुस्तान। तीनों अपने अपने मुल्क के नामवर कलमकार थे और सियाहत उनके रक्षे कलम को महमीज करने का बाइस थी। दौरान परवाज उन्होंने हिंदुस्तान की सियाहत में हम सफर रहने का फैसला किया। एक माह की सियाहत में उन्होंने बहुत से इलाके, मुतादित तहजीबें और मुआशरतें देखी, बहुत सी जबानों को सुना और पढ़ा, लेकिन तिश्नगी दूर नहीं हुई। अनगिनत मैदानों, पहाड़ों, साहिलों और जंगलों से गुजरते हुए सफर के आखिरी पड़ाव में थके मुसाफिर एक सब्जाजार में पहुंचे, जहां एक हसीन और जमील दोशीजा ने रो पहली कलम जैसी नाजुक उंगलियों को चांद सी पेशानी तक ले जाकर उनका इस्तकबाल किया। क्या हुस्न था, क्या तमकिनत थी, क्या अदा थी। रश्के गजाल आंखों की सफेदी, स्याही और सुर्खी में दो मय दो आदशा का खुमार था। हर अदा में तहजीब थी, सलीका था। जब वो लब कुशा हुई तो उन फिरंगियों को लगा जैसे जल तरंग बज उठा हो, चांदी के घुंघरू गुनगुनाए हों, जैसे खालिस शहद कतरा कतरा कानों में घुल गया हो, जैसे अल्फाज शहद फूंक रहे हों। एक ने पूछा, ऐ शीनी दहन हसीना, तुम्हारा नाम क्या है। नाजनी ने हिजाब आलूद नजरें उठाई और गुलाब की पंखड़ियों को जुम्बिश हुई। नाचीज को उर्दू कहते हैं।
1: क्या बात है।
0: दूसरे ने हैरत से पूछा, ऐ सीमी बदन, तुम इस गुलिस्तां में तन्हा क्यों हो। उसने जवाब दिया कि मेरी दिलकशी और हर दिल अजीज से खौफजदा लोग मुझसे किनारा कर गए और मेरे अपनों ने मुझे दरबदर कर दिया।
1: क्या बात है, क्या बात है। किसी शायर ने भी इस पे कहा था कि मेरे चाहने वाले हैं सब, मेरा कोई नहीं है। मेरे चाहने वाले हैं सब, मेरा कोई नहीं है, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ उर्दू की तरह
0: जी।
1: तो उर्दू की ये खूबसूरती है, उर्दू की ये चाशनी है, उर्दू की मिठास है कि लोगों तक पहुँचती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे एजाजात मिले, उन एजाजात में से कोई ऐसा एजाज

0: बिल्कुल, तो नए लिखने वालों को आप किस तरह देखती हैं?
1: नए लिखने वालों के लिए मेरा सबसे बड़ा मशवरा या नसीहत जो भी आप कहें वो ये है कि रातों रात शोहरत की ख्वाहिश ना करें। आज के लिखने वालों में की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो उनके पास जबान जैसी भी है, जाहिर बहुत प्यारी ना सही, लेकिन बहरहाल उर्दू में लिखना है हमारे लिए यही बहुत हिम्मत अफजा बात है, लेकिन वो गौर नहीं करते
0: कि लिख क्या रहे हैं,
1: कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ये बहुत बड़ी अदब में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना होता है। उनका तो ये होता है कि रात तो उन्होंने गजल लिखी और खुद भी उस पर नजर ऐसानी नहीं की और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और उन्हीं की तरह के जो सामेईन और कारीन है उन्होंने वाह वाह और शाबाश और मुबारकबाद का शोर मचा दिया। तो उन्होंने ये समझ लिया कि वो जो है अब तो इतने उनके फॉलोअर्स हो गए कि अब वो अब उनको इस्लाह की जरूरत नहीं है
0: ना, इस्लाह की जरूरत नहीं है।
1: तो ये जल्दबाजी और उजलत कभी अदब में आला मकाम नहीं पैदा कर सकती। अपना लिखा हुआ वो 10 बार पढ़े तो खुद उन्हें अपनी कमियां महसूस होंगी और अगर कोई इत्तेफाक से उस्ताद आसपास हो तो उस्ताद की जगह तो हमेशा खाली होती है।
0: बिल्कुल, शायर ने भी कहा ना कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहाँ से बच के निकलना है और कहाँ जाना जरूरी है, तो उनको तो पता ही नहीं,
1: उनको पता नहीं है। और अक्सर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वहां पे घर पे उनको वो माहौल नहीं मिलता,
0: माहौल नहीं,
1: ये भी बहुत अहम बात है।
0: मौजूदा दौर में चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, AI का दौर है, तो AI के जमाने में तख्लीकी मैार को आप किस तरह से देखती हैं?
1: AI के जमाने में मशीनी मैार हो रहा है, देखिए तख्लीकी मैार नहीं हो रहा,
0: तख्लीकी मैार,
1: क्योंकि आजकल मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया के बहुत से ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो अफसाने नगार, अफसाना अफसानचा वगैरह के, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग आज भी जो हैं वो अपना कहना चाहिए जो मौजू है
0: जी,
1: वो AI से डाल के उस अफसाने लिखवा रहे हैं, लेकिन वो इतना नुमाया फर्क दोनों में होता है कि जब इंसानी जज्बात शामिल नहीं होंगे तो मशीन वो काम नहीं कर सकती और उसमें वो असर भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं, कोई चाहता है अगर कि उसकी तख्लीक जिंदा रहे और आगे आने वालों के लिए भी वो एक मशाले राह का काम करे, तो जहाँ तक हो सके वो अपने तख्लीक, अपने इंसानी जज्बात एहसासात और अपने कलम
0: जी,
1: सबसे बड़ी काम बात यह है अपने कलम का साथ रखें, मोबाइल की से एक फिंगर के टच का ख्याल ना रखें
0: जी। बहुत शुक्रिया, आपने नए लिखने वालों के लिए बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने एहसासात और जज्बात को लिखें, न कि मशीनी एहसासात और जज्बात को लिखें, और AI है, अच्छी बात है, ये आपके लिए बेहतरी है, लेकिन इसको आप एज ए मददगार ले, उसके ऊपर मुनहसिर ना हो।
1: बहुत सारी चीजें हैं
0: जी,
1: आपकी आपकी तालीम में है, आप तरबियत में है, आपके मतलब ये इल्म में है
0: जी,
1: कि वो दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस की तरक्की, जो भी सारी बहुत सारी तरक्कियात हैं, बहुत से नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस सिलसिले में आप AI का खुल के इस्तेमाल करें,
0: लेकिन अपने एहसासात को बयान करने के लिए,
1: लेकिन अदब जहाँ की बात है, जो तख्लीकी अदब है, उसमें कम से कम अपने एहसासात को अपनी जबान में बयान करें, AI की जबान में नहीं बयान।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा, जिन्होंने उर्दू अदब को तहकीक, अफसाना, नावल निगारी और फरहंग नवेसी के जरिए नई जहतें अता की। आपने सुना कि डॉक्टर साहिबा ने किस खूबसूरती के साथ हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। सामईन, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी ही शख्सियात को आपके रूबरू करते रहें जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए और ख़ास उनके लिए जो उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी राह हमवार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो उनके तजुर्बात व मुशाहिदात से इस्तेफादा करते हुए अपनी मंजिल को आसान बना सकें, और वो जो अपने फ़नकार, अदीब और असाज़ा वगैरह को जानने का शौक़ रखते हैं, वो भी हमारी मजलिस से बराह रास्त इस्तेफादा कर सकें। तो आपको ये भी बता दें कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश इंतज़ार सैफ़ी की है। तो सामईन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों और कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए आप अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जापान के व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: श्री गोयल 200 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 दिन की जापान यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर में आज गवर्नमेंट पॉपकॉर्निक परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों के करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग और 44% महिलाएँ शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में UPI के जरिए केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेन देन की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गई है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से CBI को सौंपने की मांग की गई थी। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टरों को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह, पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। कोई हुए व्यक्ति का पूरा नाम है सुहानी, पुत्री अशोक दुबे, ग्राम निम्मी विहार, थाना फेस टू। इनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फुट 3 इंच है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर उप निरीक्षक थाना फेस टू गौतम बुद्ध नगर को आप सूचित कर सकते हैं। अन्य सूचना अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है अंजलि कुमारी, पुत्री सतीश सिंह, जेवर चौराहा से ये लापता हैं 3 अगस्त 2026 से। आयु 18 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट है, शरीर की बनावट गहरा, बदन रंग गेहुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना अनुसार खोई हुई व्यक्ति का पूरा नाम है दीपक कुमार, पुत्र दिनेश कुमार, आयु 34 वर्ष है, ऊंचाई है 5 फुट 7 इंच। इनके बारे में यदि आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को सूचना दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है शैलेंद्र शुक्ला, पुत्र प्रेम प्रकाश शुक्ला, ये निम्मी विहार सेक्टर निवासी नोएडा अपने कमरे से लापता हुए हैं। इनकी उम्र है 41 वर्ष, आंख नाक कान औसत है, चेहरा हल्का लंबा है और बाल काले हैं, ऊंचाई है 6 फीट। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना यदि आपके पास है तो आप थाना फेस टू जनपद गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना है अज्ञात मृतक की, जो शव प्राप्त हुआ है 15 अगस्त 2026 को बॉटानिकल गार्डन बस स्टैंड के पास। लगभग 35 वर्ष इनकी उम्र है, रंग गेहुआ, आंख नाक कान औसत हैं और ऊंचाई है 5 फुट 5 इंच। मृतक के दाहिने हाथ की कलाई पर अंग्रेजी में संजू लिखा हुआ है। मृतक बॉटानिकल गार्डन बस स्टैंड पर रहता था, स्थानीय व्यक्ति उसे पहाड़ी के नाम से जानते थे। यदि इस बारे में किसी भी प्रकार की सूचना आपके पास हो तो आप उप निरीक्षक योगेश कुमार थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9218464007। अगली सूचना अनुसार ये सूचना है अज्ञात व्यक्ति की, आयु है 65 वर्ष, आंख नाक कान औसत है, ऊंचाई है 5 फुट 2 इंच। इनके बारे में इनामी राशि भी रखी गई है 10,000 रुपये की। यदि कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 113 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना है एक अज्ञात मृतक की, करीब 35 वर्ष उम्र है और ऊंचाई है 5 फुट 5 इंच, गहरा बदन है, अंडाकार चेहरा है। इस बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास है तो आप थाना प्रभारी थाना फेस 1 नोएडा गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना एक पाई हुई बच्ची के बारे में है, जो रेलवे लाइन के पास चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरक गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त हुई है। आयु 1 वर्ष है, इकहरा शरीर है और ऊंचाई 1 फुट 6 इंच है। यदि इस बारे में कोई भी सूचना आपके पास है तो आप उप निरीक्षक सुशील कुमार थाना बिसरक गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। ये थी लापता व्यक्तियों के बारे में सूचना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: ही नहीं कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हर आवाज में एक एहसास और हर बात में एक नया ख्याल होने वाला है।
1: कुछ बातें हो दिल से, कुछ किस्से हो सपनों से, कुछ हंसी हो लबों पर और कुछ रंग हो अपने पन के।
0: जहाँ ख्वाबों को मिलती है आवाज, जहाँ जज्बातों को मिलती है उड़ान, जहाँ युवा दिलों की धड़कन बनती है एक पहचान।
1: वही है आपका अपना मंच युववाणी। इसी के साथ मैं हूँ उत्तम
0: और मैं हूँ खुशी।
1: तो आइए कुछ पल हमारे नाम कीजिए,
0: अपनी दुनिया की भागदौड़ को थोड़ा थाम लीजिए
1: और शब्दों के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए,
0: क्योंकि ये सिर्फ रेडियो नहीं, ये है युवाओं की आवाज, सपनों का अंदाज युवानी।
1: तो बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा संगीत का रंग देते हैं। सुनते हैं आज का पहला गीत, आहू आहू, फिल्म लव आजकल से।

0: तो चाय हो या कॉफी, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि युववाणी पर शुरू हो रही है हमारी आज की बात।
1: आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार। सावन यानी आस्था, भक्ति, हरियाली और शिव आराधना का महीना।
0: बिल्कुल उत्तम। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और जल अभिषेक की विशेष मान्यता है, लेकिन आज हम आस्था के साथ एक ऐसी बात भी करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, और वो है हमारा मोबाइल फोन।
1: खुशी, अब ये मत कहना कि फोन की बात सुनते ही हमारे लिसनर्स ने अपना फोन हाथ में ले लिया है, वापस रख दो। वैसे एक सवाल है आपसे, आपने आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या किया? पानी पिया या अपना फोन चेक किया?
0: दोस्तों, अगर जवाब है फोन चेक किया तो आप अकेले नहीं हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स और सोशल मीडिया अपडेट्स हमें बार बार फोन की तरफ खींचते हैं।
1: खुशी, आज हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसका नाम है डिजिटल फुटप्रिंट।
0: डिजिटल फुटप्रिंट यानी इंटरनेट पर हमारे द्वारा छोड़ा गया डिजिटल रिकॉर्ड। हम क्या सर्च करते हैं, किन वेबसाइट्स पर जाते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, किस तरह का कंटेंट देखते हैं, ये सब हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है।
1: यानी इंटरनेट पे हम जो भी करते हैं उसकी एक तरह से छाप बनती जाती है।
0: एग्जैक्टली उत्तम।
1: खुशी, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ हमारे अपलोडेड फोटोज या पोस्ट तक सीमित नहीं है, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज का भी हिस्सा हो सकती हैं।
0: युवाओं, इसीलिए अगली बार कोई फोटो, कमेंट या पोस्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मैं चाहता हूँ कि ये चीज इंटरनेट पर लंबे समय तक मौजूद रहे?
1: क्योंकि इंटरनेट पर कुछ चीजें डिलीट करने के बाद भी उनका मेटा डेटा कहीं और भी स्टोर होता रहता है, तो मैं तो चला इसे डिलीट करने के लिए। तब तक आप सुनिए ये गीत, लुट जाएंगे फिल्म अक्सर से।

0: अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन का, जिसकी शुरुआत हम करेंगे हमारी साथी आस्था त्रिपाठी के कविता पाठ से।
1: जय हिंद। मैं आस्था त्रिपाठी आप सभी के बीच आज अपनी कुछ लयबद्ध कविताएं प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी पहली कविता है हमारा ये तिरंगा। हमारा

भारत बनाता है, जिसके चक्र में मुस्कान वो भारत बनाता है। जरा इतिहास को देखो, यहाँ क्या क्या महकता है। भगत आजाद है कितने, ये कहे अंग्रेज थकता है। यहाँ कोई नरम दल का है, कोई गर्म बुद्धि का। देते ज्ञान देते एकता का, आत्मशुद्धि का। ये लफ्ज कुछ ऐसे हैं। गवाया है करोड़ों रकम अपने ज्ञान और धन का। आजादी मांगी सब रंग ने, दिलाया लाल रंग ने था। गवाया है करोड़ों रकम अपने ज्ञान और धन का। आजादी मांगी सब रंग ने, दिलाया लाल रंग ने था। जख्म को जख्म से जोड़े, उसे घायल समझते हैं। हाँ, उस खून की घनी बारिश पे खुद बादल भी कहते हैं। वो खुशकिस्मत की मैं जो ऐसी भू पर राज करता हूँ। कहे रस खान थे जो कृष्ण की महिमा वो कहता हूँ। गुरु गोविंद के आगे मैं अब अरदास करता हूँ। हाँ, ये विश्वास है मुझको, मैं ये आगाज करता हूँ। ये भारत है विविधता का, या ये त्रिकोणमिति है। सभी हैं अपने मूल्यों के, या सबकी एक नीति है। हाँ, कोई जाए शिखरों पर, ये खुद पनडुब्बी कहती है। भले हो वेशभूषा भिन्न, या बंगाली कहती है। हाँ, ये पहचान है उसकी के वो भारत में रहती है। और ये पहचान काफी है कि वो भारत की बेटी है। ये भारत में शिखर हैं जितने ऊंचे हैं वो सागर भी। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस पता है एक भारत ही। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस पता है एक भारत ही। हो काली हो या खद्दर, है ये सारी एक माटी ही। हो पूर्वी हो या पश्चिम, है ये सबकी एक ख्याति ही। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस पता है एक भारत ही। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस पता है एक भारत ही। तो ये थी मेरी पहली कविता, और अब बढ़ते हैं मेरी दूसरी प्रस्तुति की ओर, जिस कविता का शीर्षक है भारत की माटी।

ऐसी उद्भवी माटी को हम भारत ही कहते हैं, ऐसी उद्भवी माटी को हम भारत ही कहते हैं, जहाँ खुद राम ने भी जान गवाई मुस्कुरा कर, खुद आजाद ने कुर्बानी दी गोली चला कर, ऐसी क्रांति।

चुननी थी, ऐसे ही जो सारी चाल चल के झांसी मांगे, धन धन त्याग के भी रानी ने झांसी तो ना दे, ऐसी राज

0: से दिखा रहा है, चेस के चैंपियंस में जीतता गुकेश प्यारा है, अरे वो जेवलिन में चोपड़ा ने रज दिला रहा है, विकसित देश को बनाने में सारे धुरंधर करेंगे चांद को भी पार ये सारे दिवाकर, ऐसी अग्रसर माटी को हम भारत ही कहते हैं, ऐसी अग्रसर माटी को हम भारत ही कहते हैं, जन कल्याण में भी इस युवा के भाग अच्छे हैं, अलख हैं खान भी हैं सारे इनके प्यारे बच्चे हैं, सबने एकजुट होकर प्रकृति को बचाया है, सारे एक ही हैं ध्येय सबका एक पाया है, ऐसी मातृभूमि पाके हम तो धन्य ही हैं, यहाँ विभेद में भी भेदता अनन्य ही है, ऐसी सौम्य सुंदर माटी को भारत ही कहते हैं, ऐसे विविधता के देश को भारत ही कहते हैं, विविधता में भी एकता को हम भारत ही कहते हैं। धन्यवाद साथियों मेरे साथ मेरी कविताओं के साथ इतने प्यार से जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत सुंदर आस्था। इसी के साथ सुनिए हमारा अगला गीत ऑल इज वेल थ्री इडियट फिल्म से।

0: उत्तम, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया बदल गई है, हमारे सारे सपने खत्म हो गए हैं।
1: लेकिन कुछ लोग उसी मोड़ को अपनी जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना देते हैं। आज की हमारी मोटिवेटिंग स्टोरी ऐसे ही एक युवा की कहानी है, शुभम जोयल की।
0: शुभम का सपना था भारतीय सेना में ऑफिसर बनना। उन्होंने आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री स्कीम का रिटन एग्जाम भी क्लियर कर लिया था और SSB इंटरव्यू के बस कुछ दिन दूर थे।
1: लेकिन जुलाई 2022 में एक गंभीर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। हादसे में उनका पैर एम्पुटेट करना पड़ा और उनका आर्मी ऑफिसर बनने का सपना अचानक टूटता हुआ नजर आया।
0: सोचिए, जिस युवा ने अपने आने वाले कल की पूरी तस्वीर बना रखी थी, वो अचानक ICU में था और खुद से सिर्फ यही सवाल कर रहा था कि अब आगे क्या।
1: रिकवरी के दौरान उन्होंने अपने सामने मौजूद नई पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू किया और साल 2023 में उन्होंने आर्मी पैरालंपिक नोट ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात कोच सूबेदार मेजर राकेश सिंह रावत से हुई।
0: और फिर वही इंसान 1 अगस्त 2026 को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़ा था।
1: शुभम ने मेंस F57 शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता, 13.28 मीटर्स का थ्रो किया। उनके साथ इंडियन टीम मेट सुमन राणा ने गोल्ड मेडल जीता, यानी इंडिया ने इस इवेंट में शानदार गोल्ड सिल्वर 1-2 फिनिश किया।
0: और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। शुभम की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल पर है।
1: तो दोस्तों, शुभम जोयल की कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाती है।
0: यही कि कभी कभी जिंदगी हमारा पहला सपना छीन लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सपने देखने की वजह खत्म हो गई है।
1: एक रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन हौसला कायम हो तो इंसान एक नया रास्ता बना सकता है।
0: ICU से कॉमनवेल्थ गेम्स पोडियम तक का ये सफर सिर्फ स्पोर्ट्स की कहानी नहीं दर्शाता, ये है रेजिलियंस, करेज और कमबैक की कहानी। और इसी के साथ सुनते रहिए हमारा अगला गीत, झुके तेरे आगे सर, फ्रॉम फिल्म मारी कॉम।

0: आज के हमारे हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे HPV के बारे में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिस पे ध्यान ना दिया गया तो ये आपको वेजाइनल या सर्वाइकल कैंसर भी दे सकता है।
1: चलो, मतलब मैं तो सेफ हूँ।
0: वेल, नॉट एग्जैक्टली।
1: ध्यान से सुनो, आपने बोला इससे सर्वाइकल कैंसर होता है। मेरी बायोलॉजी टीचर ने पढ़ाया था कि सर्विक्स एक जेंडर स्पेसिफिक ऑर्गन है। मेरे पास सर्विक्स नहीं है तो मुझे सर्वाइकल कैंसर कैसे हो सकता है?
0: तुम्हें सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो सकता, पर इस वायरस की वजह से तुम ओरल कैंसर के रिस्क से अभी भी एक्सपोज हो।
1: यू सेड कि ये मोस्ट कॉमन STI है, तो क्या बस इसे होने दूं मैं?
0: बिल्कुल नहीं उत्तम। प्रिकॉशंस लो, प्रैक्टिस सेफ इंटरकोर्स, रेगुलर चेकअप्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली HPV वैक्सीन लगवाओ।
1: लड़के भी?
0: बिल्कुल, ये एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो आपको सर्वाइकल कैंसर और HPV से होने वाले इन्फेक्शन से बचाती है, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके। भारत सरकार के HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 14 साल की कम उम्र की फीमेल्स इसे फ्री में अपने नजदीकी हेल्थ केयर सेंटर्स पर लगवा सकती हैं। 14 से कम है तो एक शॉट, 14 से ज्यादा वालों को 3 शॉट्स लगेंगे 6 महीने के पीरियड में। अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और तुम्हें पता है उत्तम, भारत सरकार के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से अब तक 52 लाख युवतियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है।
1: तो जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, पहले तो प्रणाम, बच्चों की सुरक्षा का तोहफा दें, और जो यूथ हमें सुन रही है वो खुद भी अपनी सेहत की जिम्मेदारी उठाएं, HPV वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लें और आज ही वैक्सीन लगवाएं। आज तो लेट हो गया, कल लगवा लेना।
0: और इसी के साथ प्रस्तुत है हमारा अगला गीत।

0: तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम आपको आज के इतिहास से जुड़ी रोचक बातें बताते हैं। 24 अगस्त 1690 आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी जॉब चडनॉक की खोज पूरी हुई। हुगली नदी के किनारे उन्होंने कुछ गांव ढूंढे जो आगे चल के भारत का एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड हब बनने वाला था। कैलिकटा से कैलकटा और कैलकटा से कोलकाता, ये शहर आज भी अपना पर्पस निभा रहा है और आज के ही दिन कोलकाता स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। वैसे एक फन फैक्ट, 1772 से 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया।
1: आज ही के दिन 1908 में पुणे जिले के खेत गांव में जन्मे महान क्रांतिकारी सेवाराम राजगुरु को आज हम उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसका मकसद भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराना था। उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिर्फ 22 साल की उम्र में राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। शहीद राजगुरु को उनके जन्मदिवस पर कोटि कोटि नमन। उनका साहस और बलिदान हमेशा हमें और हमें सुन रहे हर युवा को प्रेरित करता रहेगा।
0: आज के ही दिन 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहली बार इंग्लैंड को उन्हीं की जमीन पर टेस्ट मैच में हराया। पहले दो टेस्ट ड्रॉ होने के बाद तीसरे और फाइनल टेस्ट में भगवत चंद्रशेखर ने कमाल कर दिया। उन्होंने महज 38 रन देकर 6 विकेट्स लिए और भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को सिर्फ 101 रन पे समेट दिया।
1: इस हिस्टोरिक जीत को याद करते हुए भारत के पूर्व कप्तान और हेड कोच रवि शास्त्री जी ने बताया कि जब ये मैच हुआ तब वो सिर्फ 9 साल के थे और उन्होंने इसे रेडियो पर सुना था। उनके मुताबिक इस जीत ने पूरे भारत को एक नया

0: आत्मविश्वास जगाया कि भारत के खिलाड़ी सिर्फ ओवरसीज में खेलने ही नहीं बल्कि वहां जीतने को भी काबिलियत रखते हैं। 1971 की ये हिस्टोरिक जीत इंडियन क्रिकेट की इतिहास में हमेशा एक खास मुकाम रखेगी।
1: आज के दिन 2006 में हमारे प्यारे प्लूटो ने प्लैनेट होने का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया और बेचारे ने अपना प्लैनेट होने का स्टेटस खो दिया।
0: प्लैनेट्स के भी कट ऑफ होते हैं?
1: बिल्कुल खुशी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमने प्लूटो जैसे और छोटे बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर किए, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उन्हें भी प्लैनेट माने या नहीं, और उन्होंने ये कट ऑफ बनाया कि हम उसी को प्लैनेट मानेंगे जो सन के चक्कर लगाते हो, जो गोल हो और जिसका ग्रेविटेशनल पुल हो। अब प्लूटो बेचारा आखिरी वाला नहीं कर पाया।
0: इस बात से तुम इतना क्यों दुखी हो रहे हो?
1: मुझे बुरा लगता है प्लूटो के लिए। मैं रातों को सोचता हूँ कि अगर ये प्लैनेट्स आपस में बातें करते होंगे तो प्लूटो को छोटू छोटू बोलकर चिढ़ाते होंगे। नो वंडर बेचारा दबा दबा सा कोने में रहता है।
0: अच्छा, प्लूटो की बात से मुंह ना उतारो, एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ।

0: चलिए अब वक्त हो चला है आज के क्विक अपडेट्स का। दिल्ली ने H1N1 यानी स्वाइन फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मास्क पहने और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक और फटीग इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ये लक्षण दिखने पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
1: VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल ने पब्लिक हेल्थ केयर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है। 75

0: अगर आप भी नेचर को लेकर अपना मैसेज और कमिटमेंट एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अपना हैंड रिटन लेटर इस पते पर भेजें, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महाराष्ट्र सर्कल मुंबई 40001। एनवेलप पर ढाई आखर लेटर 2026 लिखना ना भूलें। लेटर भेजने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2026।
1: चलिए सुनते हैं अब हमारा अगला गीत बावरे।

0: कहते हैं ना, कुछ सफर छोटे होकर भी दिल में बहुत दूर तक साथ चलते हैं।
1: और आज का ये खूबसूरत सफर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है।
0: इन बातों में अगर आपको अपनी कोई बात मिली हो, इन गीतों में अगर कोई अपना एहसास मिला हो,
1: तो समझिएगा हमारी ये मुलाकात थोड़ी सी और खास हो गई।
0: दोस्तों, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं yuvanifeedback@gmail.com पर, yuvanifeedback@gmail.com।
1: आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात फिर होगी, नए किस्सों के साथ, नई बातों के साथ और उसी मुस्कान के साथ।
0: इसी के साथ मैं हूँ खुशी,
1: मैं हूँ उत्तम। तब तक सुनते रहिए युववाणी। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोव ने आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध लगातार मजबूत और व्यापक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपसी हितों और विश्वास पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर कल दो दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगई

0: लवरॉफ से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिल पीपल्स यूनियन से की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में आज शाम नीदरलैंड्स में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Speaking at the meeting, Dr. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in areas of economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over a personal message from Mr. Modi. Dr. Jayashankar said the two

0: नमस्कार। और साथियों, कहते हैं कि आंखें हमारे मन का भाव बोलती हैं, और जब बात हो शिव की आंखों की, उनके नेत्रों की, तो बात कुछ भक्तिमय हो जाती है।
1: बिल्कुल। और मुझे पता है आप आज की बात कर रहे हैं, आज सोमवार है, सावन का सोमवार है, और कहते हैं कि आज भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग जल, बेलपत्र और सब कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ें अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए जो हम अर्पित कर रहे हैं वो तो उनका ही दिया हुआ है। हम भगवान को चाहिए कि हमारे जो है द्वेष है, अहंकार है, अगर वो उन्हें समर्पित कर दे तो सबसे बड़ी वही आराधना और भक्ति कही जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कुसुम जी। और अब अवसर ऐसा है, दिन ऐसा है, तो क्यों ना हम शिव का भजन करें और सुनवाएं अपने साथियों को ओमपाल रतौलवी की आवाज में ये शिव भजन।
1: जी, हम भी भक्ति के रस में डूब जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं।
0: जी

0: तो श्रोताओं, आपको ये बम लहरी ज़रूर पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे ओमपाल रतौलवी से ये बम लहरी। और वीरेंद्र भाई, देखिए ना, प्रकृति भी जैसे भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हुई है। आज तो गजब हो गया, इतनी बारिश हुई, सब जगह बरखा बहार, इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिला।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना कि बदरा छाए अंगनवा, सावन ने करवट बदली, आ गई बदली और बरस गई बदली। जी तो ये बदलना नहीं चाहिए मौसम। कितने दिन चाहती हैं आपको समझिए ऐसा मौसम?
0: ऐसा मौसम तो देखिए थोड़े समय के लिए ही सब चाहेंगे कि इतना, लेकिन होगा सुकून भरा मौसम चाहते हैं कि जो ज्यादा बारिश भी ना हो, ज्यादा गर्मी भी ना हो, हरियाली ही हरियाली हो। सावन का मौसम चल रहा है और हर जगह हरियाली दिख रही है हमें और भक्तिमय भी है, तो क्यों ना कुछ

0: ये सावन का गीत। और देखिए
1: जी
0: ना, सावन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। शहरों में जो सावन होता है सुहावना तो होता है ये वीरेंद्र भाई,
1: जी
0: हर जगह हरियाली नजर आती है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं।
1: हाँ, लेकिन अगर गांव के किसी छोरे से पूछो कि भाई सावन के मतलब मायने क्या हैं, तो फिर वो क्या क्या बताएगा आपको, बताते हैं।

प्रेम बड़ा है भारी, एक दूजे के हितकारी। यहाँ प्रेम बड़ा ही भारी, एक दूजे के हितकारी। यहाँ प्रेम बड़ा ही भारी।

0: मैं हूँ गांव गली का छोरा, मुझे गांव बड़ा ही भावे।
1: जी मुझे भी भाता है।
0: जी सबको ही भाता है। और ये सुन रहे थे आप गोपाल सिंह बर्मन से लोकगीत।
1: जी और इसी के साथ लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल। सभी को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है खेल खिलाड़ी के आज 24 अगस्त 2026 के संस्करण में। आकाशवाणी से मैं वसीम अहमद और मेरी सहयोगी
2: दीपिका जसवाल, स्वागत है आप सभी का, नमस्कार।
1: हम आपको देश विदेश में चल रहे विभिन्न खेल खबरों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, क्रिकेट की। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बैडमिंटन से। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रही BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 कल समाप्त हो गई। बैडमिंटन की इस चैंपियनशिप पे आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी दर्पण।

0: कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता। कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनियंग लिस्वारा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won. Praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इस काम को ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
3: I think it's definitely huge for France, definitely huge. Felt all the support about the fans. We also got all the support from all the staff behind. And I think definitely today was a day for French badminton and it was a day for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for France.
0: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे से

0: टेस्टों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
1: देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इज सपोर्टिंग मी, आई वांट टू थैंक ऑल द माय फैंस सपोर्टिंग मी, दिस कीप्स मी गोइंग एंड जस्ट गिव मी एनर्जी, सो आई एम सो एक्साइटेड एंड वेरी एंजॉय, आई थिंक इट्स सपोर्ट मी, दे आर चीयरिंग ऑन मी, दिस इज माय मोटिवेशन and I there are other people, my team coach, head coach, my family, all fans, trainer, all supporting me, this is my keep going.
0: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने दो साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में दो सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
2: And now, our men's doubles world champion 2026 from China, Liang Weiqing and Wang Chen.
0: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर वन जोड़ी को फाइनल में दो सीधे सेटों में मात दी और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
3: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd, that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
0: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेलरू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
4: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
0: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने दो गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
5: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
0: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी। विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ दो देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत। इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
6: बीइंग इन टू दैट क्लब I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just needs to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this whole moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
0: इसी श्रेणी में अपना पहला World Championships खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यू कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया। राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली।
7: इट वाज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो, लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एटलीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर।
0: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए।
8: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर वन इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज़ वेल, आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड

0: There will be moments, as I said, but yeah, happy to pull it off.
1: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली।
0: Definitely a lot to learn, especially this match, a tough one to digest as well, but we'll go back, analyze and I think a lot of positives as well from this tournament, but I think definitely a lot to learn and a long way to go.
1: दूसरी तरफ लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 32 में यूएसए के गैरेट टैन से हारे, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। वुमन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता। लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी।
2: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम वन, गेम टू और गेम थ्री भी बहुत इक्वल चल रहा था। The last three points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
1: Men's doubles में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा खुरुनन की जोड़ी राउंड ऑफ 32 के आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी।
3: We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game, a lot of the points हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश हुई और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
1: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े एवं आसद सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया। कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले, और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
4: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं, और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था, और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस। आई वुडन्ट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीस थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट, और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
1: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे। जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहनें माइशा और ताबिया।
5: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूएई में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूएई में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले ही यूएई को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
1: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
6: I am from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there, and I've been playing for a year and a half now, representing UAE.
1: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
7: सो आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड आई वाज बोर्न हियर, सो आई एम स्टिल एन इंडियन पासपोर्ट। या आई फ्रीक्वेंटली कम हियर, ऑल माय फैमिली इज हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस इन आवर एकेडमी एंड बट नाउ यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर इंडियन।
1: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: शटल की दुनिया से रुख करते हैं सफेद गेंद और स्टिक के खेल हॉकी की ओर। अब अपने दूसरे ग्रुप स्टेज के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं ये मुकाबले। और महिलाओं के मुकाबलों की बात करें तो कल खेले गए पूल एफ के मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से पराजित किया। वहीं महिला वर्ग के पूल ई में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा। खेल के निर्धारित समय में दोनों ही टीमें एक भी गोल नहीं कर सकी और इसी के साथ भारत की आखिरी चार में जगह बनाने की कोशिश भी थम गई। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी था, लेकिन दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले में कोई भी गोल नहीं हो सका और इस ड्रॉ के बाद भारत, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दो दो अंक रहे। इस पूल में नीदरलैंड्स अपने सभी मुकाबले जीतकर टॉप पर रही और दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंक और गोल डिफरेंस भी बराबर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप में कुल 3 गोल किए, जो कि भारतीय टीम के किए गए कुल 2 गोल से ज्यादा थे। इस तरह इस पूल से नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच के बाद भारतीय कप्तान सलीमा टेटे कहती हैं,
1: बिल्कुल हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, बट हम खुश नहीं है क्योंकि हम इतना क्लोज आने के बाद हम ऐसे ही मैच नहीं दे सकते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इनके इस मैच के लिए हमने मेहनत की है और हमने अच्छा खेला, बट एज अ टीम आई थिंक हमें फिनिश और करना चाहिए। बट कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है। यही है कि अभी 5th पोजीशन के लिए हमें खेलना है, तो डेफिनेटली हम दोबारा से कम बैक करेंगे और बिल्कुल गिव अप नहीं किए हैं हम अभी तक।
0: भारतीय महिला टीम अब 27 अगस्त को 5वें और 6ठे स्थान के लिए ग्रुप एफ की तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के साथ मैच खेलेंगी।
2: आज खेले गए मुकाबलों में पुरुष वर्ग के पूल एफ में स्पेन और बेल्जियम का मैच 1-1 के स्कोर पे ड्रॉ रहा। जर्मनी 7 अंकों के साथ पूल एफ में शीर्ष पे रहा, वहीं बेल्जियम 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे रहा। इस तरह जर्मनी और बेल्जियम ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग के पूल जी में जापान ने वेल्स को 3-2 से हराया और दूसरा मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से खेला जा रहा है। वहीं महिला वर्ग के पूल एच में स्कॉटलैंड ने न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया और इसी पूल का दूसरा मुकाबला आयरलैंड और यूएसए के बीच जारी है। आज देर शाम खेले जाने वाले मुकाबलों में पुरुष वर्ग के पूल ई में एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना भारत से होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व कप सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर होने की कगार पर है, लेकिन शनिवार को आखिरी पूल मैच में इंग्लैंड की अर्जेंटीना के हाथों 1-3 के स्कोर से हार ने तकनीकी तौर पर रास्ते बंद नहीं किए हैं, तो यह मुकाबला भारत के लिए अब करो या मरो से कम नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम आप कि ये मुकाबला करो या मरो से कम नहीं है, क्योंकि इंतज़ार है भारतीयों का 51 सालों के सूखे को ख़त्म करने का। और देखने वाली बात यह है कि वो इंतज़ार बना रहता है या इस बार वो इंतज़ार ख़त्म होता है। पूल ई के दूसरे मुकाबले की बात करें तो वो नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा और इस मैच के बाद पूल ई के नीदरलैंड्स के बाद दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला हो जाएगा। आज का आखिरी मुकाबला महिला वर्ग के पूल एफ में स्पेन और जर्मनी के बीच होगा। और अभी समाप्त हुए मुकाबले की एक बात करें तो पुरुष वर्ग में मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जो 4-2 जिसका स्कोर रहा और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीत लिया। महिला वर्ग का अगला मुकाबला पूल एच का होगा, जो आयरलैंड और यूएसए के बीच होगा और जो शाम को शुरू होगा, और उस मुकाबले से जुड़ी जानकारी आपको कल के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम जरूर देंगे।

0: एक नजर डाल लेते हैं इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप पर। हॉकी में ही दूसरी प्रतियोगिता है ये, जो 16वीं राष्ट्रीय हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कल पुणे में समाप्त हुई, और कल खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप 2026 से जीती, और मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, डूरंड कप में क्या है खास वो जानते हैं।
1: ये चलते हैं आपको फुटबॉल के मैदान पर, जहां से खबर है ड्यूरेंड कप 2026 का खिताब जो कि ईस्ट बंगाल एफसी ने अपने नाम कर लिया है। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती मैदान में खेले गए फाइनल में ईस्ट बंगाल ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी मोहन बगान सुपर जायंट को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने 17वां ड्यूरेंड कप खिताब जीतकर मोहन बगान के साथ प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम का दर्जा साझा कर लिया है। ईस्ट बंगाल के लिए यह उपलब्धि खास है क्योंकि 2004 के बाद यह उसका पहला ड्यूरेंड कप खिताब है। 2004 में भी ईस्ट बंगाल ने फाइनल में मोहन बगान को ही 2-1 से हराकर ट्रॉफी जीती थी। इस बार के टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, इंडियन फुटबॉल लीग, आई लीग 2, भारतीय सशस्त्र बलों और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी के 6 स्थानों पर आयोजित किए गए। टूर्नामेंट के गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित हुए ईस्ट बंगाल एफसी के एडमंड लाल रिंदिका, वहीं गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया मोहन बगान एफसी के विशाल कैट को। वहीं टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर रहे नॉर्थ ईस्ट के अलाइद्दीन अजराई, उन्होंने ड्यूरेंड कप 2026 में कुल 9 गोल किए। भारतीय फुटबॉल से जुड़े एक और ऐतिहासिक टूर्नामेंट की जानकारी लेकर दीपिका जसवाल की रिपोर्ट सुनते हैं।
0: सुब्रतो कप के 65वें संस्करण की बात करें तो जूनियर गर्ल्स अंडर 17 के मुकाबलों पर नजर डालते हैं, और क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया, जिसका स्कोर रहा 1-4 और छत्तीसगढ़ ने यह मुकाबला अपने नाम किया। दूसरा क्वार्टर फाइनल एनसीसी और मेघालय के बीच खेला गया, जिसका स्कोर रहा 6-0 और एनसीसी ने यह मुकाबला अपने नाम किया। बिहार और झारखंड के बीच खेले गए मुकाबले में स्कोर रहा 1-5 और झारखंड ने यह मुकाबला अपने नाम किया। और सीबीएसई और सीआईएसई का मुकाबला चौथा क्वार्टर फाइनल खेला गया, जो 0-1 जिसका स्कोर रहा और सीआईएसई ने यह मुकाबला अपने नाम किया। तो ये तो थे क्वार्टर फाइनल्स के रिजल्ट, और अब सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़, एनसीसी, झारखंड और सीआईएसई की टीमें।

0: और अब रेसलिंग की बात करते हैं और रुख करते हैं स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा का, जहां अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने पुरुष फ्रीस्टाइल के सभी 10 वजनों में चुनौती पेश की और 57 किलो में रुपेश ने ईरान के अरमान को 12-6 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के यामोतो से 2-4 से हार गए। 61 किलो में मयंक ने किर्गिस्तान के अमीर रिवोव को 14-3 से हराया, लेकिन राउंड ऑफ 16 में जॉर्जिया के निकोलोज से 5-8 से हार गए। 65 किलोग्राम में रोहित कुमार को किर्गिस्तान के ईसा इसाकोव ने 10-1 से हराया और 70 किलो में सुमित भारस्कर क्वालिफिकेशन के बाद आगे नहीं बढ़ सके। वहीं 74 किलोग्राम में आदर्श पाटिल ने क्वार्टर फाइनल तक जगह बनाई, जबकि 79 किलो में सौरभ यादव और 86 किलो में अरुण, 92 किलो में निखिल और 97 किलो में लैकी पदक दौड़ तक नहीं पहुंच सके। सबसे प्रभावी प्रदर्शन 125 किलो में रौनक का रहा। उन्होंने शुरुआती दोनों मुकाबले 10-0 से जीते और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हालांकि अजरबैजान के यूसुफ ने उन्हें कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया और इस तरह भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल में पदक से चूक गया, लेकिन रौनक का क्वार्टर फाइनल और आदर्श पाटिल का अंतिम 8 तक पहुंचना भारतीय टीम के प्रमुख प्रदर्शन रहे।
1: अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। आज मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी कल की पारी 5 विकेट पर 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। दूसरे सेशन के आखिरी में मौसम का मिजाज बिगड़ गया, बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा, फिर टी ब्रेक हो गया। दूसरे दिन का पहला सेशन भारत के नाम रहा। भारत ने इस दौरान 27 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 119 रन जुटाए। लंच ब्रेक के समय भारत का स्कोर 112 ओवर में 419 रन था 6 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल ने अपने कल की नाबाद पारी 7 रन के निजी स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और शानदार 115 रन बनाकर वे नाबाद रहे। दूसरे दिन के खेल समाप्त होने से थोड़े पहले कप्तान शुभमन गिल ने भारत की पारी 9 विकेट के 503 रन के कुल योग स्कोर पर डिक्लेयर कर दिया। जवाब में श्रीलंका की पारी का स्कोर ताजा समाचार आने तक 2 विकेट पर 8 रन थे।

0: ऋषभ पंत 63 रन ही बना पाए और रविंद्र जडेजा 43 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल ने शानदार पारी खेली और 115 रन बनाकर नाबाद रहे। सारांश जैन 6 रन बना सके और मानव सुथार 18 रन, मोहम्मद सिराज 3 रन बना सके और प्रसिद्ध कृष्णा 4 रन बनाकर नाबाद रहे।
1: वहीं श्रीलंका की तरफ से फर्नांडो ने 106 रन देकर 4 विकेट निकाले और जयसूर्या और नुवांथा ने 2-2 विकेट निकाले।
0: और अब क्रिकेट की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और डीपीएल पर नज़र डालते हैं, जहां डीपीएल पर आज पुरुषों के मुकाबले में आज एक खास मुकाबला होना है जो 7 बजे शुरू होना है अरुण जेटली स्टेडियम में, और ये मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच में खेला जाएगा। वहीं अगर महिला वर्ग के मुकाबलों पर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त मुकाबला चल रहा है साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली क्वींस के बीच में, जिसमें साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीता और बैटिंग करना उन्होंने चूज किया और इस वक्त उनका स्कोर जो है 40 रन बना चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है प्लेयर्स को रन बनाने के लिए, रन रोकने के लिए और ख़ुद को बेहतर साबित करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की।
1: अब रुख करते हैं टेबल टेनिस की ओर। कानपुर के स्पोर्ट्स हब में आयोजित पहली नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल पुरुषों, महिलाओं, अंडर 19 लड़कों और अंडर 19 लड़कियों की कैटेगरी के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के साथ शानदार ढंग से संपन्न हुई। दो रोमांचक फाइनल के बाद दिल्ली के पायस जैन और पश्चिम बंगाल की सिंड्रेला दास चैंपियन बने। पायस ने वापसी करते हुए पीएसपीबी के मानव ठक्कर को 4-1 से हराया, जबकि सिंड्रेला ने कड़े मुकाबले में महाराष्ट्र की दिव्यांशी भौमिक को 4-2 से मात दी। इस चैंपियनशिप में युवा पीढ़ी से बढ़ती चुनौती भी साफ दिखी, क्योंकि कई जाने माने खिलाड़ी फाइनल से पहले ही बाहर हो गए। सिंगल सेमीफाइनल में बाहर होने वालों में टॉप सीड वाले मनु शाह और यशस्वी घोरपड़े शामिल थे, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए थे वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी श्रीजा अकुला सिर्फ प्री क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच पाई। अंडर 19 लड़कों के सिंगल्स फाइनल में एक और रोमांचक 7 गेम वाला मुकाबला देखने को मिला, जिसमें आरएसपीबी के प्रियानुज भट्टाचार्य ने तमिलनाडु के पीबी अभिनंद को 4-3 से हराया। अंडर 19 लड़कियों का सिंगल्स के फाइनल मुकाबला एक तरफा रहा, जिसमें सिंड्रेला ने तमिलनाडु की अनन्या मुरलीधरन को 4-1 से हराया। लड़कों के अंडर 17 कैटेगरी में गुजरात के विवान दवे ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि लड़कियों के अंडर 17 कैटेगरी में महाराष्ट्र की दिव्यांशी भौमिक नेशनल चैंपियन बनी।
0: भारोत्तोलन की बात हो और मीराबाई चानू का नाम सबसे ऊपर ना आए और सबसे पहले जहन में ना आए वो नहीं हो सकता, और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू अपने शानदार भारोत्तोलन करियर के लिए जानी जाती हैं और आईची नागोवा में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में वे भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन को जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाली एशियाई खेलों के लिए भारत की 5 सदस्यीय भारोत्तोलन टीम में शामिल किया गया है और एशियाई खेल 2026 में भारोत्तोलन प्रतियोगिता 22 से 28 सितंबर तक टोकाई सीजन्स जिम्नेजियम में आयोजित की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और वसीम अहमद को दीजिए इजाजत।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
4: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
5: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
4: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष

अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेले नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है और 6:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूस देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह समवेतः। शीर्ष सम्मेलनानां द्विपक्षीय संबंधानां च अभवत् गहनं मंथनम्। बेजिंग नगरं संप्राप्तः अजित डोभालः। सीमा प्रकरणे 25वें उच्चस्तरीय विशेष प्रतिनिधि उपवेशनस्य नेतृत्वं करिष्यति। वैश्विक वाणिज्ये भारतस्य सुदृढ पदक्षेपः। अर्थव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः राष्ट्रैः सह मुक्त व्यापार संधेः वार्ता प्रचलति इति पीयूष गोयलस्य उद्घोषणा। झारखंड लोक सेवा परीक्षा विवादः। परीक्षा अनियमिततानां निष्पक्ष CBI अन्वेषणाय उच्चतम न्यायालयस्य पीठेन केंद्र सर्वकारतः झारखंड शासनाच्च आहूतं प्रत्युत्तरम्। अपि च कोलंबो क्रिकेट निकष

0: स्पर्धायाः द्वितीय दिवसे श्रीलंका दलं विरुध्य भारतेन स्वकीय प्रथम पर्याये नव क्रीडकानां हानौ 3.5 लाख धावनांकाः समासादिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्रेमलिन भवने रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह सौहार्द मेलनम् अकरोत्। अस्मिन् प्रतिनिधि मंडले रूस देशे भारतीय राजदूतः विनय कुमारः अथ संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। उपवेशने तावत् द्विपक्षीय व्यापारः आर्थिक सहयोगः सहैव आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि इति विषयेषु मुख्यतया चर्चा समजायत। अत्रावसरे संभाषमानः डॉक्टर जयशंकरः भारत रूस देशयोः सुदृढां वर्धमानां च सहभागितां प्रतिपादितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शुभकामनाः राष्ट्रपति पुतिन इत्यस्मै समर्पयत्। तस्य व्यक्तिगत सन्देशं च तस्मै निवेदितवान्। विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् व्यापार ऊर्जा उर्वरक आण्विक क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः सहयोगः अत्यधिकं प्रवृद्धः वर्तते। सः असूचयत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी SCO शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह मेलनाय अथ ब्रिक शिखर सम्मेलनार्थं तस्य भारत आगमने स्वागतं कर्तुम् उत्सुको वर्तते। इतः प्राक्तन दिवसे विदेश मंत्री रूस देशस्य प्रथम उप प्रधानमंत्रिणा डेनिस मंतुरोव इत्यमुना सह व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोगाय भारत रूस अंतर सर्वकारीय आयोगस्य सहाध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् भारत रूस संबंधाः निरन्तरं स्वकीयां दृढताम् अनुकूलन क्षमतां च प्रदर्शितवन्तः। विदेशमंत्री स्वकीय रूस समकक्ष्येन सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यति। भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अद्य द्विदिवसीय चीन यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे डॉक्टर डोभालः स्वकीय चीन समकक्षेन विदेशमन्त्रिणा च वांग यी इत्यमुना सह सीमा विषये आयोज्यमानस्य द्वयोः देशयोः 25वें विशेष प्रतिनिधि वार्ता सत्रस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। चीन विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता लीन जियान अद्य वार्ताहर सम्मेलने न्यवेदयत् श्री डोभालः श्री वांग इत्यसौ च सीमा विवादं समेत्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय अथ अन्ताराष्ट्रीय सम्बन्धेषु गभीरं विचार विमर्शं करिष्यतः। 20-अधिक-2000 वर्षे गलवान उपत्यकायां संघर्षानन्तरं पूर्व लद्दाख क्षेत्रे दीर्घकालिक सैन्य चिन्ता कारणात् भारत चीन सम्बन्धेषु महती कटुता समागता आसीत्। किन्तु उभौ पक्षौ सम्बन्धेषु स्थिरताम् आनेतुम् अविरतं प्रयासम् अकुरुताम्। 400-300 किलोमीटर दीर्घतमस्य भारत चीन सीमा विवादस्य समग्रावबोधाय 3-अधिक-2000 वर्षे एषा विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था आरब्धा। अस्मात् उपवेशनात् प्राग् भारतस्य विदेशमन्त्री शनिवासरे पुनरुक्तवान् यत् सीमाक्षेत्रेषु शान्तिः स्थिरता च चीनदेशेन सह उत्तमाय सम्बन्धाय अनिवार्या वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः जापान देशस्य चतुर्दिवसीय प्रवासे वर्तते। तत्र व्यापार समवायम् उद्देश्य तेन प्रोदीरितम् यत् भारतं 15 ट्रिलियन डॉलर परिमितस्य GDP सम्पदः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः विविध राष्ट्रैः सह वाणिज्य वार्तां विधत्ते। अस्माकं देशस्य मुक्त व्यापार सन्धिः जगद् व्यापारस्य 75% भागं परिपूरयिष्यन्ति इति उक्तम्। भारतस्य उच्चतम न्यायालयेन झारखंड राज्यस्य संयुक्त नागरिक सेवा परीक्षायां संजातानां अनियमिततानां सीबीआई दलेन निष्पक्ष विशोधनाय याचिकां स्वीकृत्य केंद्र राज्य शासनाभ्यां सूचना पत्रं प्रेषितम्। मुख्य न्यायाधिपतेः सूर्यकांतस्य न्यायपीठेन झारखंड लोक सेवा आयोगाय अपि निर्देशो प्रदत्तः। उच्च न्यायालयः पूर्वमेव परीक्षा निरस्तीकरणस्य निर्णयं स्थगितवान्। उज्जैन्यां श्रावण मासस्य अन्तिम सोमवासरे भगवान महाकालः पंचामृतेन अभिषिक्तः भस्मना च समलंकृतः। मंदिर द्वाराणि ब्रह्म मुहूर्ते सार्धद्विवादने उद्घाटितानि। अद्य सायंकाले मंदिरात् प्रस्थिता शोभायात्रा रामघाटं यावत् यास्यति, यत्र क्षिप्रा नद्याः पावन जलेन भगवतः चंद्रमौलेश्वरस्य विशेष अर्चनं विधास्यते। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवानः अद्य नवदेहल्यां सम्मेलनं संबोध्य प्रावोचत् यत् पीएमएफएमई योजना माध्यमेन द्विलक्षाधिकेभ्यः सूक्ष्म खाद्य उद्यमीभ्यः अभ्युदयः साध्यते। तेन प्रकटीकृतं यत् अस्याः योजनायाः फलं आसाद्य 10 लक्ष जनाः साक्षात् वृत्तिम् अवाप्नुवन्। एषा योजना उद्यमिता क्षेत्रे महिलानां सहभागितामपि संवर्धयति।
1: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: लखनऊ नगरे समनुष्ठिते 18वें ब्रिक्स अकादमिक अधिवेशने विदेश कार्य सचिव सुधाकर दलेला अब्रवीत यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथमम् इति मौलिक सूत्रे प्रतिष्ठिता वर्तते। तेन प्रकटीकृतं यत् अयं संघः नवोन्मेषं सहयोगञ्च प्रवर्धयितुं यतते। अस्याः प्रक्रियायाः भागत्वेन राष्ट्रस्य 30 नगरेषु 400+ सम्मेलनानि निर्व्यूढानि सन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञानाधिकारिभिः श्वः यावत् छत्तीसगढ़ बिहार ओडिशा प्रान्तेषु अति पर्जन्यस्य पूर्वानुमानं प्रकटय्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अपि च देहल्यां झारखण्डे कर्णाटक केरलयोः तटीय प्रदेशेषु च मध्यमा तीव्रा वा वृष्टिः संभाविता। देहली विमान पत्तने तु मंद दृश्यात्मकत्वात् 14 वायुयानानां गतिः अन्यत्र मोचिता। यात्रिभ्यश्च सूचना संपर्काय उपदेशो प्रदत्तः। संयुक्त राष्ट्र संघस्य मरुस्थलीकरण प्रतिरोध परिषदि भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन् केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव प्रावोचत् यत् भूमेः और्वर्य रक्षणं न तु केवलं व्ययमात्रं अपितु भावी संततेः जीवन धारणाय अत्यावश्यकं वर्तते। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: जी कुसुम बहन, आज तो बड़ी तगड़ी बारिश हुई है। मैं तो आते आते ही भीग गया पूरा का पूरा।
0: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आज तो बारिश ने हद ही कर दी। इतनी बारिश, हर जगह बारिश का पानी जमा हो रखा है। और देखिए, एक तरह से हम कहते हैं गर्मी से निजात मिलती है, मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है बारिश में। कितना आनंद आ जाता है जब बारिश का मौसम आता है। तो
1: बारिश आती है ना तो अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेके आती है कुसुम बहन।
0: बिल्कुल भाई, देखिए जब चीजें हमारे सकारात्मक होती है उसके साथ कुछ कुछ समस्याएं भी आती हैं और उसका हमें उपाय करना पड़ता है। जैसे मानसून में पानी जब जमा हो जाता है तो गमलों में पानी जमा हो जाता है और घर के आजू बाजू में या कुछ
1: तालाब जो नालियां हैं सब पानी से लबालब हो जाती हैं।
0: जैसे आ रहे थे तो हर जगह कितना पानी जम गया था। तो ये जो छोटे छोटे मच्छर उसमें पनप जाते हैं और जब वो मच्छर पनपते हैं तो बीमारियों की तो घर बनाते हैं वो।
1: जी बड़ी समस्या की बात हो जाती है। पानी आता है तो मच्छरों की तो मौज आ जाती है और फिर मच्छर
0: की मौज नहीं होती, इंसान परेशान हो जाता
1: है। बिल्कुल, तो आज इसी से जुड़ी हुई एक बातचीत आपको सुनवाने वाले हैं साथियों। मानसून में डेंगू की रोकथाम, लक्षण, उपचार और बचाव, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम न्यू दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर बड़ाइक।
2: आप सभी साथियों को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, मानसून का मौसम है और मानसून आते ही जलभराव का खतरा बढ़ जाता है, मच्छरों का प्रजनन बढ़ जाता है। इन दिनों डेंगू के मामले यानी कि मच्छरों के मामले भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी होता है और मच्छरों के प्रजनन को रोकना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये मच्छर पनपते कैसे हैं, किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, कहां कहां ये मच्छर पनप सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए और खासकर डेंगू के विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रोशन कुमार जी। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
3: नमस्कार कमल जी।
2: डॉक्टर साहब, ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इन तीनों में क्या फर्क है?
3: तीनों जो बीमारी है, चिकनगुनिया या डेंगू है, वायरल डिजीज है, ये ऑर्थोपोड बोर्न होते हैं जो कि मच्छर के थ्रू होता है
2: जी।
3: और जो हमारा मलेरिया है वो भी मच्छर के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसको बोलते हैं उसके थ्रू। तो जनरली सिम्टम जो है तीनों के मोस्टली ओवरलैप करते हैं
2: जी।
3: और ऐसी चीजें हैं वो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है या वहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जैसे अब मलेरिया जो है दिल्ली में उतना ज्यादा नहीं होता जितना आप मानसून वाले एरिया में जाएंगे, लाइक मुंबई, मैंगलोर, इस रीजन में बहुत ज्यादा होता है।
2: जहाँ बारिश होती है,
3: बिल्कुल बहुत ज्यादा बारिश हो वहाँ पे मलेरिया के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
2: और डेंगू,
3: लेकिन डेंगू भी बारिश में होता है लेकिन वो हमारे दिल्ली के एरिया में ज्यादा देखा गया है और इस रीजन में बहुत होता है।
2: इसका रीजन क्या है?
3: रीजन यही है कि जो मच्छर होते हैं बारिश के पानी में ज्यादा पनपते हैं और जो है वो स्टैग्नेंट वाटर है उसमें होते हैं, उसके थ्रू हमारा
2: यानी कि जल भराव जहां पर होता है डेंगू पनपने की ज्यादा संभावना रहती है।
3: बिल्कुल होती है जहां पे स्टैग्नेंट वाटर हो, लाइक कोई गमले में, टायर में या कुछ भी पॉट रखते होते हैं घर में, कूलर में, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पानी इकट्ठा ना हो क्योंकि ये मच्छर उसी में पनपते हैं
2: जी। और जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं क्या वहां पर भी डेंगू पनपने के चांसेस होते हैं?
3: हो सकते हैं क्योंकि हर जगह जहाँ भी आपको बोला ना जहाँ पे डैम्प एरिया हो जो पानी होगी वहां पे मच्छर पनपने की हमेशा रहेगी, वैसे एरिया में उसका लार्वा पनपता है, उससे मच्छर पैदा होते हैं और वही काटते हैं।
2: तो डेंगू क्या है और इसमें मतलब किस प्रकार ये फैलता है?
3: एक्चुअली डेंगू जो है हमारा, ये इसको फैलाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि फैलाता है, जो वेक्टर है मच्छर
2: जी।
3: डेंगू तो वायरल बीमारी है जो वायरस से होती है
2: जी।
3: लेकिन ये होता कैसे है, जब किसी मनुष्य को, हमें या आपको किसी को डेंगू हो जाता है उसके बाद जो मच्छर जो काटता है
2: जी,
3: उससे दूसरे पर्सन में वो मच्छर दोबारा काटेगा तो उसमें डेंगू का संक्रमण हो जाएगा।
2: अच्छा, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है।
3: कोई भी वायरस को फैलाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो वेक्टर हमारा मच्छर है इसमें
2: जी,
3: तो मच्छर का होना बहुत जरूरी है।
2: तो मच्छर जब इस प्रकार से पैदा होने लगते हैं तो सबसे पहले अगर हम कहें कि ये मलेरिया है या चिकनगुनिया है या डेंगू है तो इसमें किस प्रकार का फर्क कर सकते हैं, क्या लक्षण नजर आ सकते हैं?
3: जनरली जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं मोस्टली सब में, जैसे डेंगू में ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, रेट्रोवाइटल पेन, आंखों में जलन, पेन, बॉडी एक होना, खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है, ये वायरल सिम्टम्स जितने हैं
1: जी,
3: ये इनिशियल सिम्टम्स हैं,
1: ये डेंगू के
3: हो सकते हैं, हाथ पैर में थकान, बस
1: ये लगातार रहता
3: लगातार
1: है।
3: रहते हैं इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं, एक्यूट फेजिस को बोलते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स, ये किसी में भी हो सकते हैं, कोई वायरल डिजीज में मलेरिया हो, ये हो, हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में पेन होगा, बॉडी एक होगा, ये इनिशियल सिम्टम्स है। इसमें हम पता करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं किस बीमारी से, हम तुरंत टेस्ट कराते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डेंगू का टेस्ट करा लें या इसका मलेरिया का टेस्ट इमीडिएट आ जाता है कि आपको तुरंत की ये डेंगू है या क्या बोलते हैं। डेंगू के लिए तो हमें आरटीपीसीआर वगैरह की जरूरत होती है वो थोड़ा सा वो इनिशियल के लिए।
1: जी जी, तब जब डेंगू किसी को हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
3: डेंगू जैसे मैंने बताया ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन डेंगू का सिम्टम जिन इनिशियल जो 7 डेज तक होता है हमारा,
1: अच्छा,
3: फर्स्ट 7 डेज उसमें हम NS1 एंटीजन है इसको करा के हम पता कर सकते हैं कि डेंगू है कि नहीं, लेकिन आप उससे भी अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हो विद इन 1 डेज 2 डेज तो हमें RT-PCR के लिए जाना पड़ेगा जिसमें हम सीधा डेंगू वायरस को ही डिटेक्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि ये 1 to 7 डेज का होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्स्ट डेज में पता नहीं चल पाता है, दूसरे तीसरे दिन पता चलता है।
3: अगर हमको इनिशियली कुछ ज्यादा लग रहा है कि हम डेंगू ही कन्फर्म करना चाहते हैं या सिम्टम्स ज्यादा इनिशियली, जनरली होता नहीं है, डेंगू के जो मेनली खतरा वाला टाइम होता है वो आपका जब फीवर डाउनग्रेड जाता है ना उस समय प्रॉब्लम होती है डेंगू।
1: अच्छा,
3: लेकिन आजकल हम मोस्टली हर पेशेंट दिल्ली के एरिया में है, अगर ऐसी बीमारी है तो इनिशियली हम NS1 या मलेरिया तुरंत टेस्ट करा के पता कर लेते हैं कि पेशेंट को है क्या।
1: जी, लेकिन जब लक्षण पता कर लेते हैं और उसके बाद टेस्ट कराने के बाद में तुरंत किस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए?
3: अब जैसे किसी को इनिशियल सिर्फ नॉर्मल सिम्टम्स हैं लाइक फीवर, बॉडी एक, इसमें हम प्लेन पैरास्टामोल देते हैं और पेशेंट के बस बोलते हैं कि अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखो और बाहर मत खाओ, हैंड वॉश करो कि इससे आपको बीमारी बढ़े ना।
1: जी जी,
3: लेकिन अगर वो सिम्टम्स बढ़ जाए तो फिर उसके अलग ट्रीटमेंट है, इनिशियली हमें यही करना है, हर पेशेंट को यही सलाह देना है, लेकिन उन्हें वार्निंग साइन भी हमें समझाना है कि डेंगू के ये वार्निंग साइंस हैं, ये अगर आए तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है या अपने क्लिनिक जो भी चिकित्सक दिखाते हैं उनको बताना है।
1: जो साधारण मच्छर होते हैं और जो डेंगू या चिकनगुनिया के जो मच्छर होते हैं उनमें क्या फर्क, अगर हम फिजिकली उनको देखें तो किस प्रकार पता लगाएंगे?
3: डेंगू के मच्छर को बोलते हैं कि टाइगर की तरह होता है, टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं उसको, उनके इतना नजदीक से हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो जनरली आपको दिन के टाइम काटते हैं, मतलब 10-11 AM के टाइम ना, मॉर्निंग आवर में।
1: अच्छा,
3: तो हमें कोशिश करना चाहिए इनिशियली जो इस टाइम जो है बच्चे जैसे हैं तो उन्हें कपड़े कवर करके पहने बाहर जाएं, या फिर आपके घर में अगर मच्छर का ज्यादा ये है तो एक नेट लगा सकते हो आप, तो इन चीजों का थोड़ा कर सकते हैं। बाहर खेल रहे हैं बच्चे तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट या छोटे छोटे वो आते हैं आजकल बॉडी में लगा के उसको लगाना चाहिए, इससे मच्छर आपसे दूर रहेंगे, ये इनिशियल हम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब कई लोग ये कहते हैं, हमने सुना भी है, ये जो डेंगू के मच्छर हैं ये ज्यादा नहीं उड़ पाते हैं और ये ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि हम ओपर फ्लोर में हैं, मल्टी स्टोरी में हैं, तो वहां तक मच्छर नहीं पहुंच पाएगा,
3: ऐसा
1: डेंगू नहीं होगा।
3: एक मिथ है कि इस हाइट से ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, कुछ सर्टेन लिमिट्स तो होते हैं, लेकिन अब कितना है कि इस मल्टी स्टोरी से यहाँ से ऊपर नहीं उड़ेंगे इसका कुछ नहीं, क्योंकि जहां पे भी स्टैग्नेंट वाटर होगा वहां पे लार्वा हो सकता है, वहां मच्छर पनप सकते हैं,
1: जहां पर नमी होगी वहां पर भी हो सकता है,
3: नमी भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब ये जो डेंगू मच्छर होता है ये कहाँ कहाँ ज्यादा पनपने की संभावना बनी रहती है?
3: आपको बताया जैसे कि जहां भी रुका हुआ पानी
1: ज्यादातर,
3: ठीक है ना, जैसे घर में हम कोई गमला रखते हैं उसके अंदर फ्लावर्स है, पानी इकट्ठा हो गया तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं इनिशियली, अगर आप हमेशा चेंज करते रहो तो कम चांस होते हैं, वो पानी इकट्ठा हो गया आपको, जैसे कूलर है किसी घर में भी कूलर चल रहा हो, कूलर के पानी चेंज नहीं होते हैं, उसमें हो सकता है कहीं टायर वायर पड़ा हो या कुछ ऐसी चीजें इसमें पॉट में जमा हो, बाल्टी में बहुत दिन से पानी इकट्ठा हो, वहां भी हो सकता है। इन चीजों में पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना,
1: मेन पानी है
3: फेंक देना, बिल्कुल
1: जी। डॉक्टर साहब जो पेशेंट होता है वो तो बड़ी परेशानी में रहता है, लेकिन जो घर परिवार वाले होते हैं उनको किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए? कई बार कहते हैं कि आपने जैसे अभी बताया क्या डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने के बाद उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये कहां तक का सच है डॉक्टर साहब?
3: ये जो मैंने बताया आपको जैसे एक्यूट फेज होता है इन्फेक्शन का कोई भी, वो 3 to 5 डेज का होता है, तो हर वायरल डिजीज का एक यही कोर्स है 3 to 5 डेज,
1: यही पैटर्न है
3: बिल्कुल। जी जी। लेकिन अब डेंगू में हमारा जब फीवर डाउन होता है उसी समय हमारा ब्लड वेसल को मच्छर जो है ना कॉम्प्लेक्स बना के उसमें समझ जाओ कि छेद जैसा बना देते हैं, तो वाटर लीक होने लगता है। तो वाटर जब लीक होगा बॉडी से तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे
1: जी।
3: तो उसमें पेशेंट शॉक की तरफ चला जाता है, शॉक सिंड्रोम उसको बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएट भर्ती होना है। इससे पहले आपको छोटे मोटे सिम्टम्स, अगर ब्लड लीक करेगा तो वो आएंगे, जैसे कि बॉडी में छोटे छोटे रैश, पटे की दाने, या कहीं से नाक से ब्लड आना, या पॉटी में ब्लड आना, ये चीजें हो रही, या पेट में दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये चीजें वार्निंग साइन है कि अंदर कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है
1: जी।
3: तो ये सब वार्निंग साइन है, इसमें इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं।
2: डॉक्टर साहब, क्या इसमें डेंगू के मच्छर के काटने के बाद में डेंगू फीवर होने पर क्या उल्टियां और दस्त होने की भी संभावना रहती
3: हो सकती है ना? प्रोड्रोमल सिम्टम्स में वॉमिटिंग भी हो सकती है। मैंने बोला ना, वायरल डिजीज जो है वो आपके बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे कहीं भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? तो इसलिए वायरल डिजीज में किसी पेशेंट को लूज मोशन भी हो जाता है, गला खराब भी हो जाता है, खांसी जुकाम हर कुछ हो सकता है
2: जी। डॉक्टर साहब,
3: ये बैक्टीरियल से वायरल को यही चीज डिफरेंशिएट करता है
2: जी। डॉक्टर, जो बचाव की जो बात हो रही है, तो लोग किस प्रकार से जागरूक हो सकते हैं? खासकर देखा जाता है कि शहरों में इन सब बातों का एवं ध्यान नहीं दिया जाता है और लोग लापरवाही बरत लेते हैं, किस प्रकार से बचाव किया जाए?
3: बचाव में सबसे पहले यही है हमारा जो मैंने बताया था, पानी इकट्ठा ना होने दो, ये फर्स्ट हो गया
1: जी,
3: अवेयरनेस। सेकंड हमारा ये है, आप कहीं भी घर से बाहर जाते हो उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने बताया कि मच्छर काटने की संभावना होती है, तो कपड़े पूरे कवर्ड होने चाहिए बॉडी पे, या बच्चे हैं रिपेलेंट लगाओ, या कुछ भी मॉस्किटो ओडोमास या कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। ये हो गया। अब कम्युनिटी लेवल पे हम जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि हमें मच्छरों के लिए छिड़काव कराना पड़ता है, पीएमसीडी से आपके यहाँ भी आते होंगे, हमारे यहाँ भी पीएमसीडी एनडीएमसी, हमें उन्हें कॉल करके बुलाना है, या फिर हमें करते रहना है घर में छिड़काव, आरबीसी डेलिस वो भी आते हैं
2: जी जी जी। कई बार डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि ये क्रीम लगाओगे तो आपको मच्छर नहीं काटेगा, जैसे अभी आपने बताया, तो इसका असर आगे चल करके कुछ होगा तो नहीं?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल
2: किसी प्रकार का
3: वो रिपेलेंट है, उसमें मिक्स होती है दवाइयां, तो उससे मच्छर थोड़े दूर भागते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते जो डेंगू की जो पैदाइश होती है और जो बचाइश है, उसके विषय में अपने जो श्रोता है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं अपने यहाँ के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि जो वायरल फीवर है इनिशियली आप उसको नॉर्मली देखें, लेकिन अगर वार्निंग साइन साथ में होती है, जैसे आपको बताया कि शॉक हो, कोई बॉडी ऐसे अनकॉन्शियस हो रहा हो, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, या डिहाइड्रेशन हो गया, उस कंडीशन आपको इमीडिएट भर्ती होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए, समय समय पर छिड़काव होनी चाहिए, या आसपास गंदगी जमा ना हो, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है
2: जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न ये कि बच्चों और बुजुर्गों को किस प्रकार से डेंगू से बचाव के उपाय किए जा सकते हैं?
3: दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन बच्चों में सिम्टम्स थोड़े जल्दी इफेक्ट करते हैं, बच्चे तुरंत शॉक में चले जाते हैं, इसलिए बच्चों में हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। बच्चों में आप इमीडिएट तुरंत डॉक्टर के पास जाएं
2: जी, तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह के अनुसार,
3: को गड़बड़ होते बिल्कुल समय नहीं लगता, वो इमीडिएट शॉक में जाते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब आपने डेंगू के विषय में, इसकी रोकथाम के विषय में और इसके कारण और लक्षण के विषय में आपने बहुत सारी जानकारियां दी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से हमारे जो श्रोता हैं जरूर लाभान्वित होंगे और डेंगू की रोकथाम के लिए अभी से इसी वक्त जो बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है, तुरंत उपाय करेंगे, अपने घर गमलों में पानी के जमाव को नहीं रोकेंगे और उसे बदलते रहना जरूरी होता है, इसे बदलते भी रहेंगे तो निश्चित तौर से हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और डेंगू से रोकथाम के विषय पर आपने बहुत सारी जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में डेंगू की रोकथाम, लक्षण, उपचार और बचाव कैसे किया जाए, इस पर विस्तार से बता रहे थे डॉक्टर रोशन कुमार CGHS नई दिल्ली से, और बातचीत कर रहे थे इनसे कमल किशोर बड़ाई।
1: और अब कुसुम बहन सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह से ये प्रस्तुति।

0: तो भैया अभी आप भूपेंद्र सिंह को सुन रहे थे और ये जो बता रहे थे योग की बात कर रहे थे, और योग की बात जोड़ना भी होता है वीरेंद्र भाई।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, योग माने जोड़ना, बचत करना, और बचत हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है।
0: बहुत
1: कई
0: जरूरी
1: बार
0: है।
1: ऐसा समय आ जाता है कुछ सुन बहन कि हम मतलब पैसा ढूंढ रहे होते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता,
0: बिल्कुल।
1: तब क्या होगा?
0: तब यहाँ पे एक बात आती है कि हमें जो जो हमारी पाई पाई कहते हैं ना, कि शुरू से हमारे यहाँ संस्कृति रही है पाई पाई जोड़ने वाली संस्कृति,
1: जी
0: छोटी
1: जी
0: छोटी जो हम एक गुल्लक जो
1: हाँ
0: परंपरा थी, आपको
1: हाँ
0: याद होगा आपने भी बचपन में गुल्लक रखी होगी, और कितने
1: जी
0: खुश होके बचपन में हम गुल्लक में पैसे जोड़ते थे,
1: जी
0: एक एक रुपए, अब तो बहुत 50 पैसे होते थे और भी कई छोटे छोटे,
1: 10 पंजी जितनी भी
0: पंजी
1: होती
0: सारी
1: थी वो सब हम उसमें
0: हम
1: जोड़ के और
0: जोड़ते थे।
1: उसे बजा बजा के देखते थे कि कितनी भारी हो गई, कितनी
0: और
1: हमने बचत
0: जब
1: कर ली।
0: भर जाता था तो जब हम उसको निकालते थे तो जो खुशी होती थी वो बहुत ही अनमोल थी। और
1: जी
0: यही जो जोड़ने की जो कला है, पाई पाई जोड़ने की कला, हमारी जो पुरानी संस्कृति, ग्रामीण
1: जी
0: संस्कृति में जो संस्कृति में है, वो हमें आगे बढ़ाती है।
1: जी
0: हमारे जो कहते हैं ना कि वित्तीय हमें
1: पोषण
0: मनोबल
1: देती
0: देती
1: है
0: है,
1: और
0: हमें आगे स्ट्रांग बनाती है, हमें शक्तिशाली बनाती है।
1: जी कुसुम बहन कहते हैं ना कि आज की बचत और कल की मदद। अब ये देखो आपके हमारी कहावतें भी ऐसी हैं कि माँ फिरे चौथी चौथी, बेटा बिटोरा ही बख्श रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सबको संयम से ही अपने धैर्य के साथ जो जोड़ी गई रकम
0: बिल्कुल
1: है, जो भी पूंजी जोड़ी है, उसको संयम से ही इस्तेमाल भी करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए कुसुम बहन पता है हम क्या कर सकते हैं कि बचत करने के लिए बैंक में बचत खाता भी खोल
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं।
0: बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बचत खाता खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फिक्स डिपॉजिट में आप बहुत ज़्यादा तादाद में आप पूंजी लगाएं, छोटी छोटी जितनी भी आपको मिलती हैं, आपके घर में जितनी कमाई होती है उसमें से थोड़ा सा निकाल के अगर हम बचत कर लेते हैं, तो वही बचा पाई पाई जो हम जोड़ते हैं वो आगे बढ़ के बड़ी एक राशि बन जाती है।
1: जी बूंद बूंद से घड़ा भर
0: घड़ा
1: जाते हैं
0: भरता
1: ना,
0: है, बिल्कुल
1: ना तो ऐसी यही बात है। और समझदार को इशारा ही
0: इशारा ही
1: काफी होता
0: काफी
1: है कि
0: होता है।
1: बचत करो और बचे रहो।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और देखिए, पैसों को जब हम सोच समझ कर खर्च करते हैं, भविष्य के लिए धन बचाते हैं, तो कर्ज के जाल से हम बचते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने बचत करी नहीं और हमें अचानक से आवश्यकता पड़ गई
1: जी
0: पैसों
1: कई
0: की,
1: बार होता है।
0: तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप किसी से मांगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कर्ज
1: नखरे
0: के
1: भी
0: में
1: दिखाते
0: नखरे भी
1: हैं और
0: दिखाते
1: नुकसान
0: हैं,
1: भी होता है,
0: नुकसान
1: मांगन
0: भी होता
1: मरण
0: है।
1: समान कुसुम बहन।
0: बिल्कुल।
1: तो मांगना अच्छा भी नहीं लगता है
0: तो ये
1: लेकिन
0: गिरवी रखने की परंपरा जो पहले चलती थी, तो कितना वो उसके के अंदर उस चक्की में फंस जाते थे। तो ये जो बचत की परंपरा है ना, अगर हम बनाएंगे तो हम अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे, तो यहाँ उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है वीरेंद्र भाई।
1: जी तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ सुनवा दें अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल,
1: जयवीर
0: नेकी।
1: भाटी जी हाँ,
0: नेकी और पूछ पूछ तो आइए सुनते हैं
1: जयवीर
0: जयवीर भाटी
1: भाटी
0: को।
1: को।

0: तो वीरेंद्र भाई, अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे जयवीर भाटी से रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: वांग ई के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोवाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय के सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम। वीरेंद्र भाई देखिए हम बात करते हैं इसमें किसानों की, उनसे जुड़े हुए चीजों की। तो खेती बाड़ी करने के लिए हमें, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जरूरत होती है बीज की, और बीज भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए
1: जी। और बीज से ही जो उत्पादन निर्धारित होता है, अच्छा बीज होगा तो अच्छा उत्पादन होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होगा, और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो
0: एक भाई, जैसे इमारत की नींव बढ़िया होती है ना, तो उसी तरह जो हमारी जो फसल होती है किसान भाई बहनों की, अगर उसकी भी नींव मजबूत होगी, यानी बीज वाली नींव, बीज की क्वालिटी बढ़िया होगी, तभी तो फसल लहलाएगी
1: जी। तो इस विषय से जुड़ी हुई एक योजना है हमारे भाइयों, हम आपको बता दें, बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन, बहुत ही खास मिशन है, और इसके तहत किसानों को रियायती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं ना कुसुम बहन, वो प्रोवाइड, मतलब वो दिए जाते

0: जाते हैं और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं इसके तहत, और कृषोन्नति योजना कहते हैं इसे। कृषोन्नति योजना बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है
1: भाई, भारत सरकार की ये कृषोन्नति योजना के तहत चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, ताकि फसल का उत्पादन और पैदावार बढ़ सके। वीरेंद्र भाई
0: जी, और बीज ग्राम कार्यक्रम भी इसके तहत चलाया जाता है, जिसमें कुसुम बहन अनाज फसलों के लिए बीजों पर 50% और दलहन तिलहन व चारा फसलों के लिए 60% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
1: इस योजना के बहुत सारे घटक है। ये मिशन केवल बीज बांटने तक सीमित नहीं है वीरेंद्र भाई, बल्कि इसके कई हिस्से हैं। जैसे कि बीज ग्राम योजना, इसके तहत गाँव में किसानों को खुद के इस्तेमाल के लिए और दूसरों को देने के लिए उन्नत बीज तैयार करने की ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रमाणन प्रणाली को मजबूत करना, यानी बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए नई लैब बनाना और पुरानी लैब को आधुनिक मशीनों से लैस करना भी होता है
0: जी।
1: और बीज बैंक भी एक प्रमुख घटक है। किसी आपदा जैसे सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति जब पैदा हो जाती है वीरेंद्र भाई, तो समय बीजों की कमी ना हो, इसके लिए आपातकालीन बीज स्टॉक तैयार रखा जाता है
0: जी। तो इतनी सारी इस कार्यक्रम की खूबियां हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो इस पे ध्यान देना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम अच्छी फसल ले सकें। तो किसान बहन भाइयों के लिए इस ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है,
1: बिल्कुल।
0: और अब आगे बढ़े थोड़ा सा अपने किसान बहन भाइयों का योगेंद्र निमचाना से मनोरंजन करा दें।
1: बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं योगेंद्र निमचाना को।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे योगेंद्र निमचाना। और कुसुम बहन, इसके बोल कितने प्यारे थे ना, कर्म नाम करने का होवे तो सभी अपना कर्म करें तो कितना अच्छा हो।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: कर्म अगर हम करेंगे, कर्म का ही फल होता है, जो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और कर्म करना बहुत जरूरी है।
0: जी, ये हमारे जीवन का आधार है। जितने भी जीव जंतु हैं वो भी अपना कर्म करते हैं तभी वो अपना जीवन यापित कर पाते हैं। और हमारी सरकार भी अच्छा काम कर रही है। और अब आपको बता दें कि 22 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सभागार में एग्री टैग डिजिटल कृषि मिशन व दलहन मिशन के आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित सेमिनार में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनवाते हैं।
2: भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा की है। एक तो एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन लगभग 14 करोड़ के आसपास बननी है। तो सभी राज्य उसमें तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और कुछ को और तेजी लाने की आवश्यकता है। फार्मर आईडी के साथ साथ फार्मर से जुड़ी सारी संपत्तियों का ब्यौरा होता है, जिनमें जमीन भी होती है। तो कुछ राज्यों में लैंड

0: पार्सल का काम कम हुआ है तो उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की है, विवरण पूरा हो। गांव के नक्शे भी लगभग 5 लाख गांव के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 5 लाख से थोड़े ज़्यादा ही, और कई जगह डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम भी कई राज्यों ने प्रारंभ कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र में 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया लाखों किसानों को बांटने में सफलता प्राप्त की, तो फसलों की खरीद के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर काम किया, कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य सैचुरेट करना, मतलब इस काम को 100% पूरा करना। तो आज अलग अलग राज्यों ने समय सीमा बताई है कि हम 3 महीने में, हम 2 महीने में। जहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं कि वहाँ कम्युनिटी लैंड जैसे कॉन्सेप्ट है, तो वो SOP बना रहे हैं। दूसरा, दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। अभी दालें हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मुझे बताती हुई प्रसन्नता है कि पहले वर्ष में ही हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में सफलता प्राप्त करना प्रारंभ किया है। हमको एक तो दलहन का क्षेत्र बढ़ाना है, राइस फैलो इलाका जहाँ चावल पैदा होता है वहाँ धान के बाद भी दाल लगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भी एरिया बढ़ाना है, एक क्षेत्रफल बढ़ाना है, दूसरे उत्पादन बढ़ाना है, और तीसरे उत्पादकता बढ़ानी है। तो तीनों में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बार भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मतलब अलनीनो के प्रभाव के बावजूद भी, पिछले साल से 1% से ज़्यादा इलाके में दलहन की खेती हुई है, और उस क्षेत्र में भी हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं। राज्यों ने उसकी भी समीक्षा की है, और रबी के सीजन में, और क्योंकि दलहन की मुख्य खेती हमारे रबी के सीजन में होती है खरीफ से ज़्यादा, क्योंकि चना हो, मसूर हो, बाकी दालें ये हमारी रबी की फसल में पैदा होती है, उसके लक्ष्य भी तय।
1: अभी आप सुन रहे थे 22 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में के सभागार में एग्रीस टैग डिजिटल कृषि मिशन व दलहन मिशन में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में केंद्रीय कृषि व विकास कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को।
2: और साथियों, यूं ही ये सफर किसानों का, देश का और विश्व का चलता रहेगा। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। कुसुम बहन कहते हैं कि हम सभी एक डोरी से बंधे हुए हैं, बस वो डोरी नजर नहीं आती है, और किसान उस डोरी का सिरा है, वहीं से शुरू और वहीं पे खत्म ये कहानी होती है, कभी फसल तो कभी पानी होती है।
1: जी, और कहते ना कि जिंदगानी भी बहुत ऐसी है कि थोड़ी सी जिंदगानी इस जगत में मुसाफिर खाना है, और हमें यूं आगे बढ़ते जाना है, तो क्यों ना कुछ इससे जिंदगी से जुड़ी ही बातें, जो हम बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वह वीरेंद्र भाई
2: जी,
1: किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं, किसान भाई बहनों के साथ, क्योंकि जब वो फसल पैदा करते हैं तो ही हमारा भोजन होता है
2: जी।
1: तो एक तरह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और आइए कुछ इसी तरह की बात सुनते हैं सोमपाल सिंह से, जिंदगी जगत मुसाफिर खाना
2: जी।

गहरी बात थी सोमपाल सिंह की गाई इस प्यारी सी उपदेश की। दिल को छू लेने वाली बातें हमारे जहन में अंदर तक उतर गईं।

0: बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात थी जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी जो हम जीते हैं वो बहुत ही, ये हम सिर्फ यहाँ पे रहने आए हैं और हमारे जो कर्म है वो ही आगे जाएंगे, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे अच्छे काम करें अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने किसान भाई बहनों के लिए, और हम सब मिलकर एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें, नींव रखें ताकि हमारे से बाकी लोग भी खुशहाल बने।
1: जी। और कुसुम बहन, अब हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर हमारे किसान बहन भाइयों को बहुत सारी ऐसी काम की बातें बताते रहते हैं जो
0: बिल्कुल।
1: उनके कृषि कार्यों और उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो इसी के तहत बताया गया है कि ये समय मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की जो पौधशाला है उसके बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सभी किसान बहन भाई जो भी ये बुआई करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर लें, और जिन किसानों की मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की पौध तैयार है वे मौसम को ध्यान में रखते हुए उनकी रोपाई की तैयारी भी कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं। और साथ ही इसमें आगे वैज्ञानिक कहते हैं कि फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीटों, रोग मुक्त हो सकें और वो खड्डे, और खरपतवार से भी उनको अलग किया जा सकता है, यानी खरपतवार जो उनमें हो उनको हटा देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई, और इसके अलावा भी हम आपको बता दें कल आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनेंगे। कल आप सुनेंगे बातचीत, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन पर आँखों का पर क्या प्रभाव पड़ता है, डॉक्टर रोहित कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ ESI नई दिल्ली से बातचीत होगी। साथ ही चर्चा होगी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के बारे में और योजना, जिस योजना के बारे में हम
1: मेक इन
0: बताएंगे।
1: इंडिया,
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल,
1: हाँ, भारत बन रहा है, भारत तन
0: हाँ
1: रहा है, भारत
0: बिल्कुल,
1: आगे बढ़ रहा है।
0: सुदृढ़ हो रहा है, आगे
1: जी
0: बढ़ता रहे, हम यही
1: जी
0: कामना करते हैं। और इसके अलावा कल कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी भी आप
1: जी
0: सुनेंगे, और
1: जी
0: आप हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं फीडबैक।
1: फीडबैक FNH@gmail.com पर। और अब चलते चलते एक और प्रस्तुति एक फौजी की आवाज में, बहुत ही जरूरी है तो सुनवाते हैं आपको।
2: Thank you.

0: हरि बन के पंच मंच पे चढ़ रे, बन के पंच मंच पे चढ़ निर्दोष सताना ना चाहिए।
1: तो आप सभी श्रीपाल फौजी द्वारा गाए ये उपदेश सुन रहे थे और इसी के साथ हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम।
2: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारसर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वली जी, आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई ये गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों में जमीनी स्तर पर तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने परिषद क्षेत्र में समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 गिरफ्तार किए। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन के मद्देनजर परिवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, गुरुग्राम प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली

0: के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली अग्निशमन विभाग के बीच आपसी समन्वय के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने सरकार का समग्र दृष्टिकोण के नजरिए से काम करने पर बल दिया, जिसमें सभी एजेंसियां अलग अलग काम करने की बजाय आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें, खासकर उन मामलों में जहां तेजी से और मिलकर काम करने की जरूरत हो। उपराज्यपाल ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों को तय समय सीमा में पूरा करने, जवाबदेही तय करने और जमीनी स्तर पे तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने राष्ट्रीय राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर परिषद क्षेत्र में व्यापक तथा समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस तैयारी योजना का उद्देश्य शिखर सम्मेलन की पूरी अवधि के दौरान प्रभावी योजना, समन्वित क्रियान्वयन, निर्बाध नागरिक सेवाएं तथा शहरी प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस योजना के अंतर्गत सौंदर्यकरण के लिए 41 प्रमुख सड़कों को 14 सर्कलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सर्कल के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही परिषद द्वारा अगले महीने की 9 से 14 तारीख तक 2400 घंटे स्वच्छता और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अस्थायी कूड़ेदान और मोबाइल शौचालय लगाए जाएंगे और आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई भी स्वच्छता योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। परिषद बुनियादी ढांचे के रखरखाव को प्राथमिकता देते हुए सड़कों के गड्ढे और फुटपाथों की मरम्मत, मलबा हटाने और उचित वर्षा जल निकासी व्यवस्था सहित स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता सुनिश्चित करेगी। इस दौरान चिकित्सा संबंधी, मच्छर नियंत्रण और अन्य निवारक जन स्वास्थ्य उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सम्मेलन अगले महीने की 12 और 13 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन चलने वाला यह सम्मेलन हाइब्रिड माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया, अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में एक फर्जी एयरलाइन जॉब दिलाने वाली गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी एयरवेज में नौकरी पाने को इच्छुक लोगों को लुभाने के लिए नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का संबंध अन्य 10 साइबर शिकायतों से था। वहीं एक अन्य साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
2: कंप्लेंट आने के बाद हमने चीटिंग में केस दर्ज किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया और इम्पर्सोनेशन, क्योंकि इनके जो कॉलर्स थे वो अलग अलग नाम लेके बात करते थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने करी और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ट्रेल करते हुए हमारी टीम नोएडा तक पहुंची, जहां पे फेक इनका सेटअप था, जहां से टेलीकॉलर्स कॉल करते थे और इन्होंने एविएशन जो अपनी अकेडमी बना रखी, जहां कोई इनके पास सेटअप नहीं था मैनेजमेंट एजुकेशन देने का, लेकिन इन्होंने ऐसी फेक बना रखा था।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलोग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद की है। मामले में आगे की जांच कर मादक पदार्थों के तस्करी के पूरे गिरोह का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज बारापुला एलिवेटेड रोड में जारी विस्तार कार्य के चलते यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार NH9 से सराय कालेखाएं की ओर जाने वाले मार्ग में यातायात में भारी जाम लगने की संभावना है। यातायात पुलिस ने लोगों से यात्रा की योजना पूर्व ही बनाने, यातायात नियमों का पालन करने और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नत योजना से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने का आग्रह किया।
3: PMFME की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: इसी बीच दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्षाबंधन सहित आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी में परिवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित, साफ सुथरा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा पिछले 2 दिनों में दिल्ली में 22 सैंपल लिए गए और उन्हें विस्तृत जांच के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभाग ने लगभग 508 किलोग्राम नकली पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आवारा पशुओं और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम पर हुई सार्थक चर्चा हुई। श्री वाही ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम तथा आवारा पशुओं की समस्या पर आगामी दिनों में एक विशेष सदन की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर दिल्ली के नागरिकों से जुड़े हुए हैं और इनका प्रभावी समाधान दिल्ली नगर निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली के उपमहापौर डॉक्टर मेनिका पंत ने आज ओल्ड दिल्ली जोन में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के अतिक्रमण पर नियंत्रण तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उपमहापौर ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से आज दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान बवाना से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्रा सिंह ने अपने क्षेत्र से संबंधित सहायक जल निकासी नाले के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर और कंझावला से मंगोलपुरी तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 2047 के मास्टर प्लान के अंतर्गत दिल्ली में 3000 वर्ग मीटर से बड़े प्लान किए गए प्लॉट पर घर दोबारा बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे लोग जर्जर इमारतों की जगह नए घर बना सकेंगे। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस प्लान में अनधिकृत कॉलोनियों में 2000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े इलाकों में भी दोबारा निर्माण का प्रावधान शामिल है। साथ ही किफायती आवास उपलब्ध कराने और दिल्ली में प्रदूषण तथा यातायात को नियंत्रित करने में मदद के लिए पारगमन उन्मुख विकास के माध्यम से भी उपाय लागू किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक

0: सर्वेक्षण 2026 में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विभाग की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली में उड़ानों के संचालन पर भी असर पड़ा, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों में रुकावट आई और कई उड़ानों में विलंबन हुआ, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे से 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया और इनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थी। वहीं गुरुग्राम प्रशासन ने परामर्श जारी कर कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने और स्कूलों से ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा है। इसी बीच विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन पात्र हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों में जमीनी स्तर पर तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने परिषद क्षेत्र में समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 6 गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे हम सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ फिल्मी संगीत। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म आशिकी से। स्वर दिया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। लीजिए, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम में अपना अगला गीत, जो लिया है हमने फिल्म सनम बेवफा से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फरेब का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था अभिजीत ने। और लीजिए, आप सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग द फायर का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और लीजिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो नंबर वन से ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था सोनू निगम और साथियों ने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम है राही प्यार के से ही गीत, जिसे आवाज़ें दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना, तीसरा युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, चौथा

0: साथियों, अभी आपने सुनी फिल्म छुपा रुस्तम से, ये जिसे स्वर से सजाया था अलका याग्निक ने। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
4: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: That we've opened up.
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
5: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण

0: हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,000

0: almost 13,000 fold in transaction volume. The finance ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The US-Canada trade war has escalated sharply, with US President Donald Trump today announcing that tariffs on Canadian cars, trucks, automotive parts and steel imports will be raised to 50% from January 2027. In a social media post, Mr. Trump accused Canada of imposing high tariffs on American farmers and agricultural products. The announcement came after trade negotiations between Washington and Ottawa broke down, with Canadian Prime Minister Mark Carney describing US's last-minute proposed terms as unfair and uneconomic. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Beijing for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Orissa. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खाब बैन अलावामी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में लगातार बारिश की वजह से कई मकाम पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग में दोतरफा तिजारत, इक्तसादी ताउन और आने वाले आला सतही समिट्स पर तवज्जो मरकूज की गई। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी ईआरएस मयंक सिंह भी वफद में शामिल थे। मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलखसूस इक्तसादी ताउन, तिजारत और तवानाई के शोबे में भारत और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और वजीर आजम का जाती पैगाम जनाब पुतिन तक पहुंचाया। डॉक्टर जयशंकर ने बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग को मुस्बत करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई, फर्टिलाइजर और तवानाई न्यूक्लियाई ताउन समेत मुतअद्दिद शोबों में नुमाया तौर पर मजबूत हुए हैं। वजीर खारजा ने जनाब पुतिन से कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की बिश्केक में छोटी कॉन्फ्रेंस के शिरकत के मुंतजिर हैं और वो भारत में ब्रिक्स समिट में जनाब पुतिन का इस्तकबाल करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं के जरिए बाहमी तौर पर किसी मौजूं तारीख पर अपनी सालाना समिट मुनक़िद करने की तवक्को है। मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए रूस के सदर जनाब पुतिन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की और कहा कि रूस भारतीय किसानों और मुल्क के जरिए शोबे में ताउन करने के लिए इकदाम कर रहा है। उन्होंने इस साल भारत और रूस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ्त को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक हकीकी तौर पर सभी शोबों में ताउन कर रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा शराकत दारी की नौयत में वसत की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोजा दौरे पर कल मॉस्को पहुंचे। दौरे के दौरान जनाब जयशंकर का रूस के अपने हमनसब सरगेई लेवरोव के साथ इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात के तबादले के मकसद से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। قومی سلامتی کے مشیر

डोवाल चीन के दो रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। जनाब डोवाल भारत चीन सरहदी मुजाकिरात पर कल चीन में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर में चीन के अपने हमनसब और वजीर खारजा वेंग यी से बातचीत करेंगे। आज मीडिया को खसूसी नुमाइंदों के मुजाकिरात के बारे में तफसीलात बताते हुए चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा कि जनाब डोवाल और जनाब वेंग सरहदी मामले समेत दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। 2020 गलवान वादी कशीदगी और मशरक़ी लद्दाख में लंबे अरसे तक फौजी तातुल के बाद भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में रखना पड़ा था, लेकिन दोनों मुल्कों ने उस वक्त से अब तक बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों को नसीहत की है कि वो तैनाती के अपने अपने मुल्कों में बुनियादी सतह पर मसरूफ़ अमल रहें और मुकामी बिरादरियों के साथ भारत के ताल्लुकात को वसअत दें। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के 2025 बैच के 50 IFS ऑफिसर ट्रेनीज से आज सेवा तीर्थ में बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वह रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को फ़रोग दें और लोगों के साथ अपनी मसरूफियात को बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ने भारत की तहजीबी क़ुव्वत को टेक्नोलॉजी इख्तरा और मौसर बातचीत से मरबूत करते हुए भारत की आलमी मसरूफियात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए भी ऑफिसर ट्रेनीज की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म ने ऑफिसर ट्रेनीज से कहा कि वह दुनिया के साथ भारत की इक्तसादी मसरूफियात में तामुली अनासिर के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज से दरख्वास्त की कि वह भारत की सकाफती तहजीबी और जुग्राफियाई क़ुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को ज़्यादा पुरकशिश आलमी सियाहती मकाम बनाने के लिए काम करें। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के नौजवान अफराद की भारत में दिलचस्पी जगाने के लिए भारत को जानिए क्विज़ को फ़रोग देने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आज़म ने इस तरह की पहल को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत AI और गेमिंग के इस्तेमाल की भी हौसला अफजाई की। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज ने अपनी तरबियत और भारत दर्शन के तजुर्बात बयान किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को असातिज़ा के कौमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में असातिज़ा और तदरीसी अमले को कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। इन असातिज़ा में आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक के असातिज़ा शामिल होंगे। ये इनामात असातिज़ा और तदरीसी अमले को मौसर दरसो तदरीस आउटरीच सरगर्मियों तहकीक और जिदत तराजी और स्पॉन्सर्ड रिसर्च फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्रामों और कंसल्टेंसी टीचिंग जैसे शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर दिए जाते हैं। असातिज़ा के कौमी इनामात 2026 के लिए इस साल 26 मई से 20 जुलाई के दरमियान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन तर्ज पर दरख्वास्तें तलब की गई थीं। इनमें जन भागीदारी के हिस्से के तौर पर बजात खुद इदारा जाती और साथी असातिज़ा की नामजदगी जैसे जुमरे शामिल रहे। भारत ने कैद साली के खिलाफ मज़ाहमत को मुस्तहकम करने और ज़मीन की बहाली में मदद के लिए मुतनव्वे खातिर खा काबिल पेशगोई और पायदार बैनुल अक्वामी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है। मंगोलिया के उलानबातार में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP17 के 17वें इजलास के दौरान वजारती मुकालमे से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने यह बात कही। वजारती मुकालमे का उनवान था सेहतमंद ज़मीन और कैद साली के तहत मज़ाहमत के लिए इख्तराई माशी मैकेनिज़म। इस दौरान वजीर मौसूफ ने ज़मीन की बहाली और कैद साली के तहत मज़ाहमत से मुतालिक भारत के इख्तराई और मुतनव्वे मालियाती निज़ाम को नुमायाँ किया। जनाब यादव ने ज़मीन की बहाली के लिए पायदार सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन की बहाली सिर्फ अदा की गई कीमत नहीं है बल्कि यह खुराक पानी हयातियाती तनव्व गुजर बसर और तवील मुद्दती लचक में सरमायाकारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खित्ते अराजी का वीरान होना ज़मीन की जरखेज़ी और मेयार में गिरावट और कैद साली जिस पैमाने पर हो रही है उससे निमटने के लिए फाइनेंस के ऐसे मुतनव्वे काबिल पेशगोई और पायदार ज़राए की ज़रूरत है जो अवामी बजट से अलहदा हों और मजबूत पब्लिक प्राइवेट साझेदारी पर मबनी हों। अपने खिताब के अख्ताम में जनाब यादव ने मकसद के हसूल की राह में अपने तजुर्बात इकदाम इदारा जाती इंतजाम और हासिल शुदा मालूम साझा करने की भारत की अहद बस्तगी की तौसीक की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कायम करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों की तशवीश के इजाले की खातिर अगले 2 महीने के दौरान मौजूदा जवाबित में तरमीम करने के नए जाब्ते मुतारिफ कराएगा। टोक्यो में एक प्रोग्राम के दौरान जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने दिन के आगाज में 2 बड़े कॉरपोरेशन से मुलाकात की जिनमें से एक भारत में सेमीकंडक्टर से मुतालिक साजो सामान तैयार करने का मंसूबा बना रही है और दूसरी
गाड़ियों में इस्तेमाल

0: वाले कलपुर्जों से मुतालिक शोबों में कारोबार करना चाहती है। जनाब गोयल ने जापान में 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों के एक बड़े वक्त से मुलाकात की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद फरोग दिया जा सके। अपने दौरे में टोक्यो, नागोया और ओसाका के अपने अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, स्टील, ऑटोमोबाइल, मालियाती खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप समेत अहम शोबों के नुमाइंदों से मुलाकात शामिल है। यकसां अदायगी निज़ाम यूपीआई ने डिजिटल अदायगियों के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत की डिजिटल अदायगियों के इको निज़ाम में रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभरा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए यूपीआई लेनदेन का हजम बढ़कर तकरीबन 13,000 गुना हो गया है। वजारत खजाना ने कहा कि सालाना लेनदेन का तनासुब साल 2016-17 के 1.78 करोड़ लेनदेन से बढ़कर साल 2025-26 में 24,162 करोड़ लेनदेन से तजावुज कर गया है। लेनदेन की मालियत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है जो इसी मुद्दत के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मवासिलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब के दौरान नए डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप का आगाज किया। जनाब सिंधिया ने 10 रियासतों में वाकई 14 डाक दफातर की 9 तामीरशुदा इमारतों का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान जनाब सिंधिया ने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: इस दौरान मवासिलात के वजीर ममलकत डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने भी डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप के फवायद पर रोशनी डाली। भारतीय महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने शुमाल मशरकी भारत, बिहार, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और वस्ती महाराष्ट्र में भी बहुत शदीद बारिश की पेश गोई की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: महकमा मौसमियात ने जनूबी अंदरून कर्नाटक, हिमालय के तराई वाले मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में आज औसत से तेज बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर पानी भर जाने के सबब गाड़ियों की आमद रफ्त में रखना पड़ा और ट्रैफिक जाम के वाकयात दरपेश आए। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर गुरुग्राम के सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। पानी भरने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कॉरपोरेट और प्राइवेट दफातर को भी घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। तेज बारिश के सबब दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों में रखना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 2 बैनुल अक्वामी परवाजों समेत 14 परवाजों के रास्ते बदलने पड़े। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में कल भी औसत दर्जे की बारिश और बादल छाए रहने की पेशगोई की है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: इधर ओडिशा में शदीद मानसून की सूरतहाल के जेर असर मुसलसल बारिश के सबब कई जिलों में पानी भर गया है। पानी की सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरतहाल पैदा हो गई है। खासतौर पर जुनूबी और शुमाली ओडिशा में सूरतहाल तशवीशनाक है, जहां पानी की सतह बढ़ने और मिट्टी के तोदे खिसकने से आम जिंदगी मुतासर हुई है और कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: ओडिशा के कोरापुट में पानी भर गया है, मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंद्रावती और भस्किल दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। नवरंगपुर के दरिया के किनारे वाले गांवों में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। केवंझर में कौमी शाहरा नंबर 520 पर बाराबंका घाट पर मिट्टी के तोदे खिसकने से सड़क राबता मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और सैलाब के खतरे का अलर्ट बरकरार रखा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ईरान ने खबरदार किया है कि आज रात ऐलान की जाने वाली मुमकिन पाबंदियों से खित्ते में अमन नहीं आएगा। साथ ही ईरान ने किसी भी इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब देने का इंतबाह दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान توسیعی امریکی پابندیوں کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرے گا جن میں واشنگٹن کے ساتھ تعاون

0: करने वाले ममालिक को निशाना बनाने वाले इकदाम भी शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी के सख्त नतज भुगतने होंगे और कहा कि ईरान के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर मुजाकिरात पर तातुल के हफ्तों बाद ईरान की जानिब से ये इंतबाह दिया गया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया से नौजवान नस्ल को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने बारिश से मुतासरा मैच में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से ध्रुव जुरेल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वें भारत चीन सरहदी मुजाकिरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खा बैन अवी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से कई मकाम पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर तीसरा युवा भारतीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीखकर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
0: और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर है 0112317171 0112317171 06 और 0112317171 4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
1: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल, जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रहे हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत से ऐसे योजनाएं लाए हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने के, साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाएँ या कुछ पैसे कमा पाएँ। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिस पे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत से हमारी योजनाएँ भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके ज़रूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
0: जी। अज प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन सी स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज़ के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि कौन से सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा मिल सकती हैं, इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल स्टेट है, बाकी जगह भी है, तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियाँ फिर हैं। हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज़ का किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा
0: जी। और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी।
3: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
0: नमस्ते
3: सर। मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास?
2: भूपेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है, तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं, जहां क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह की नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं।
1: साथ में मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है, इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है।
0: मानसी जी आपने ITI की बात करी है, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है, तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
1: जी PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि

0: जी, आप जो अपने ITIs में प्रदान कर रहे हैं, क्या वो रोजगार योग्य हैं? हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है? तो इसी सोच के द्वारा पीएम सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर,
1: जी
0: उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग ITIs में प्रदान करें। तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
1: जी
0: एक हमारे देश में 1,000 ITIs का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा। इंडस्ट्री, स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है? क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जाएगा। एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITIs होते हैं, उसमें 241 करोड़ तक की का बजट वहाँ प्रावधान किया गया है। और ऐसे पूरी स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं। वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं। तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलप करेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है? इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है। कोर्सेज क्या हैं? क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं? तो हमारे ITIs को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब पीएम सेतु लाता है।
1: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है। और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला। और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हमें ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न।
0: जी राकेश जी, धन्यवाद। कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो ITIs हैं, हर जिले के स्तर पर भी आइडिया ये है कि उन ITIs के द्वारा जो है, वहाँ बहुत से ITIs में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं। मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर ज़रूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप स्किलिंग जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे, प्लीज बताने।
3: जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है। तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज में होते हैं। हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है, और बाकी उसके 7 सेंटर्स हैं। आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पर मेसनरी, टेलरी, फॉरेस्ट्री, इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है। तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं।
1: प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है? या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
3: मैम आप लेना चाहिए।
1: हाँ जी
0: जी, सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारी मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो

0: वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जन शिक्षण संस्थानों की बात करूँ तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहाँ हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं। वैसे ही DDU GKY स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है। जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83 से 84% जो हैं वो महिलाएं ही हैं। तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं ब्यूटिशियन वाला। पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रह गई हैं। आप देखिए हमारी कुछ ITIs हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं। एक ITI जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जा रहा है,
1: ई रिक्शा तक चला रही हैं,
0: पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं। तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बड़ा है। अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है। तो मनोबल तो पड़ रहा है, अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन सब में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं।
1: चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार।
2: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ITI से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ, मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है। मैम ये जानना चाहता हूँ मैं।
0: जी रवि जी, आपने ITI से प्रशिक्षण ले लिया है ये मैंने समझा आपके प्रश्न में। तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास बहुत से चीज़ें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत जिन्होंने ITI से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है वो यदि पढ़ाना चाहते हैं ITI इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप NSTIs या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीजें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
1: प्रशांत जी मानसी जी ने बता दी कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो NSDC प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
3: देखिए प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है। जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप ITI से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि ITI करने के बाद बहुत सारे बच्चे NAPS में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पर इंडस्ट्री के अंदर होती है तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी इक्विपमेंट पे उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं। तो उससे नौकरियां काफ़ी या तो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है स्किल इंडिया डिजिटल हब। अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं। काफ़ी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहां पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे, हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं अभी बेलूर घाट बंगाल में, काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
1: जी प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो है आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
3: जी सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पर जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउज़र के द्वारा, और आप वहाँ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है
1: जी।
3: इसमें 8800055555, 5 बार 5, ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें और वहाँ पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
1: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
4: धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह से अप्रेंटिसशिप नहीं और क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का मापदंड?
1: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
4: जी जी जी जी।
1: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
4: जी
1: जी
0: जी। तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप सिद्ध वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपकी आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर्स साथ में लेकर, टाइप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज के साथ, और वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं, तो दो चीजें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में है तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
1: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, मानसी जी आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह की कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
0: जी आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें डिमांड हमारा नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी है काफ़ी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे रहे हैं, तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं। तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है। प्रशांत जी,
3: जी इंटरनेशनल मोबिलिटी में आप जैसा हम जानते हैं जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेज़ी से हम लोगों ने देखा है कि लास्ट पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और एक बहुत ही डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है। हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे। तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज़ में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं।
1: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, संजीव जी। जी संजीव जी।
5: जी नमस्कार आप सभी को।
1: नमस्कार
5: जी, मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUG के भाई में यहाँ यमुनानगर से, और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जब तक ना तो कोई जॉब मिली ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला, जी बैटरी पेंटिंग का कोर्स किया और ड्रोन।
1: संजीव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है।
5: जी DDUG के भाई में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया,
1: बैटरी रिपेयरिंग।
5: हाँ जी, और
1: ठीक है,
5: ड्रोन का भी कोर्स किया,
1: ड्रोन का भी किया आपने। जी
5: हाँ जी, तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली ना एग्जाम होया, और मेरी एज भी 44 होगी, तो ये बोलते हैं कई जगह के भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम।
1: इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज्यादा है, तो कैसे होगा।
3: जी संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है, मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज़्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का, पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहां ड्रोन का एप्लीकेशन है।
1: प्रशांत जी आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है।
3: जी इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है, जैसे कि आप सबसे PM विश्वकर्मा योजना जो MSME की स्कीम है उसकी स्किलिंग MSD के थ्रू हम NSDC में करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपये का लोन मिलता है।
1: जी।
3: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनको लोन देने का प्रोविजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविजन रहता है।
1: जी, और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी।
6: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा, सभी आपके टीम को नमस्कार। आपने मेरी बातों को सुना, जैसे कोई दृष्टि बाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई स्किल है, और दृष्टि बाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
1: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें

0: संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसके लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ रजिस्टर करें और प्लीज़ अपने हुनर को आजमाएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैम्पियनशिप में भी जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो चीन की शंघाई होने वाली है
2: 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें।
1: तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए फरहत नाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीने में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कल्पुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
4: With a large domestic market.
3: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया के मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वरक, भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीकों पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से स्वदेश में जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किया। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता

श्रोताओं, अभी आपने सुने दयाराम और साथियों की आवाज में गाई ये खूबसूरत से राजस्थानी गीत। और आइए अब एक और राजस्थानी गीत सुनते हैं। आवाज है रामकृष्ण वर्मा की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने कुछ राजस्थानी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन राग मेघ। आपको तबले पर संगत दे रहे हैं मदनलाल सिसोदिया, तो हारमोनियम पर साथ हैं कौशिक मित्रा। आइए सुनते हैं ये रचना।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आपने सुना पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन राग मेघ। आपको तबले पर संगति दी मदनलाल सिसोदिया ने और हारमोनियम पर रहे कौशिक मित्रा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत यानी कि आपकी फरमाइश का, जिसे आज आपके साथ लेकर मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना। तो मेरे साथ है आज मेरी एक और साथी, वही अपना परिचय दो।
1: हाँ बिल्कुल वंदना जी, आज मैं आपके साथ हूँ शिल्पा गोस्वामी, और हमारे सारे श्रोताओं को, दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और कार्यक्रम क्या होने वाला है शिल्पा? एक खूबसूरत सा गीत हम सुनवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे कुछ लिसनर्स तो शायद गेस कर लें कि ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो किस विषय या किस टॉपिक पर होने वाला है।
1: जी बिल्कुल।

0: भाई पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, और इससे अंदाजा हमारे श्रोताओं ने तो लगा ही लिया। उससे पहले शिल्पा से पूछते हैं, शिल्पा समझ आया कि मैंने किस तरफ इशारा किया?
1: हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है मेरे, और जो शायद मुझे लगता है जो मैं समझ रही हूँ वही आपका इशारा है।
0: हाँ तो बताओ।
1: देखो आप, मैं आप कहना चाहते हो कि एक हमारी जो उम्र है, एक ऐसी उम्र भी आती है जिसमें हमें कोई पसंद आने लगता है, या मतलब कहें कि हमारा आकर्षण जो है
0: वो उसकी तरफ
1: बन जाता है।
0: शिल्पा बहुत सही तुमने गेस किया, और आज मैं यही कहने वाली हूँ शिल्पा कि एक उम्र ऐसी होती है जिसमें हम कहते हैं कि शायद आकर्षण है, इन्फैचुएशन है।
1: बिल्कुल।
0: और जरूरी नहीं कि ये कहते हैं ना कि मंजिल या मुकाम तक पहुंचे अपना ये सफर।
1: हाँ हाँ वंदना जी, देखिए वो दौर ऐसा होता है जब हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमारी मंजिल आगे क्या है
0: क्या है,
1: लेकिन हाँ कोई व्यक्ति हमें इतना पसंद आने लगता है कि बार बार उसको देखने का मन करता है। बार बार हम उससे जान पहचान भी ना हो हमारी, लेकिन मिलने का मन जरूर करता है।
0: और कुछ नहीं तो कहते हैं ना कि बड़ी शायरी भी है इसके ऊपर कि एक दीदारे यार हो जाए तो बात बन जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा इन्फैचुएशन हमारा और जो आकर्षण है हमारे लिसनर्स का भी, शिल्पा जीवन है, मनुष्य है, ये स्वभाव है, तो किसी ना किसी का जरूर रहा होगा।
1: बिल्कुल। और मेरा मानना है देखो सबका रहता है, आपका भी मेरा भी सभी का रहता है।
0: और बहुत प्यारी सी भाषा में हम इसे हमारा पहला क्रश यानी कि पहला आकर्षण भी कहते हैं। तो अगर किसी के जहन में मेरे और शिल्पा के बात करते करते कोई ऐसा चेहरा उभर कर आ रहा है तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बेशुमार लिसनर्स भी हमारा पहला प्यार है शिल्पा, इतने मैसेजेस हम तक पहुंचे हैं। सतीशा निजा साहब ने तो मुझे और शिल्पा को अभिनंदन करते हुए भी बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच रश्मि पांड्या हमारी दोस्त, ओहो रश्मि कहाँ रह गई, बहुत दिन बाद आई हो, श्रावण मास की बधाई देते हुए कह रही हैं कि प्यारी सखी वंदना और शिल्पा दीदी दोनों को हम कहाँ लगाए सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वंदना जी एक मिनट में यहाँ रुकना चाहूंगी,
0: बिल्कुल, आपको, बिल्कुल, बिल्कुल,
1: और एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपसे भी और अपने श्रोताओं को भी, ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो क्रश है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा तो क्रश हमारे श्रोता है।
0: बिल्कुल सही कहा। इसी बीच हमारे साथ और भी साथी जुड़ते चले जा रहे हैं, हाजी मंजर साहब हैं, और गानों का जो सिलेक्शन है वो कितना शानदार होने वाला होगा शिल्पा, क्योंकि पहले ही गीत को लोगों ने बहुत पसंद किया है।
1: जी, और हमने गीत भी वही चुने हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद आए।
0: बिल्कुल, और यही हमें नरेंद्र सुतार साहब ने भी बोला है, शिल्पा जी वंदना जी पहला प्रोग्राम का गीत बहुत बढ़िया रहा। इसी बीच रवि कुमार, राहुल रवि भी हमें सुन रहे हैं, तारिक हकीम है, हिमकेश्वर साहू हैं, सफुद्दीन अंसारी है, मुकेश भट्टा है, आर कुमार है, रश्मि पंड्या का तुमने नाम ले ही लिया, और सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, गुरमीत है, नारायण खर्चे हैं, ताज मोहम्मद साहब है, दिलावर खान है, फगुराम यादव है, नारायण खर्चे हैं, और अहमद भाई फूल वाले भी हमारे साथ हैं। तो यानी कि बहुत सारे ढेर ढेर जो मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि आप बताइएगा जरूर इस एज में आपका जो क्रश है या फिर आपका दिल किसी के लिए धड़का, बेशक मंजिल तक नहीं पहुंचा हमें ये नहीं सुना, लेकिन धड़का जरूर बताइएगा। और इसी बात पर चूंकि संगीतमय सफर है, एक और खूबसूरत सी पेश हमारे सभी दोस्तों और साथियों के नाम।

0: बड़ी खूबसूरत सी है पेशकश, और इसी पेशकश के साथ दौर चल पड़ा है शिल्पा हमारे लिसनर्स का भी। नारायण खर्चे साहब इस समय हमें सुन रहे हैं, प्रकाश वर्मा है, टीडी मल्होत्रा साहब है, दिलावर खान है, अरुण कुमार पांडे भी सुन रहे हैं, और बबलेश पनवर साहब हैं। और बहुत बहुत स्वागत करती बबलेश साहब आपका, क्योंकि बहुत समय के बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ, और आपका जो टाइटल लिखने का अंदाज है ना, मिश्री जैसी मीठी आवाज़ भाई, वो गया नहीं, आज भी आपको याद है। और यही छोटी छोटी सी बातें आपकी और हमारी हैं जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बांध कर रखती हैं। और शिल्पा भाई
1: जी,
0: इतने प्यारे मैसेजेस हैं, तो लो सतीश साहब ने हमारे इस आज के थीम पर लिख कर भेजा है
1: अच्छा।
0: कि प्यारी बहनों नमस्कार, उम्र चाहे कोई भी हो, इंसान के अंदर मोहब्बतों का साज बजता ही है। मुझे भी कुछ कुछ हुआ किसी विशेष पर, लेकिन आपसी तालमेल इतना सकारात्मक रखा कि आपसी मान सम्मान चरम सीमा तक पहुंचा, परिवारों में इज्जत बढ़ी और खुद को हर पल सुकून में पाया। शायद रब भी खुश है उस मोहब्बत पर, तभी हर पल खुशियां ही खुशियां हैं। सतीश अनिजा साहब ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और ये तो हम क्रश की बात कर रहे हैं शिल्पा, लेकिन खूबसूरती किसी भी प्यार की उसी में होती है जिसे हम चाह रहे हैं ना दिल से, किसी भी तरीके से हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: क्या कहती हो?
1: चाहे देखो वदना जी, एक बात है कि हम जिससे प्यार करते हैं या हमें जिससे प्यार रहा, हम कभी भी उसका बुरा ना चाहें, चाहे वो हमें मिला या ना मिला।
0: ना मिला,
1: ठीक है, क्योंकि अगर हमने उसका बुरा चाहा या हमने अपने मन में भी कभी उसके लिए गलत सोचा, तो शायद मेरा सोचना ये है कि वो प्यार है ही नहीं।
0: है ही नहीं। और वाकई जो एक दूसरे की मान मर्यादा को रखते हुए चले, और कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो एक हम क्रश की बात करें शिल्पा, कभी कभी वो दौर निकल जाता है, लेकिन कुछ गलतियां जाने अनजाने ऐसी रहती हैं कि वो फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगता है गुनाह था।
1: बिल्कुल।
0: और उसका पश्चाताप बहुत भारी पड़ता है। तो फिलहाल हम इतने भारी शब्दों का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा जो है बात जिंदगी में आए उस पहले क्रश पर चल रही है, जो मोहल्ले पड़ोस में कहीं दिख जाता तो उसमें किसी लड़की को किसी हीरो की झलक दिखने लगती
1: जी।
0: और लड़के को वो मोहतरमा हीरोइन नजर आने लगती।
1: बिल्कुल।
0: उसका स्टाइल भले कैसा ही रहो, बाद में हंसी आती है, लेकिन उस समय वो अक्स बड़ा प्यारा लगता था।
1: बिल्कुल।
0: इसी बीच हमें शिल्पा मोहम्मद कमर साहब ने भी ज्वाइन किया है, आप हमें आदाब भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। और एक बहुत खूबसूरत सी पेशकश जिसका इशारा मुझे शिल्पा ने दिया कि बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो अपने तक न रखकर हम इसे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करना चाहिए।

0: यादों के झरोके से बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश और इसकी जो कहते हैं ना अगुवाई करी थी शिल्पा ने। और शिल्पा, इस गाने के दौरान यादों के झरोके से तुम्हारे अंदर से भी कुछ ना कुछ जरूर निकला होगा।
1: बिल्कुल वंदना जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस गीत को सुनकर कि देखिए कभी ना कभी जब हमारा वो टाइम चल रहा था तो हम भी यादों के झरोके से हम छुप छुप कर उस व्यक्ति को, सामने वाले को जरूर निहारते थे और उसका दीदार करने के लिए तरस जाते थे, है ना। हाँ। हुआ है क्या ऐसा?
0: मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन आसपास का जो है मुझे अंदाजा बहुत जल्दी लगा करता था। हाँ। कि कौन किसको देख रहा है। बट हाँ, एक चीज से जरूर इत्तेफाक था कि सपोज दैट अजय देवगन को ही ले लीजिए, तो पड़ोस में कोई एक लड़का आया तो हम ये कहते थे कि अरे इसका हेयर कट जो है ना बिल्कुल अजय देवगन जैसा है। और चूंकि कई बार परिवारों में स्ट्रिक्टनेस ही बड़ी होती है, खुद भी ये जो पीछे की हमारे टाइम की जो पीढ़ी थी ना, वो संस्कारों से बहुत ज्यादा बंधी हुई भी थी, बहुत मुखर भी नहीं थी, अपनी बात कह भी नहीं पाते थे। और बात हो या ना हो, उसकी चर्चाएं अड़ोस पड़ोस में पहले की, अगर चार बार किसी ने देखा तो भाई क्या बात है, बार बार ऊपर क्यों आती हो,
1: बिल्कुल
0: ये बार बार इधर क्यों खड़ी रहती है ना।
1: देखो हमसे ज्यादा या हमारे घर वालों से ज्यादा ना, मुझे लगता है कि हमारे जो आस पड़ोस वाले लोग थे वो हम पर निगाहें रखते थे,
0: उन्हें हमारी चिंता
1: बिल्कुल ज्यादा हुआ करती थी। और इसीलिए शायद देखो पहले के टाइम में ना वंदना जी, हम ये बात किसी से कहने से भी बहुत डरते थे, या फिर ये कह लो कि जैसे आपने बोला संस्कार हम में ऐसे नहीं थे कि हम ये बात इतनी आसानी से किसी को बता सके, लेकिन उस व्यक्ति को छुप छुप के जरूर देखते थे।
0: और आज जब हम बहुत एक कहते ना एक प्रौढ़ अवस्था तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक अच्छी खासी उम्र पे खड़े हैं
1: जी,
0: तो इस चीज को नाम देते हैं फर्स्ट क्रश, यानी कि सबसे पहला झुकाव।
1: बिल्कुल,
0: हर किसी के जीवन में किसी ना किसी के प्रति थोड़ा ज्यादा रहता ही है।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे कि हमने कहा कि हमारा तो क्रश हमारे लिसनर्स भी है, इसी बीच बोधराज खोरवाल साहब भी हमें सुन रहे हैं, टीडी मल्होत्रा साहब हमें सुन रहे हैं, साथ ही साथ अनिल मोहन साहब है हमारे साथ मुल्तानी ढांडा से, और नबी हसन साहब भी हमें सुन रहे हैं, किशन सपकाल साहब ने भी इसी बीच हमें ज्वाइन किया है, नारायण खर्चे साहब हमें मैसेज भेज रहे हैं और भेज रहे हैं हमें, राजकुमार धोती साहब भी, और नबी हसन साहब ने तो मेरा नाम ही बदल दिया शिल्पा। मैं वंदना से अचानक से पद्मा हो गई, लेकिन ये नाम मुझे अच्छा लगता है।
1: ये नाम भी अच्छा है, लेकिन भाई हम अपने दोस्तों को बता दें कि हमारी मैडम का नाम वंदना है।
0: और फगुराम यादव साहब कह रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है और कार्यक्रम सुनकर उन्हें बहुत मजा आ रहा है। फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: देखो वंदना जी, ये ऐसे मैसेज जो हम पढ़ते हैं तो एक अलग सा एक खुशी सी होती है। देखिए यही हमारा क्रश है भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कमाई भी है यहाँ पर आने की। और इसी बीच आइए एक और खूबसूरत सी पेशकश आप सभी को सुनवाते हैं मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज में।

0: हमारे एक साथी भी जुड़े हैं शिल्पा।
1: जी
0: इसी बीच अनिल साहब हमें सुन रहे हैं और वो कहते हैं बहुत ही बढ़िया कि यादों के झरोके से प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई में एक एहसास सा कर रहा है। बरसात से घिरी यह रात कितनी अनमोल बन जाती है जब स्मृतियों के तौर पर प्यार और मोहब्बत से जुड़े कुछ अनमोल पहलुओं को व्यक्त किया जाता है।
1: जी
0: और ऐसे अनमोल पहलुओं के बीच आपकी अनमोल पेशकश दिल को भाव विभोर कर देती है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी खूबसूरत सी पेशकश के लिए। है शिवाजी कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी और साथी यश। भाई यही बात हम कह रहे थे ना शिल्पा की ये भी हमारा पहला क्रश हमारे लिसनर्स है। सुदर्शन मुखी साहब भी इसी बीच जुड़े हैं, छोटे अंसारी साहब भी हैं और साथ है हमारे देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अकिता और अनिकेत भटकर भी।
1: देखो वरना जी एक बात बोलूं कि बड़ी खुशी सी होती है कि जब हमारे श्रोता भी अपने मन की बात हमें बोलते हैं तो लगता है कि हाँ यार बात तो सही
0: वहां
1: है,
0: तक पहुंच रही है
1: बिल्कुल
0: जो हमने उठाई थी,
1: जाना चाहते हैं।
0: हाँ, और फर्स्ट क्रश की या पहले आकर्षण की हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि शिल्पा ने पहले कहा कि वो दौर भले ही हम सभी के बीच जाहिर ना करें लेकिन वो दिल में एहसास जरूर रखता है। और आज भी बड़े होकर जब हम जाते हैं और उसका जिक्र भी अगर कहीं चलता है तो पता नहीं क्यों।
1: और एक बहुत खास बात, हाँ, मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन अगर पहला जो हमारा क्रश था वो आज भी अगर हमें दिख जाए ना तो मन में कोई ना कोई बात तो जरूर आती है,
0: हाँ,
1: एक खुशी सी आ जाती है।
0: और यही खासियत होती है इस जो कहते हैं ना जिंदगी में आए पहले क्रश की, जिसे हम आकर्षण या इन्फैचुएशन भी कह सकते हैं, पर कुछ भी कहिए,
1: हाँ,
0: वो फीलिंग जो है वो बहुत ही रूमानी होती है।
1: बिल्कुल।

0: और भाई कार्यक्रम जो है हमारे बातचीत करते करते देखो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया शिल्पा।
1: जी
0: और फर्स्ट क्रश की हम बात करें यानी कि पहला पहला आकर्षण वो किसी भी रूप में हो सकता है,
1: हाँ
0: चाहे
1: बिल्कुल
0: आप ये सोचो जिंदगी किसी के साथ बितानी है, इतनी तो अकल कभी रही
1: नहीं,
0: नहीं फर्स्ट
1: इतना
0: क्रश
1: तब
0: में।
1: सोच में नहीं आता था ना
0: हाँ
1: गंगा
0: हाँ
1: जी।
0: बस हंस दिया मुस्कुरा दिया वो
1: बस एक पसंद आता
0: है
1: था कि
0: ना।
1: भाई ये पसंद
0: हाँ,
1: है।
0: और उसने देख लिया तो दिन बन गया, और अगर उसने नहीं देखा तो दिन ढल
1: हो
0: गया
1: बहुत मायूस हो जाते
0: है ना।
1: थे।
0: और हमारी एक और साथी भी आई है जो कह रही है कि मैं ज्वाइन तो नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका भी कोई क्रश रहा, तो
1: नहीं
0: वही
1: नहीं देखिए गंगा
0: माइक
1: जी
0: दे
1: उन्हीं,
0: दे दीजिए
1: हाँ
0: फटाफट
1: बिल्कुल उन्हीं
0: से।
1: से पूछते
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वंदना, मैं आपको बताऊं कि आपकी बातों में मुझे भी अपना फर्स्ट क्रश याद आ गया, और वो कौन था जानते हैं आप? बताओ भाई बताओ, हम तो बिल्कुल
1: अरे
0: उत्सुक
1: भाई,
0: हैं।
1: मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट, आज भी वो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उनका नाम है सोनू निगम।
0: ओ
1: ये वो
0: भाई
1: सिंगर भाई साहब, इनके गाने इनके सुन लो, चाहे इनकी आवाज चाहे इनको देख लो, मतलब
0: फैन हो जाओ आप।
1: वहीं के वहीं फैन हो
0: लेकिन
1: जाओ।
0: सरिता तुम्हारा फर्स्ट क्रश एक्सक्लूसिव नहीं रहा, इस क्रश को बहुत
1: ये
0: लोगों ने
1: बहुत
0: शेयर कर
1: सबका था,
0: लिया।
1: लेकिन
0: देखिए सोनू
1: हाँ
0: निगम तो इनका भी और देखा जाए तो सभी का, हमें भी पसंद है अभी भी पसंद है क्योंकि उनकी गायकी लाजवाब है और देखा जाए तो पर्सनालिटी वाइज भी बहुत सुंदर ही
1: बहुत ही
0: है।
1: बहुत ही। और मुझे भी याद है वो तेरा मिलना पल दो पल का, वो जब एल्बम आई थी ना तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी।
0: बिल्कुल
1: और इसी बीच नंद किशोर साहब और सुदर्शन मुखी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। और देखो फर्स्ट क्रश की जब बात चलती है ना तो बड़ी लंबी जाती है, और समय बिल्कुल जो है अब हमारा करीब आता जा रहा है, तो शिल्पा बात ही कर लेते हैं क्योंकि एक लास्ट गीत के साथ
0: बिल्कुल।
1: हमारे लिसनर्स को
0: और
1: छोड़
0: देखो वंदना
1: जाएंगे।
0: जी ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ बात ही नहीं की अभी तक,
1: अभी तो शुरू ही
0: शुरू
1: हुई
0: हुआ
1: है।
0: है। बिल्कुल ठीक कहा। और जब कभी महफिल सजती है ना, जैसे आज सजी तो हमारी दोस्त सरिता भी हमारे साथ जुड़े,
1: जी
0: शिल्पा भी है, तो जब ये महफिलें सजती हैं और बात से बात निकलती है तो सभी को अपने जो पहले पहले क्रश या फिर वो जो कहते हैं ना पहला पहला प्यार है वो याद आता है। और जैसे कि हमने कहा
1: बिल्कुल
0: जरूरी नहीं कि वो मंजिल तक जाए, लेकिन वो एहसास बड़ा खूबसूरत या फिर कहें कि बड़ा रोमानी सा होता है शिल्पा।
1: बिल्कुल जी
0: और जैसे कि हमने आज कोशिश की कि खूबसूरत से खूबसूरत आप सभी को हम गीत भी सुनवाएं, तो चलिए एक और खूबसूरत सी पेशकश सुनवाते हैं आप सभी को, और उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और दोस्तों ये वक्त है कार्यक्रम शुरू का सफरनामा। दोस्तों वो 300 से ज्यादा फिल्मों में अधिक से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में गाने गा चुके हैं और 30 से ज्यादा एल्बम जारी कर चुके हैं। संगीत की दुनिया के श्रोताओं, आज सुरों का सफरनामा में हम बात करेंगे उस आवाज की जिसने हिंदी सिनेमा के साथ साथ गुजराती संगीत और गजल की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। नाम है मनहर उदास। मनहर उदास जी का जन्म 13 मई 1943 को सावरकुंडला गुजरात में हुआ। उनके पिता केशु भाई उदास और माता जीतूबेन उदास थी। मनहर जी 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई पंकज उदास जी और निर्मल उदास जी भी संगीत की दुनिया से जुड़े और गजल गायन में अपना नाम बनाया। मनहर जी की शुरुआती जिंदगी गुजरात में बीती। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली, यानी उनके सामने एक तकनीकी और स्थिर करियर का रास्ता था, लेकिन दिल में संगीत बसता था। आगे चलकर यही संगीत प्रेम उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने अपनी आवाज के सहारे फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने का सफर शुरू किया। और ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था।

दोस्तों, मनहर उदास जी ने संगीत को सिर्फ शौक की तरह नहीं लिया था, लेकिन उनकी शुरुआती शिक्षा तकनीकी क्षेत्र में हुई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचे। मुंबई ने उनकी किस्मत में उन्हें दिए संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के करीब पहुंचा दिया। उनके बहनोई जो फिल्म निर्माण से जुड़े थे ने उनका परिचय इस संगीतकार जोड़ी से कराया। मनहर जी की रिकॉर्डिंग में उनकी मदद वो करने लगे। वो स्टूडियो में मौजूद रहते, रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया देखते और संगीत की दुनिया को बहुत करीब से समझते। फिर एक दिन ऐसा मौका आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। फिल्म विश्वास के एक गीत का रिकॉर्ड होना था जिसे आपने अभी सुना। गायक मुकेश उस समय उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में मनहर जी से गीत की आवाज़ रिकॉर्ड करवाने का निर्णय लिया गया। बाद में जब मुकेश साहब ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने कहा कि मनहर जी ने गीत इतना अच्छा गाया है कि उनकी आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरह आपसे हमको बिछड़े हुए मनहर उदास की फिल्मी पहचान बन गया। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर हमारे सामने अचानक आ खड़ा होता है, लेकिन उस अवसर का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं ये हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, और हमें उस अवसर को पहचानना भी होता है।

दोस्तों मनहर उदास जी का पहला गीत सफल हो गया था, लेकिन मनहर उदास जी के लिए फिल्मी दुनिया का रास्ता अचानक आसान नहीं हुआ। उनकी आवाज़ अलग थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में उस दौर में कई महान गायक पहले से स्थापित थे, इसलिए उन्हें लगातार काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, बेहद संघर्ष। मनहर जी ने अलग अलग संगीतकारों के साथ काम किया और गुजराती तथा दूसरी भारतीय भाषाओं में भी गाया। उनका सफ़र सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने अपनी आवाज़ में एक ऐसी सहजता बनाए रखी जो रोमांटिक गीतों, दर्द भरे गानों और गज़लों तीनों में काम आते थे। धीरे धीरे उनका नाम फिल्मी संगीत में पहचाना जाने लगा। उनके करियर की ख़ास बात यही रही कि उन्होंने किसी तरह एक तरह के गीत तक अपने को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सोलो गाने भी गाए, सोलो गीत भी गाए, डुएट भी गाए, समूह गीतों में भी अपनी आवाज़ दी। और फिर आया वो दौर जब उनकी आवाज़ बड़े सितारों की फिल्मों में सुनाई देने लगे।

दोस्तों, मनहर उदास जी की आवाज़ में एक ख़ास तरह की नरमी थी। यही वजह थी कि रोमांटिक गीतों में उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली लगी। 1980 के दशक में उनके करियर ने नई रफ्तार पकड़ी। फिल्म कुर्बानी का गीत हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे उनकी आवाज़ के सबसे यादगार गीतों में

शामिल हुआ। ये गीत प्रेम की गहराई और समर्पण को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त करता है। मनहर जी की आवाज में न तो बनावटी नाटकीयता थी और न ही अनावश्यक भारीपन, एक सहज ही अपनापन था। इस दौर में वो लगातार लगातार बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करते रहे। कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल जी और दूसरे संगीतकारों ने उनकी आवाज़ को अलग अलग तरह की धुनों में इस्तेमाल किया। मनहर उदास जी ने ये साबित कर दिया कि प्लेबैक सिंगिंग की जो उसकी सफलता होती है सिर्फ ऊंची आवाज़ या कठिन सुर लगाने में नहीं होती, कभी कभी गीत की भावना को सही ढंग से महसूस करके गाना ही सबसे बड़ी कला होती है।

दोस्तों, मनहर उदास जी की आवाज 1980 के दशक में कई लोकप्रिय फिल्मों का हिस्सा बनी। फिल्म हीरो के गीतों में उनकी आवाज सुनाई दी, डिंग डोंग, ओ बेबी सिंग सॉन्ग जैसे गीतों ने उनके गायन का एक हल्का फुल्का और मस्ती भरा अंदाज सामने रखा। ये उनकी खासियत थी कि वो केवल गंभीर और दर्द भरे गीतों तक सीमित नहीं थे, जरूरत के मुताबिक उनकी आवाज में रोमांस, मस्ती और उत्साह भी दिखाई देता था। इसके बाद नाम, कर्मा, जावाज, त्रिदेव, राम लखन जैसी कई फिल्मों में उनकी आवाज सुनाई दी। उनका करियर कई दशकों में फैला और उन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के लिए भी गायन किया। एक इंजीनियरिंग प्रशिक्षित युवक का फिल्मी दुनिया में आकर सैकड़ों फिल्मों की आवाज बन जाना अपने आप में संघर्ष और प्रतिभा की कहानी ही है।

मनहर उदास जी की आवाज़ ने सिर्फ प्रेम गीतों को ही नहीं बल्कि दोस्ती और ज़िंदगी के रिश्तों को भी आवाज़ दी। फिल्म नाम का गीत तू कल चला जाएगा इसका खूबसूरत उदाहरण है। मोहम्मद अजीज जी के साथ गाया ये गीत जिंदगी की नश्वरता और दोस्ती की भावना को सामने लाता है। मनहर जी की आवाज़ में इस तरह की गीतों के लिए एक अलग गहराई सुनाई देती है। फिल्म कर्मा में भी उनकी आवाज़ कई गीतों में सुनाई दी। मेरा कर्मा तू में उनकी आवाज़ में गीत की भावनात्मकता को और बढ़ाया। यही वो दौर था जब मनहर उदास जी एक ऐसे गायक के रूप में स्थापित हो चुके थे जिनकी आवाज़ को अलग अलग तरह के किरदारों और परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने गीत के किरदार में भावनाओं को अपनी आवाज़ में जगह दे दी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं की फिल्म नाम से ये बेहद चर्चित गाना जिसे आज तक लोग याद करते हैं।

दोस्तों, मनहर उदास जी का योगदान केवल फिल्मी गीतों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने गजल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई और कई निजी एल्बम जारी किए। उन्हें संगीत के सफर को अलग अलग उन्हों को सम्मानित किया।

गया। 2020 में उन्हें हकीम खान सूर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संदर्भ में उनके 450 से ज्यादा फिल्मों में गायन और विभिन्न भाषाओं में उनके योगदान का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 2023 में उन्हें अस्मिता सम्मान पुरस्कार म्यूजिक से सम्मानित किया गया। ये सम्मान गुजराती संगीत समुदाय में उनके योगदान और विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में लंबे गायन करियर के लिए दिया गया। मनहर जी की आवाज़ का सफ़र फिल्मों से निकलकर गज़ल, भक्ति संगीत, निजी एल्बम और लाइव कंसर्ट तक पहुँचा। यही किसी कलाकार की असली सफलता है कि एक दौर खत्म होने के बाद भी उनकी आवाज़ दूसरे दौर के श्रोताओं तक पहुंचती रहे। 1980 के दशक के मध्य में मनहर उदास जी के करियर को एक और यादगार मिला। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में फिल्म थी जावाज और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। गीत की लोकप्रियता ने मनहर जी की आवाज़ को घर घर तक पहुँचा दिया। इसमें उनकी आवाज़ के साथ साधना सरगम जी की आवाज़ भी थी। मनहर उदास जी की आवाज़ की एक खूबी ये भी थी कि उस दौर के रोमांटिक संगीत के धुनों के साथ वो बहुत ही स्वाभाविक लगती थी। लेकिन मनहर जी का सफ़र सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने गुजराती संगीत में भी लगातार काम किया और उनकी पहचान एक बहुभाषी गायक के रूप में बनी। बाद के वर्षों में उन्होंने गज़ल और निजी एल्बम्स पर भी ध्यान दिया। उन्होंने 30 से ज़्यादा एल्बम जारी किए और लाइव कार्यक्रमों में भी लगातार सक्रिय रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एक उनकी ही आवाज का गाया हुआ बेहद चर्चित गाना जावाज फिल्म का सुनते हैं।

दोस्तों यही था हमारा आज का सुरों का सफरनामा मनहर उदास जी की आवाज में उनके साथ, एक ऐसी आवाज के नाम जिनके सुरों के सफर में कई पीढ़ियों को अपना साथी बनाए रखा। और दोस्तों कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त है समाचारों का।

0: हैं।
1: नॉन इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्ले ऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और दोस्तों, आइए आप लेके चलते हैं आपको उस दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं उस दौर के गाने जो इतने सुहाने, इतने पुराने, इतने यादगार, जो शायद ऐसे गाने हैं जिन्हें हमने कभी सुना भी ना हो, या ऐसे गाने हैं जो जो हमारी रूह तक में उतर जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उनको सुना नहीं है, इसलिए शायद पहली बार में हमें वो इतने दिल के करीब ना लगे, लेकिन जब हम उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही चले जाएं। तो ऐसा ही एक बहुत ही पुराना गाना जो हमने लिया है 1938 में आई फिल्म, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब की ये फिल्म है, और फिल्म का नाम है धरती माता। और इस फिल्म में अपनी आवाज़ दी है पंकज मलिक जी ने, KL सहगल जी ने और उमा देवी जी ने, जिन्हें हम टुन टुन के नाम से भी जानते हैं। आइए सुनते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम की सुनहरी और उस दौर के गाने हम आज सुन रहे हैं और हमेशा सुनते हैं हर रात को, जिस दौर में मोबाइल फ़ोन नहीं थे और कितनी तकनीकी सुविधाएं जो आज के दौर में हमें मिलती हैं उस दौर में नहीं थी। लोग एक दूसरे के बहुत पास थे, एक दूसरे के हाल चाल लेते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, एक दूसरे से पूछते थे, जुड़े होते थे। बावजूद उसके उस दौर में भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता होगा शायद, तभी तो ये गाना लिया है हमने। और ये गाना है फिल्म ग्रामोफोन सिंगर, फिल्म का नाम है ग्रामोफोन सिंगर से,

और इसे आवाज़ दी है सुरेंद्र जी ने, और ये आई थी फिल्म 1938 में। दोस्तों याद रखने की बात ये है कि ये फिल्म आज़ादी से पहले की है।

दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं वो फिल्म आई थी 1949 में, और इस फिल्म के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन जी। और इस क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में दिलीप कुमार साहब और कामिनी कौशल जी मुख्य भूमिकाओं में थे। और ये गाना जो है, ये गीता दत्त जी, जो बाद में गीता दत्त हो गई थी, उस वक्त वो गीता रॉय हुआ करती थी, और इसको आवाज़ उन्हीं ने दी थी। और गाने के बोल लिखे थे कमर जलालाबादी साहब ने। और इसमें जो दूसरे कलाकार थे, जीवन और श्यामा जैसे जाने माने कलाकार थे जो एक्टिंग के दिग्गज माने जाते हैं। बस आइए सुनते हैं हम भी वही पुराने दौर का ये खूबसूरत सा गाना, गीता दत्त जी की आवाज में, जो उस वक्त गीता रॉय हुआ करती थी।

और दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म शाहजहां का ये मशहूर गाना ए दिल बेकरार, जो आई थी 1946 में। ये संगीत और सिनेमा के इतिहास का एक अनमोल रत्न जिसे कहा जा सकता है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1946 में। उसके गायक थे KL सहगल साहब, जिनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल जी है। और इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद जी, गीतकार रहे कमर बारा बंकवी साहब, और इस फिल्म के कलाकार थे KL सहगल जी, रागिनी रहमान और नशीम बानो। आइए सुनते हैं अपनी आज़ादी से एक साल पहले का ये खूबसूरत सा गाना, कुंदन लाल सहगल जी की आवाज़ में।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं, ये फिल्म आई थी 1948 में। फिल्म का नाम है अनोखी अदा और गाने के बोल हैं, ये प्यार की बातें, ये सफ़र भूलना जाना। महान गायक मुकेश साहब की आवाज़ में एक बेहद सुरीला और सदाबहार क्लासिकल गीत है। और इस फिल्म में संगीतकार थे नौशाद अली जी और गीतकार थे शकील बदायूनी जी। दोस्तों, ज़माना उस दौर से इस दौर के बीच काफ़ी बदल गया है, तो आइए सुनते हैं उस दौर में प्यार की बातें कैसी रही होंगी और सोचते हैं कैसी रही होंगी।

जाना। दोस्त रफी साहब की आवाज तो न जाने कितने कितने कितने सालों से हमें हमारे साथ चल रही है और हमारी जिंदगी की का एक हिस्सा ही बन चुकी है। और ऐसी एक फिल्म है जो आई थी 1948 में और फिल्म का नाम है मेला और फिल्म का गाना आप अब अपने रेडियो सेट्स पर सुन सकेंगे।

दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन ये चक्र कभी भी नहीं रुक सकता। ये ज़िंदगी के मेले यूं ही चलते रहेंगे, अफसोस हम नहीं होंगे। यानी वक्त बदलता रहेगा, हम चले जाएंगे, फिर कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, लेकिन जो वक्त हमें मिला हुआ है उसको हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। उसमें कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, जैसा जिससे कि सालों बाद भी लोग हमें याद कर सकें, जैसे आज की रात में हम याद कर रहे हैं पुराने नगमों के ज़रिए उन गानों को, उन लोगों को, उनकी लिखे गानों को और उनकी आवाज़ को। और अगला गाना है फिल्म दास्तान से। पहले ज़माने में दोस्तों जो अभिनय करते थे वही गाने भी गाते थे। इसी फिल्म में अभिनय किया सुरैया जी ने, और इसमें मुख्य कलाकार के रूप में राजकुमार जी थे और सुरैया जी थी। और इस फिल्म में जो ये गाना है इसको आवाज़ भी सुरैया जी ने ही दी है। नाम तेरा है ज़बान पर आई थी फिल्म 1950 में। आइए सुनते हैं इस गाने को अपने रेडियो सेट्स पर आकाशवाणी के ज़रिए।

और दोस्तों सोचिए उस दौर में ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती होगी ना, जब कोई छोड़ के चला जाता होगा, क्योंकि उस दौर में तो किसी के पास मनोरंजन के और साधन भी नहीं हुआ करते थे, और उसी याद में तड़प तड़प के कितने दिन बीत जाते होंगे। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं तो आगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमारे साथ है। फिल्म है मशाल, जो आई थी 1950 में, और इसका काफ़ी प्रसिद्ध गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आवाज़ दी थी अरुण कुमार मुखर्जी जी ने, जिन्हें अरुण कुमार के नाम से जाना जाता है, और इसमें म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था सचिन देव वर्मन जी ने, और इसके जो लिरिसिस्ट थे यानी गीतकार थे कवि प्रदीप जी, और इस फिल्म में जो नज़र आए थे अभिनय के करते हुए वो अशोक कुमार जी और सुमित्रा देवी थी। आइए सुनते हैं अरुण कुमार मुखर्जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना फिल्म मशाल से।

और दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं फिर से उसी पुराने दौर में, लेकिन इस बार आवाज़ है वर्सटाइल सिंगर रफ़ी साहब की, जिन्होंने ये आवाज़ दी थी आन फिल्म के लिए। ये फिल्म आई थी वर्ष 1992 में और ये भारत की शुरुआती टेक्निकल फिल्मों में से एक थी। इसके निर्देशक थे महबूब खान साहब और संगीतकार थे नौशाद अली जी और शकील बदायूनी जी इसके गीतकार थे। इस गाने में जो नज़र आए थे वो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब और अभिनेत्री नादिरा मुख्य रूप से नज़र आए थी। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में ये बेहद ही पुराना और ख़ास गीत।

और दोस्तों आइए अब सुनते हैं देखो जी बहार आई, यानी ये फिल्म आई थी 1955 की सुपरहिट हिंदी फिल्म आजाद का ये गाना है जिसे अब हम आपको सुनवाएंगे, जिसे आवाज दी थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। और ये फिल्म इसके संगीतकार थे सी रामचंद्र जी और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और स्क्रीन पर यानी जो पर्दे पर नजर आए थे मीना कुमारी जी, और फिल्म में मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार साहब दिखाई दिए थे। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा उसी फिल्म से। फिल्म का नाम था आज़ाद, फिल्म का नाम है आज़ाद, और ये उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी।

और दोस्तों, अब जो गाना आपके रेडियो सेट्स पर आने वाला है वो ओपी नैयर साहब तथा आशा भोसले जी की बेहद बेहतरीन जुगलबंदी का एक शानदार उदाहरण है। इस गीत को के बोल जाने माने शायर जान निसार अख्तर साहब ने लिखे थे और इस फिल्म में जो कलाकार नज़र आए थे, ये फिल्म है बाप रे बाप, और इस फिल्म में जो कलाकार नज़र आए थे अभिनेत्री के तौर पर नज़र आई थी चांद उस्मानी साहिबा, और मुख्य भूमिकाओं में थे किशोर कुमार साहब। और ये फिल्म आई थी 1955 में। आइए आप ही सुनिए इस बेहद प्यारे गीत को जिसे आशा भोसले जी ने गाया था।

और दोस्तों जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो रात हो या दिन का भी कोई वक्त हो, लेकिन वो वक्त लंबा नहीं लगता। वो जो वो वक्त होता है वो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब वो पल निकल गया। और दोस्तों ऐसा ही एक प्यारा सा गाना, मेरे ऐ दिल बता, जो गाना हम लेके आए हैं, ये प्यारा सा जो गीत है वो है फिल्म झनक झनक पायल बाजी से लिया गया है। 1955 में ये फिल्म आई थी, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की, लता जी की और मन्ना डे साहब की प्यारी सी आवाज़ में आप इस गाने को सुनेंगे। गोपी किशन और संध्या जी, इस एक क्लासिकल ड्रामा फिल्म थी जिसमें शानदार शास्त्रीय नृत्य देखने को मिला था। और ये गाना गाने के बोल और भावनाओं और दिल की कश्मकश को बहुत ही सुंदर तरह से बयां करते हैं। और शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने की वजह से इसकी धुन आज भी जो संगीत प्रेमी हैं उनके दिल में बसे हुए। आइए आप भी सुनिए और इस गाने को अपने दिल में उतर जाने दीजिए।

और दोस्तों आज गीत सुनहरे कार्यक्रम के आखिरी प्रस्तुति में सुनते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में फिल्म मुनीम जी का ये गाना, जो फिल्म आई थी 1955 में और ये आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सच बात है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार

0: उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
1: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Putin. Dr. S. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप गीतों का कार्यक्रम गीत बहार, और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे करेगा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कम्बोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
1: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
5: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10 हुए हैं। नीचे सुनते हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं पंकज उदास की इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताज़ा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार है।

कहाँ बुझती है किसी की याद से ये रात की आग, कहाँ बुझती है किसी की याद से ये रात की आग। कोई तो है जो अंधेरों में भी जलाए रखता है चिराग। दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम। अभी आपने सुनी पंकज उदास जी की आवाज में ये खूबसूरत सी नज़्म। नीचे सुनते हैं अगली पेशकश भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। लीजिए सुनते हैं अगली पेशकश मिताली की आवाज़ में।

0: मिताली और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ के साथ ही फिलहाल गीतों और गज़लों का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नमस्कार, यह आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः है, 4 बजने को हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: माया के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो के घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं। ये सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री मिनी एन की रागम कल्याणी में गायन। स्वाति तिरुनाल की रचना है। आपके साथ मृदंगम पर हैं MV चंद्रशेखर।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर 20 पर देशभक्ति गीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी का वक्त रहेगा 5:30। प्रातः 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास की विचारों पर। 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज इसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 28। 7:10 का वक्त है संगीतिका कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:45 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा विज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 9:15 पर। मिट्टी दी महक, इसका आनंद ले सकते हैं आप 9:30 पर। 10:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। प्रातः 11:10 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम सबरस का। 9:00 का कार्यक्रम सुरमंजरी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 11:30। ये थी जानकारी आज प्रसारित आने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपानिया के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एश्विले और न्यूयॉर्क जाएंगी। यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को सम्पन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीने

0: देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने की स्थिति में नहीं है। श्री गालिबाफ ने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी अमरीकी बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए नई प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में खेलो भारत अभियान पर भी चर्चा की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। यूपीआई अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माही और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Himakshi Pawar. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security, including response to counter-terrorism challenges, fusion analysis and operationalization of intelligence through the multi-agency center, a vision document on narcotics control, detection and deportation of illegal migrants, a policy framework to combat cybercrime and proxy warfare by Pakistan. On the second day today, the conference will focus on the threat landscape from sub-aerial systems and formulating countermeasures, securing the blue economy, information warfare and its implications on national security and the need for a biosecurity framework. Pursuant to the directions of Prime Minister Narendra Modi, the conference is being held every year in a hybrid format since 2021 with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of cutting-edge officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आएं, यानी नितंब के पास लेकर आएं। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुल नुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। लीजिए आप सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री भरण कुमार पाल का राग नटभैरव में गिटार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है अब्दुल रहमान ने।